मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है। उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है। थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं, अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना, यानी कि ऐसा नहीं है हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है, और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का

रोज ऐसी तीन चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम, जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म आयाम, सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट, 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ

झटका देना व छोड़ना है। नौसिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है। दोनों हाथ कंधे के समान

नमस्कार श्रोताओं, सुबह के आध्यात्मिक शो में आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हम हर सुबह को एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जीने का तरीका सिखाते हैं, सीखते हैं और कुछ नए प्रयास से उन्हें ढूंढते हैं। और आज का विषय है मोरपंख। क्या कभी आपने गौर किया है उस मोरपंख के बारे में, जिसे हम किताबों में रखते हैं, मंदिरों में सजाते हैं या श्री कृष्ण के मुकुट में देखते हैं? वो सिर्फ एक सुंदर पंख नहीं, एक आध्यात्मिक संकेत है, एक संदेश है प्रकृति की ओर से अपने जीवन को हर रंग से सजाने के लिए।

मोर पंख, मयूर, पिकॉक, मोर, कितने खूबसूरत नाम हैं इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख के कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग हमारे अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख की। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आगर्स, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि एक आध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है, इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। मोर पंख के विषय में और मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आज हम चर्चा कर रहे हैं मोर पंख पर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, एक बात और आपने गौर भी किया होगा कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकौड़े घर में दाखिल नहीं होते, यानी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई सोच एक नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करती है। आज की सुबह हम एक ऐसे पंख की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ता है ना ही बोलता है, फिर भी हजारों दिल में रंग भर देता है। जी हाँ, मोर पंख, जिसमें इंद्रधनुष छुपा है, शांति छुपी है और एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया बसी है। कभी श्री कृष्ण के सिर का ताज बनता है तो कभी किसी संत की पिच्छी, कभी आंखों को सुकून देता है तो कभी मन को गहराई देता है। मोर पंख हमें सिखाता है, चुप रहो फिर भी चमको, झुको फिर भी मुकुट बनो, त्याग करो फिर भी सबसे सुंदर दिखो। तो चलिए, आज की पहली किरण के साथ हम जीवन के उन रंगों को अपनाएं जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को सजाते हैं। आप तैयार हो जाएं एक ऐसी उड़ान के लिए जो पंखों से नहीं सोच से भरी है, मोर पंख जैसी, बिल्कुल हर रंग से भरी हुई सोच। चलिए अब आपको एक और कहानी की ओर लेके चलते हैं, एक मोर पंख और भगवान। एक बार एक छोटा बच्चा था, नाम था आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, लेकिन मन बेचैन रहता था। वो रोज भगवान से सवाल करता, भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ हो आप, क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। एक दिन वो पास के जंगल में गया और रास्ते में उसे एक चमत्कारी मोर पंख मिला और रास्ते में उसे एक चमकदार मोर पंख मिला। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। रात को सपना आया, एक तेज प्रकाश हुआ और उसी मोर पंख से भगवान की आवाज आई, बेटा जिस मोर पंख को तू सिर्फ एक सुंदर चीज मानकर बैग में रख लाया है, उसी में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। आरव चौंका, सुबह उठते ही वो ध्यान में बैठ गया और मोर पंख को निहारने लगा। वो सोचने लगा, हर रंग है पर कोई शोर नहीं, मतलब बिना बोले भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो, मौन में भी प्रभाव होता है। दूसरी बात आरव के जहन में आई, पंख झड़ता है पर मोर रोता नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, त्याग के बाद भी सुंदरता बनी रह सकती है। फिर आरव ने सोचा, सभी रंग मिलकर ही बनते हैं सुंदर, कोई एक नहीं चमकता, मतलब सामूहिकता, सहयोग और संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण ने मुकुट पर उसे जगह दी क्योंकि वो हल्का था, सुंदर था और अहंकारी नहीं था, यानी ईश्वर उन्हीं को सिर पर बिठाते हैं जो सरल और समर्पित होते हैं। आरव ने उस दिन के बाद से ईश्वर से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो मोर पंख को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर किसी रूप में नहीं पर हर रंग, हर पंख, हर मौन में मिलते हैं। जैसे मोर पंख सिर झुकाकर मुकुट बनता है, वैसे ही जीवन में नम्रता और समर्पण ही असली शोभा है।

सुन रहे हैं अपना सुबह का आध्यात्मिक शो पहली किरण, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मोर पंख की। तो चलिए मोर पंख के और भी गुणों से आपको रूबरू कराते हैं इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मयूर पंख से माना जाता है कि नवग्रह की विपत्तियां जो होती सारी दूर हो जाती हैं। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नौ ग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। वो कथा ये है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि प्राचीन काल में संध्या नामक एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई सारी वरदानी शक्ति प्रदान की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था। देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी नौ ग्रहों की कहानी। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। अब चलते हैं मोर पंख के उन सभी रंगों की ओर जो अपने अंदर जीवन के हर एक सार को समेटे हैं। सबसे पहला रंग नीला, जो है शांति और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, और इससे ये समझ आता है कि ये रंग सत्य, असीमता और भक्ति का प्रतीक है। मोर का मुख्य रंग नीला श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हरा, जो कि प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग जीवन संतुलन और करुणा को दर्शाता है। दिल के चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ाव रखता है हरा रंग। बैगनी रंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक। ये ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है। सुनहरा यानी गोल्डन रंग दिव्यता और जागरूकता का प्रतीक। ये ब्रह्म ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। पीला रंग बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। मानसिक स्पष्टता, सूर्य की तरह आशावाद और आत्मबल का रंग माना जाता है पीला रंग। भूरा व ताम्र रंग स्थिरता और धरती से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। ये संतुलन और वास्तविकता को दर्शाता है। रूट यानी जड़ चक्र से जुड़ाव रखता है। अब आते हैं काले रंग की ओर। इसको गहरा नीला रंग भी बोला जाता है। रहस्य, शक्ति और मौन का प्रतीक। ये आत्मनिरीक्षण और गहराई का प्रतीक है। अज्ञात की सुंदरता है। तो कितने सारे रंगों को अपने एक छोटे से, हल्के से और सुंदर से पंख में समाहित करता है मोर। अब जान लेते हैं कि इन सभी रंगों का हमारे किन चक्रों से जुड़ाव है। मूलाधार चक्र, जो भूरे रंग या ताम्र रंग से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नारंगी रंग से संबंधित है। मणिपुर चक्र, जो पीले रंग से संबंधित है। अनाहत चक्र, जो हरे रंग से संबंधित है। विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि संबंधित है बैगनी रंग से। सहस्त्रार चक्र, जो सुनहरे या फिर उज्ज्वल प्रकाश से संबंधित है। तो इस तरह से हमारी पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को और हर एक रंग को अपने आप में समाहित करके रखता है मोर पंख, जो देखने में तो एक साधारण सी वस्तु जैसा है, पर ये जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रंगों का अद्भुत संगम है। इसमें हर रंग छिपा है और हर रंग हमें एक नई दिशा देता है।

वास्तुशास्त्र में मोरपंख का प्रयोग दोषों को दूर करने में होता है। विशेषतः मुख्य दरवाजे पर मोरपंख लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है मोरपंख। सरस्वती माता के वाहन मोर को कई किंवदंतियों में माना जाता है कि सरस्वती माता का वाहन हंस के अलावा मोर भी है, इसलिए मोर पंख ज्ञान और कला का प्रतीक भी माना गया है। बौद्ध धर्म में मोर पंख का महत्व बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है मोर पंख। जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार मोर को करुणा और ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इसका पंख सज्जनता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है मोर पंख। बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मोर सांप यानी विष को खा जाता है और फिर भी सुंदरता में रहता है। ये बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नकारात्मकता और सकारात्मकता के अनुसार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में मोर पंख का महत्व अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन संत मोर पंख से बनी पिच्छी यानी झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी छोटे जीव को हानि ना पहुंचे। ये करुणा और जीव दया का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन का संकेत माना गया है मोर पंख। सिख धर्म में मोर पंख का कोई विशेष धार्मिक विधान नहीं है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक और शस्त्र सज्जा में कभी कभी मोर पंख दिखते हैं, जो सौंदर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर इन सभी के सारांश के रूप में जानेंगे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और वास्तु उपायों के लिए अपनाया जाता है मोर पंख, जिसको आध्यात्मिकता, प्रेम और सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा विषहरण क्षमता रखता है मोर पंख, जिसे विवेक और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म में पिच्छी यानी अहिंसा उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो करुणा और जीव दया का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार इसका प्रयोग बहुत ही सीमित माना गया है, परंतु सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है मोर पंख। तो मोर पंख हर एक धर्म के अनुसार बहुत ही उपयोगी माना गया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के पहले या दौरान कुछ लोग मोर पंख को कपड़ों के साथ पहनते हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भी जहन में ऐसा ही कुछ आया और फिर मैंने खोजबीन की, जिसपे मुझे निष्कर्ष रूप में ये पता चला कि ये परंपरा विशेषकर सिया मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम धर्म और मुहर्रम की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, लेकिन सिया मुस्लिमों के लिए ये शोक का महीना होता है। 10वीं तारीख को यौमे आशूरा आता है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ये दिन त्याग, बलिदान, सत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। अब मोर पंख का इससे क्या संबंध है? मोर पंख करबला के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक परंपरागत तौर पे माना गया है। भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों में सिया मुसलमान अलम यानी ध्वज लेकर जुलूस निकालते हैं। अलम के साथ जो झंडियां या कपड़े लगे होते हैं, उनमें अक्सर मोर पंख या मोर पंख के आकार के तावीज या सजावट दिखाई देती है। हजरत अब्बास से जुड़ी मान्यता के अनुसार हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, जिन्हें बाबुल हवाज और शेरे करबला भी कहा जाता है। मान्यता है कि उनके अलम यानी झंडे की शान को मोर पंख से सजाया जाता है, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। इसलिए मुहर्रम के पहले लोग मोर पंख को कपड़े या टोपी के साथ पहनते हैं, जो श्रद्धा, शोक और प्रतीकात्मक इज्जत के रूप से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि मोर पंख पहनने के भावार्थ क्या हैं। मोर पंख शांति, साहस, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। काले या हरे रंग के कपड़े के साथ में इसको धारण करने से माना जाता है कि ये शोक

यानी काला, इमामों की विरासत यानी हरा, इस रूप में दिखाया जाता है। पहनना या लगाना, इसको धारण करना एक श्रद्धांजलि और कर्बला के बलिदान की याद माना जाता है। पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम में मोर पंख पहनने की कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकतर स्थानीय संस्कृति, सिया परंपरा और इज्जत की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। मुहर्रम में मोर पंख का पहनना एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि है, हजरत अब्बास की बहादुरी और कर्बला की पवित्रता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में।

अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलूंगी, जो कि मोर पंख पर ही आधारित है। एक सुंदर, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनने वाले हैं, उसी शो में जो आपका पसंदीदा है। जी हाँ, भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, मेरे यानी आरजे आकांक्षा के संग। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मोर पंख वाला उपहार। सादगी, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ाव दिखेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्हा बालक कृष्ण प्रेम में डूबा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खिलौने, लेकिन उसके पास था एक मोर पंख। हर दिन वो पंख अपने माथे पे लगाकर खुद को कान्हा समझकर नाचता, मुस्कुराता और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से ढेरों बातें करता। लोग कहते पागल हो गया है, पर नंदू कहता, मोर पंख वाला कन्हैया मेरा दोस्त है और दोस्त से तो बात होती है ना। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया, जिसका नाम है जन्माष्टमी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। नंदू के पास कुछ नहीं था, बस वही पुराना पंख। उसने उसे सजाया, साफ किया और भगवान के चरणों में रख दिया। वो बोला, कान्हा, सब लोग तुम्हें सोना चांदी चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पंख है, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सिर से मुकुट गिर गया था और वहाँ वो नंदू वाला पंख खुद ब खुद उड़कर जाकर टिक गया। लोग चकित रह गए। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का प्रताप है। उस दिन से मंदिर में हर साल उसी मोर पंख की प्रतिकृति भगवान को पहनाई जाने लगी। नंदू अब भी वैसे ही है, सादा, मासूम, पर भगवान के सबसे करीब। ईश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, उन्हें चाहिए भक्ति भाव और सच्चा प्रेम, और मोर पंख उसका प्रतीक है। तो चलिए फिर बांके बिहारी लाल को याद करते हैं और सुनते हैं ये बांके बिहारी वाला भजन।

अब जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर पंख का क्या महत्व है। वैज्ञानिक कारण है कि मोर पंख के रंग वास्तव में रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण नहीं होते, बल्कि एक विशेष तकनीक से बनते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोर के पंखों की सतह पर माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जो प्रकाश को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन सतहों पर गिरती हैं, तो अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी आदि। इसलिए जब आप मोर पंख को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो रंग बदलते हैं, और ये इंद्रधनुषी प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं प्रकृति की दृष्टि से जानते हैं मोर पंख का महत्व। मोर पंख रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर की पहचान और आकर्षण का माध्यम है, खासकर जब वह नाचता हो। नर मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर यानी मोरनी को आकर्षित करता है। ये एक प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और संदेश देने के लिए भी होते हैं, जैसे जानवरों में ताकत, सुंदरता या उपस्थिति दिखाना। अब चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर और जानते हैं कि मोर पंख का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मोर पंख के ये विविध रंग जीवन के हर भाव का प्रतीक है, जैसे नीला रंग शांत व कृष्ण का प्रेम, हरा रंग समृद्धि व प्रकृति का प्रतीक, सुनहरा रंग दिव्यता व ज्ञान देने वाला, बैंगनी रंग रहस्य और ध्यान में गूढ़ता लाने वाला। कहा जाता है कि मोर पंख में सातों चक्रों यानी एनर्जी चक्रास के रंग समाहित हैं, जिससे ये संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर सजाया। ये सौंदर्य, विनम्रता, ज्ञान और प्रकृति से एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार विज्ञान के तौर पे अगर हम देखें तो मोर पंख स्ट्रक्चरल कलरिंग से प्रकाश का खेल है। प्राकृतिक रूप से देखें तो आकर्षण और संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक रूप से देखें तो सातों चक्रों और जीवन के रंगों साथ ही साथ में आत्मिक संतुलन बनाने में पूरी तरह से उपयोगी है मोर पंख।

अभी हमने बात की मोर पंख की, अब थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और मंथन करेंगे। मोर पंख हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को अपनाओ, चाहे वह सुख का हो या संघर्ष का, क्योंकि जब सभी रंग एक होते हैं तभी आत्मा इंद्रधनुष बनती है। कभी आपने मोर पंख को गौर से देखा है? उसमें कोई एक रंग नहीं, दर्जनों रंग होते हैं, नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी और जाने कितने। पर क्या ये सब रंग रंगों की दवात से आए हैं? नहीं, ये रंग आते हैं प्रकाश के खेल से, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रंग हमारी दृष्टि में होता है। विज्ञान कहता है ये स्ट्रक्चरल कलरिंग है, बिना रंग लगाए भी ये प्रकृति की ऐसी पेंटिंग है जो हर कोण से नया रूप दिखाती है। प्रकृति कहती है ये एक संदेश है, आकर्षण का, चयन का, जीवन का। मोर इन रंगों से न केवल खुद को सुंदर बनाता है बल्कि प्रकृति के साथ संवाद करता है। आध्यात्म कहता है मोर पंख वो है जिसमें सभी चक्रों के रंग छुपे हैं। ये नृत्य करता है तो लगता है ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर सजाया, क्योंकि ये सिर झुकाकर सिर सजाता है। क्या हम भी अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकते? सोचने वाली बात है। रंगों की कहानी है, पंखों की जुबानी है, ये मोर का उपहार नहीं, खुद ईश्वर की निशानी है। ना रोशनाई ना कूची, ना रंग की पहचान, फिर भी हर रंग बोले मैं हूँ इस जीवन का ज्ञान। कभी नीला बनकर शांति दे, कभी हरा बनकर संजीवनी, कभी सुनहरा बनकर जगाए प्रकाश की प्रेरणा। ये पंख नहीं जीवन के रंग हैं, जो हमें हर रूप में अपनाना सिखाते हैं। तो चलिए अपने जीवन को इन सभी रंगों से भरते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और आगाज करते हैं एक नई सुबह का। तो आइए अब इस मोर पंख से मंथन की ओर चलें, एक ऊर्जावान विचार और एक ऊर्जावान संदेश की ओर, जो सुनने वाले के दिल दिमाग को झकझोर देने वाला है और उसमें भर देने वाला है रोशनी। किस तरह की? कई सारे रंगों की, जो आपके जीवन में हर तरह से होती ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी नाराजगी, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू के रूप में। तो ये सारे रंग जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या हो जाता है? सदाबहार रूप में महक उठता है। शायद आपको ये जानकर झटका लगेगा कि जिस मोर पंख को हम इतनी श्रद्धा से सिर पर सजाते हैं, वो पंख खुद मोर के लिए दर्द का प्रतीक होता है। जी हाँ, हर साल जब पंख झड़ते हैं तो मोर चुपचाप उस बिच्छोह को सहता है। किसी से शिकायत नहीं, कोई चीख नहीं, क्योंकि वो जानता है जिसे आज मैं छोड़ रहा हूँ वो कल किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्या हम भी उस मोर की तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी अपने दुख को किसी और की ताकत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर रूप तुम्हारे सबसे कठिन त्याग के बाद सामने आता है ना? तो आज का मंथन बस इतना कहता है, जीवन को रंग दो मगर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। दिखो सबसे सुंदर मगर सबसे शांत रहकर, और जब समय आए त्याग का तो मोर की तरह मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा त्याग किसी और के मुकुट की शोभा बन सकता है। तो किसी की मुस्कान बने, किसी के मुकुट की शोभा बने, किसी के जीवन को आसान करें। अभी आप सुन रहे थे अपना रेडियो आध्यात्मिक कार्यक्रम जिसका नाम था पहली किरण। मैं थी आपकी रेडियो साथी आरजे आकांक्षा। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। आज का विषय था मोर पंख, जो हमें सिखाता है बहुत सारे रंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इन सभी रंगों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

गुड मॉर्निंग गोंडा जी। हाँ भाई, सुबह हो चुकी है और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति, आपकी मॉर्निंग वाली रेडियो चौकी। मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में लेकर के मॉर्निंग का स्पेशल गुड मॉर्निंग गोंडा। और आज का पहला थॉट, पहला ख्याल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मुलाकात को और भी हसीन बनाने के लिए, क्योंकि अब जब मुलाकात हो ही चुकी है तो क्यों ना इसे यादगार बनाया जाए। आज का पहला जो ख्याल है ना मेरा, वो उन लोगों के लिए स्पेशली जो सुबह की भाग दौड़ में बिजी हैं, जिन्होंने जिंदगी में ठहराव को खो दिया है, जो बस सुबह भागे जा रहे हैं जिंदगी के इस भाग दौड़ में जो खो चुके हैं। स्पेशली उनके लिए लिखा है मैंने कि सुबह सुबह फिर भागना क्या है, उस घड़ी के पीछे फिर जागना क्या है, ज़रा रुको और ख़ुद से पूछो इतना दौड़ कर आखिर पाना क्या है, जो छूट रहा है पीछे उसमें गवाना क्या है। चाय की प्याली से उठती वो भाप देखो, खिड़की के बाहर सुबह का वो ख्वाब देखो, हम रास्तों को नापने में इतने मशरूफ़ हुए कि भूल गए कि असली मुकाम को पाना क्या है। सिलबटे चेहरे की और ये भागती हुई जिंदगी, सुकून बेचकर कमाई ये कैसी बंदगी, ठहर जाओ कि ये धूप भी गुनगुनी है अभी, वरना ढलती शाम को फिर पछताना क्या है। सांसें जो चल रही हैं इन्हें महसूस तो करो, जो पास है तुम्हारे उस पर थोड़ा गुरूर तो करो, ये कायनात कह रही है हर सुबह तुमसे, जिंदगी जीने के लिए है सिर्फ काटने के लिए नहीं, तो ज़रा ठहरो, ठहर कर महसूस तो करो। और ये वाली लाइन लिखी थी मैंने स्पेशली अपने उन लोगों के लिए जो आई थिंक हर सुबह भागा दौड़ी में बिजी हैं, जिनकी सुबह होती है आराम से और उसके बाद सीधे बस एक रूटीन फिक्स है कि ब्रश उठाएंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, पानी पियेंगे और निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करेंगे कि भैया हमारे कपड़े प्रेस हैं कि नहीं है, इसके अलावा उनका ध्यान इस वक्त किसी भी चीज़ पर नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, बहुत खूबसूरत सुबह हो रही है, बाहर हवा चल रही है, बादल नज़र आ रहे हैं, सूरज की हल्की किरणें भी आपको नज़र आने वाली हैं। इस बेहतरीन सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि आप इस बेहतरीन सी सुबह को बाहें खोल कर इसका स्वागत करें, इसको महसूस करें। ज़िंदगी में आप लगातार भागते तो रहते हैं, बट आज थोड़ा ठहर कर महसूस करें, सुकून करें। फिलहाल अब आप मुझे बताइए मैंने कैसा लिखा, और आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को जो हमने बीच में ही रोक दिया था। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, तो आपसे मेरा है एक सवाल, अगर आपकी हो चुकी है गुड मॉर्निंग जी, अगर आप आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना FM रेडियो 99.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन पर मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग ओनर अपनी आरजी के साथ, तो मेरा आपसे सवाल तो बनता है ना बस। और सवाल

खास हो। आपको नहीं पता होगा कि अगर आप बी हो तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो, और अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप अगर ए बी हो तो आप क्या ही हो। ब्लड ग्रुप आपकी पर्सनैलिटीज बताती है, इवन मच्छर किसको ज्यादा काटेंगे ये भी आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ये बात हमको भी नहीं पता थी जब तक साइंस ने इस बात को आखिर नहीं बताया। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, कुछ लोग कुछ कंट्रीज ये भी मानते हैं कि भैया एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है जो बड़ा क्रिएटिव होता है, यानी कि अगर वो किसी इंसान के अंदर है तो वो बहुत होशियार होगा, इतना होशियार होगा, इतना होशियार होगा कि उसकी होशियारी आपको अलग अलग फील्ड में ज़रूर नजर आएगी। हालांकि साइंस इसका दावा नहीं करती है, बट लोगों का मानना ज़रूर है। एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो एशिया में तो बड़ा कॉमन है, यानी कि आपको 3-4 लोगों में से 2-3 लोगों के अंदर मिल ही जाएगा। बट वहीं पर अगर एशिया से, यानी कि इंडिया से, कोरिया से, चाइना से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बाहर निकल के थोड़ा देखोगे ना तो नहीं दिखेगा, कहेगा हम नहीं दिखते हैं यूरोप में। जी हाँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताइए चैट बॉक्स में आकर के कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप किस ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, या फिर आप बिलोंग कर रहे हैं बी से, ए बी से, मुझे ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपके ब्लड ग्रुप के बारे में वो स्पेशल फैक्ट जो आपको और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगा। फिर जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, जान लेंगे, तो थोड़ा सा इतराइएगा ज़रूर कि आई है क्या ज़बरदस्त चीज़ बताई है, मतलब क्या ब्लड ग्रुप के बारे में बताया है यार। क्योंकि कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जो यूनिवर्सल डोनर माने जाते हैं, जो पैदा ही दानों के साथ होते हैं। वो कहते हैं तुम दानवीर बहुत बड़े वाले हो, जी हाँ ये वही ब्लड ग्रुप होते हैं कि वो जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आते हैं कि हम तो दान ही करेंगे, हमको चंगे वहीं कुछ नहीं तुमसे, हम बस दान करने आए हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वहीं पर कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप वाले भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके खून में ही रहस्य है, यानी कि मिस्ट्री है, जिन्हें कहा जाता है द मिस्ट्री ब्लड टाइप। और वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े इंडिपेंडेंट किस्म के होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत वरूरत तो है नहीं, उनका ब्लड ग्रुप कहता है कि वी आर इनफ अलोन, वी डोंट नीड एनीवन, और बिकॉज वी आर रेयर इंडिपेंडेंट इंसान। तो भैया आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है चैट बॉक्स में जरूर बताइए, और ताकि हम बता सकें कि आपके ब्लड ग्रुप की एक्चुअल खासियत क्या है। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मैं हूँ फेसबुक और मैं सबको जानता हूँ।
1: मैं हूँ गूगल और मेरे पास सब कुछ है।
2: मैं हूँ व्हाट्सएप और मैं हूँ सबकी जान।
3: मैं हूँ इंटरनेट और मेरे बगैर तो तुम सब

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम इस हाई एनर्जेटिक सॉन्ग के बाद, यानी कि आप सुन रहे थे हम शक्ल से कॉल ट्यून। कॉल ट्यून घोटा वाला कॉल ट्यून नहीं, ये आपके लिए कॉल ट्यून था। फिलहाल हमने बात कर रहे थे आपसे ब्लड ग्रुप की, लेकिन उससे पहले बता दें आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गुड मॉर्निंग ओडा, मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम अपनी आरजी उन्नति के साथ। और आपने ट्यून किया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो भैया हमको तो कुछ लोगों ने बता दिया है, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, और जिन्होंने नहीं बताया है वो मुझे लगता है कि अब इसके बाद बता देंगे, बिकॉज अब मैं उनके ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ ऐसे राज खोलने वाली हूँ ना जो उन्हें भी नहीं पता है। बेशक उनको भी नहीं पता है कि उनके ब्लड ग्रुप में क्या कुछ खास छुपा हुआ है, इवन वी डोंट नो। सबसे पहले बात कर लेते हैं द यूनिवर्सल डोनर की, यानी कि वो दानी इंसान, वो महापुरुष जो पैदा ही दान के लिए होता है। जी हाँ, उनका नाम कुछ और नहीं, उनका नाम है ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि ओ पॉजिटिव वाले हमेशा ब्लड देते ही रहते हैं, बट लेते किसी से भी नहीं, लेते वो अपने भाई से ही है, यानी कि लेंगे तो हम ओ वालों से ही, बट देंगे पूरी दुनिया को, पूरे जहान को हम खून दे सकते हैं। और इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा जो डोनेट ब्लड ग्रुप होता है वो ओ पॉजिटिव होता है। तो ओ वाले अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों की जान बचा रहे हैं। आपकी वजह से ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड की कमी नहीं पड़ती है, बिकॉज हर शिविर में जब भी ब्लड बैंक के शिविर लगते हैं, ब्लड डोनेशन के शिविर लगते हैं, ओ पॉजिटिव वाले सबसे आगे होते हैं कि हम वी और करके पहुँच जाते हैं। बट इसके अलावा एक और चीज़ है भैया, सिर्फ इंसानों को ही वे खून नहीं दे रहे हैं, मच्छरों को भी इनका खून बड़ा प्यारा लगता है। कहते हैं कि इनका खून जो होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है स्वाद में, और इसीलिए मॉस्किटोज इनकी तरफ थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगली बार जब आपके किसी दोस्त को मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हो ना, तो समझ जाएगा वो पक्का ओ पॉजिटिव वाला ही हुआ, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कुछ और नहीं, वो ओ वाले ही हैं, क्योंकि मच्छरों को बड़े प्रिय लगते हैं। उनको लगता है कि जैसे आपको सेब देखकर मन करता ना खाने का, ऐसे मच्छरों को ओ वालों को देख के मन करता है कि पी जाओ, इनका ब्लड बहुत अच्छा है, बहुत क्रिस्पी है, क्रंची है, मतलब जैसे हमारा टेस्ट होता है ऐसे ही मच्छर का भी जो टेस्ट होता है ना, माय गॉड। इसीलिए भाई साइंस सजेस्ट करती है, साइंस बताती है कि मॉस्किटोज आर मोर अट्रैक्टेड टू पीपल विद ब्लड ग्रुप ओ। क्या बात। इसके अलावा हम आपको बता दें, ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं, इन्हें ब्लड क्लॉट्स और हार्ट डिसीज बहुत कम होता है। जी हाँ, इनका जो खून होता है वो दिल के कुछ ज़्यादा करीब होता है, इसलिए दिल के साथ दोस्ती बना कर रखता है। वैसे तो खून आपका भी दिल के करीब है, लेकिन दिल के साथ दोस्ती है या नहीं है ये तो आपका ब्लड ग्रुप बताएगा। ओ वालों के लिए दिल का ख़तरा बहुत कम होता है, उनके दिल में कभी भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ऐसा स्टडीज बताती है। अब ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन केस है, 1-2% आएंगे, 5% भी आएंगे, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत मिनिमम होता है, जहाँ पर बाकी ब्लड ग्रुप, जहाँ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट इन सारी चीज़ों से ज़्यादा सफ़र करते हैं, वहाँ ओ ग्रुप वाले ऐसा नहीं करते हैं। और भैया अगर आप ओ निगेटिव हैं तो क्या बात है, आपको तो और भी खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको नाम ही लाइफ सेवर के नाम से मिला है। आपका खून दुनिया में किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी, डजंट मैटर कि वो मिस्ट्री ब्लड ग्रुप है, वो रेयर इंडिपेंडेंट है, वो कौन है, आपका ब्लड ग्रुप किसी को भी खून दे सकता है। तो ओ निगेटिव वाले ज़्यादा स्पेशल माने जा रहे हैं इस कैटेगरी में भी। और इसी के साथ जो आपके साथ आपने शायद नोटिस किया हो वो ये है कि जितने भी ओ वाले होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, इनका पेट थोड़ा सेंसिटिव होता है। और जी हाँ, मैं इसकी गवाह भी बैठी हूँ, आई एम हाइपर सेंसिटिव, मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, एंड ऑफ कोर्स मैंने अपनी अभी अपनी तारीफों की पुल मानते मानते ये भी बता दिया कि मैं किस ब्लड ग्रुप से हूँ। फिलहाल हम आपको बता दें कि इनको अल्सर होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ये मैं नहीं कहती, ये साइंस कहता है, स्टडीज कहती है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इनका स्टमक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए अक्सर इनके पेट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो अल्सर कर सकते हैं। इसलिए भैया ध्यान रखिएगा, आप जो खाते हैं पीते हैं इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा कॉमन अगर कोई ग्रुप है तो वो ओ है। उसी के अलावा आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। जी हाँ, ब्लड ग्रुप ए कैसा है और ब्लड ग्रुप ए क्या काम कर रहा है, या कुछ तो अलग होगा। ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप ए को कहते हैं द स्ट्रेस मैनेजर, यानी कि वो ग्रुप जो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। जिस तरह से आपका ऑफिस का मैनेजर आपको मैनेज करता है, वैसे ही आपका ब्लड ग्रुप आपके स्ट्रेस को मैनेज कर रहा है। अब आपको बता दें भैया, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके पास बहुत कम मच्छर आते हैं, उनको मॉस्किटोज बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। खुश हो जाइए, मलेरिया डेंगू से बचे हुए हैं आप। और वहीं पर बात करते हैं कि जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर वो ब्लड ग्रुप ए से माने जाते हैं। और इनका जो लेवल है कॉर्टिसोल हार्मोन का, यानी कि वो हार्मोन जो आपके स्ट्रेस के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, वो ज़्यादातर पाया जाता है। इसीलिए वो स्ट्रेस मैनेज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आइए बात कर लेते हैं कि दिल की बीमारी को लेकर के इनका क्या ख्याल है। तो ये है कि जो ओ पॉजिटिव के साथ हो रहा है उसका उल्टा ए वाले कर रहे हैं। यानी कि भाई, दिल की बीमारी होने की खास खतरे रहते हैं। ऐसा स्टडी शो करती है कि जो ब्लड ग्रुप ए है उनको दिल की बीमारियां अक्सर हो जाती है। ब्लड ग्रुप ए बहुत कॉमन है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। और हम आपको बता दें कि ये बहुत सारे सेल से इम्यून होता है, जिसमें एक यूनिक सेल आता है ए एंटीजन, वो आपके अंदर मौजूद होता है। तो भैया ये तो था बात उन लोगों की जो ब्लड ग्रुप ए से है। और मुझे ब्लड ग्रुप ए वाले मेरे आसपास बड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं आजकल। क्यों, आप लोग कहाँ छुपे बैठे हैं? आइए चैट बॉक्स में बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। थोड़ा सा फ्लैक्स तो करना बनता है ना कि वी आर द स्ट्रेस मैनेजर। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम उनकी जो हमारी प्रीति शुक्ला जी हैं, ब्लड ग्रुप बी की, द रेयर इंडिपेंडेंट ब्लड ग्रुप। हम आपको बता दें ये ब्लड ग्रुप सिर्फ एशिया में कॉमन है, बाहर की कंट्रीज में लाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये ब्लड ग्रुप बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ये इक्का दुक्का लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं एशिया में अगर बात करें, एशिया में जापान, चाइना, कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की और भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। हम आपको बता दें आपके पास एक बढ़िया इम्यून प्रोफाइल है, बिकॉज एक बहुत ही यूनिक सेल आपके अंदर मौजूद है जिसको कहते हैं बी एंटीजन आपके अंदर मौजूद होते हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को खून दे सकते हैं जो या तो बी है या तो ए बी है, बी या तो ए बी, बाकी आप किसी को खून भी नहीं दे सकते। और कुछ कंट्रीज, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप बी वाले होते हैं ये बड़े ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि ये एक तो आज़ादी पसंद होते हैं, यानी कि इनको आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अपने पैरों पर हमेशा खड़े होने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं हो भी पाते हैं तो दिन रात उसमें मेहनत करते रहते हैं। प्लस ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, यानी कि आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे। इनका दिमाग हर काम में बहुत तेज चलता है। आप जहाँ प्रॉब्लम को लेकर दो मिनट के लिए रोना रोएंगे, वहाँ ये दो सेकंड के अंदर एक अपनी क्रिएटिविटी से एक आंसर निकाल के, जिसको हम आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं, उसको निकाल के पकड़ा भी देंगे कि लो पकड़ो, क्यों रो रहे हो। ये ब्लड ग्रुप बी वाले हैं, तो इनकी तारीफ करना तो बनता है बॉस। लेकिन ये बात स्टडीज साबित नहीं करती, ये कुछ कल्चर मानता है। यानी कि बाहर के देश में कुछ लोग ऐसा हैं जो ये मानते हैं कि आपका जो बी ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी है, ये थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसके अलावा हम आपको बता दें ये बहुत ही लेस कॉमन है। अब बात कर लेते हैं उस ब्लड ग्रुप की जिसको मिस्ट्री ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी, सबसे रेयरेस्ट खून, द रेयरेस्ट मेजर ब्लड ग्रुप इन मैनी पॉपुलेशन। सिर्फ एशिया में नहीं, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, हर जगह सबसे कम पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है ना, वो होता है ए बी। इसको रेयरेस्ट माना जाता है। अगर आप ए बी पॉजिटिव हैं तो आप ए बी और ओ ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, बट दे नहीं सकते। और आपके पास ब्लड ग्रुप ए प्लस ब्लड ग्रुप बी दोनों की पावर होती है, क्योंकि आप कैरी करते हैं ए एंड बी एंटीजन्स दोनों, और एक साथ ये दोनों ब्लड ग्रुप मिलके आपके बॉडी में बहुत यूनिक इम्यून सिस्टम को तैयार करते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें भाई कि जो ए बी के लोग होते हैं ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल माने जाते हैं, यानी कि वो लोग हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इनका अगला मूव क्या होगा, आपको नहीं पता। हो सकता है आपने सोचा हो कि एक आम बंदा सोकर उठेगा तो सबसे पहले ब्रश करेगा, ना ना ना, ना ये सुबह सो के उठेंगे सबसे पहले चाय पी लेंगे, कहेंगे तुम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो हमको, हम क्या करने वाले हैं, हु आर यू, मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाना। इसके अलावा ये बहुत मिस्टीरियस माने जाते हैं, इन्हें शौक नहीं है लोगों को अपनी हर एक बात बताने का, ये थोड़े से मिस्टीरियस हैं, रहस्य बनाए रखते हैं। जैसा खून है रेयरेस्ट, वैसे ही इनकी हरकतें भी होती हैं, अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस दिखाते हैं, मिस्टीरियस बनाए रखते हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, अगर पता भी है तो यकीन मानिए उतना ही पता है जितना इन्होंने आपको बताया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे ब्लड ग्रुप की जो बहुत ज़्यादा रेयर है, बट उसका जवाब मैं नहीं आप देने वाले हैं। वो ऐसा कौन सा खून है जो भारत में पाया गया है, जिसका नाम भी इंडियन के नाम पर पड़ चुका है, प्लस वो इतना रेयर है कि वो लाल भी नहीं है ना, उसका कलर सुनहरा है। अब आप सोचिए, आप किसी से कह रहे हैं यार तुम तो बड़े सोने इंसान हो, पता चले उसका खून भी सोने जैसा निकल आए, कैसा फील होगा? बताइए कौन कौन सा ग्रुप है वो, और आपका इनमें से कौन सा ग्रुप था, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी यानी कि मिस्टीरियस, या बी वाले जो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, या वो जो कहीं ना कहीं ए एंटीजन्स को लेकर घूम रहे हैं, यानी कि आपका ए ओ से बिल्कुल अपोजिट। चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा आपका अपना ब्लड ग्रुप क्या है, और आइए चलिए एंजॉय करते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं आपके मैसेजेस पढ़ने, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा, अपनी रेडियो जॉकी उन्नति के साथ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में, और आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति। और भैया, आइए चलते हैं और चैट बॉक्स की तरफ रुख करते हैं। आपके पैगाम, आपके मैसेजेस जो चैट बॉक्स में आ चुके हैं उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। भैया, चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलती है ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM रेड एंड ब्लैक आइकन में, जिसको इंस्टॉल करके आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैसेज जो आज के प्रोग्राम में आया था वो प्रीति शुक्ला जी का आया था, जो हमें बहराइच से सुनती हैं। लिख रही है, गुड मॉर्निंग अति मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप? आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोडा में। महक हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग मैम जी, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप? आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोडा में। विभू मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, और उन्होंने अपना ब्लड ग्रुप भी बताया है कि मेरा तो ओ पॉजिटिव है। क्या बात है, हाथ मिलाइए। नहीं, मत मिलाइए, दूर से रहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि चैट बॉक्स के अंदर से वो शकला का बुम बुम वाला हाथ निकल नहीं रहा है फिलहाल। गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? आपका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, और मेनली कई लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत कॉमन है, ये इसीलिए ओ पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी ओ पॉजिटिव है। एंड दैट्स व्हाई मच्छरों को ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं हम, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद प्रीति शुक्ला जी ने लिखा है, मेरा तो बी पॉजिटिव है। क्या बात है, क्या बात है, द रेयर इंडिपेंडेंट कैटेगरी में आप आती हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल सॉन्ग जो सुबह सुबह की चाय पर दिल खुश कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड लिखा है उन्नति जी, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। और जितने खुश हम हैं, आई थिंक इतने ही खुश आप भी होंगे मेरी आवाज़ को सुन करके। ओके, चाय पर होगी हमारी तुम्हारी बात, बेशक। एक्चुअल में भारत में कोई चाय ना पिए तो क्या ही मजा आता है, और चाय तो सिर्फ एक बहाना होता है किसी से मिलने का, किसी को याद करने का, किसी याद, कोई पुरानी याद को ताजा करने का, कुछ लम्हे चुराने का भागती हुई जिंदगी से। इसलिए अगर कोई चाय पे बुलाए ना, तो बेशक जाना चाहिए, भले ही आपको चाय ना भी पसंद हो तो भी जाओ, क्योंकि वो एक बहाना है आपसे मुलाकात करने का। गुलफिशा जी हमारे साथ जुड़ी है, जो लिख रही हैं, 100 100 100, थैंक यू सो मच। और इसके बाद प्रीति शुक्ला जी की स्माइल आ चुकी है अपने ब्लड ग्रुप की खासियत सुन के। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, कैसे हैं आप? इसके बाद ओके, इंडिया का खून हस्बैंड का, यानी कि पतियों का खून ज़्यादा पसंद है भारतीयों को, ऐसा गुलफिशा जी ने कहा है। इसके बाद सबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो मुंबई से सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, RH नल ब्लड ग्रुप। जी हाँ, बेशक, आपने बहुत सही जवाब दिया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप अगर अभी तक कोई माना जा रहा है तो वो RH नल है। हम आपको बता दें, इसके अंदर RH नहीं होता है, RH नल होता है, इसकी वजह से इस खून में बहुत सारे एंटीजेंस की कमी होती है, और यह खून इसे और भी ज़्यादा रेयर बना देता है। इसका जो कलर है वो सुनहरा होता है, यानी कि गोल्डन कलर का होता है, और ये किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। डजंट मैटर वो ए बी है, माइनस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो किसी को भी दिया जा सकता है, और इसीलिए ये खून और भी ज़्यादा महंगा हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है खून। इसके अलावा इंडिया में एक ब्लड ग्रुप होता है, इसको कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये वो ब्लड ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है। इस ब्लड ग्रुप की एक खासियत है कि इसे बाकियों के खून से मतलब नहीं है। अगर आप इसको किसी और, यानी कि स्पेशली जो एच एंटीजन होते हैं, जिसमें ए बी और ओ ब्लड ग्रुप आते हैं, अगर इनका देते हैं तो इनके कुछ लाइफ डिसीजेज या फिर लाइफ इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एलर्जी होती है पीनट खाने से, कुछ को एलर्जी होती है पॉलन से, कुछ को किसी इस बात की एलर्जी हो सकती है। बट जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इनको अगर बचाना है तो कुछ जो कॉमन ब्लड ग्रुप है जिसमें ओ ए बी और ए बी आते हैं ये सब नहीं देना है, अदरवाइज इनका लाइफ इश्यूज ट्रिगर हो जाएंगे, इनकी जान पर बात बनाएगी। आप खून दे रहे हो जान बचाने के लिए, हो उल्टा जाएगा। एंड इसके बाद लिखा है गुड मॉर्निंग आरजी जी, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं। इरफान शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओके, जो भैया तारीफ कर रहे हैं गुलफिशा जी की, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गुड मॉर्निंग मैम, लिखा है कमल लैन जी ने, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, और बहुत सारी इमोजीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सुजीत जी कह रहे हैं जो प्रोग्राम चल रहा है इसका नाम क्या है, चूंकि मैंने कल से आपका एफएम ज्वाइन किया है, आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं, आपका नाम शायद आरजी उन्नति है। जी हाँ, बेशक मेरा नाम आरजी उन्नति है और आप मुझे सुन रहे हैं फिलहाल गुड मॉर्निंग गोंडा में, यानी कि आप ये मॉर्निंग का स्पेशल वाले प्रोग्राम में। तो दोस्तों आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंटेंट है आपको देने के लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ, सुनते रहिए आपका फेवरेट वाला एफएम रेडियो ज्ञानस 89.6 एफएम। फिलहाल इस बेहतरीन से गाने को एंजॉय करिए जो कि है धड़क फिल्म से पहली बार है जी, पहली बार है जी, क्योंकि आपका भी दिल लड़का है ना। हाँ जी मुझे पता है, तो आइए एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हां जी, तो आप सुन रहे हैं आज उन्नति के साथ, यानी कि आपकी अपनी होस्ट उन्नति के साथ आपके मॉर्निंग का स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और दोस्तों, गाना सुनते सुनते ना मेरे दिमाग में एक बड़े ही कमाल के कंपोजर की कहानी चल रही थी। एक ऐसा कंपोजर जो एक्सपेरिमेंट से बहुत प्यार करता था। अगर आपको मैं कहूं कि एक चेहरा, एक एक्सपेरिमेंट और एक म्यूजिक से मोहब्बत वाला कोई इंसान बताइए ना, तो आई थिंक आप गेस नहीं कर पाओगे। कि गेस कर सकते हो? चलिए बता ही दीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि ऐसा कौन सा कंपोजर है जिसे एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार था, जिसके लिए म्यूजिक स्टूडियो काम एक्सपेरिमेंट लैब ज़्यादा थी, जिसके अंदर बैठे बैठे आप गाना गा सकते हो। इवन आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से इंस्ट्रूमेंट बना डालेगा। जिसकी तारीफ में खुद गुलजार साहब ने लिखा है कि उनके साथ टुटोयो तो ट्रेन की पटरी पर भी बैठ के गाना गाया जा सकता है, कहीं भी गाया जा सकता है। ऐसे कौन से म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं जहां आजकल इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑटो ट्यून होता है, एआई का इस्तेमाल होता है, वहीं उस वक्त पे एक ऐसा कंपोजर बैठा था बॉलीवुड में जो भाई म्यूजिक को एक अलग ही रुख दे रहा था, एक अलग ही डायरेक्शन दे रहा था, जान डाल रहा था। और उनके उस गाने को अलग अलग लोगों ने सुना, एंजॉय किया, इवन सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी उनकी ट्यून्स फेमस हुई, उनके म्यूजिक पॉपुलर हुए, लोगों ने एंजॉय किया। उनके कुछ गाने तो इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि लोगों ने उसको एंथम बना डाला था अपना। जी हाँ, ऐसा कौन सा कंपोजर है जो म्यूजिक स्टूडियो में एक्सपेरिमेंट करता है, जस्ट लाइक एक कोई केमिस्ट्री लैब हो जिसके अंदर फिजिक्स को, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आपको वो गाना याद है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को? उसके स्टार्टिंग में आपको जो ग्लास की आवाज आती है ना, ग्लास टकराने की, वो सिर्फ यूं ही नहीं था, वो उस म्यूजिक कंपोजर का एक्सपेरिमेंट था कि क्या हम ग्लास से बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। महबूबा महबूबा शोले फिल्म की, उस गाने को आपने जरूर सुना होगा। उसके आगे जो पहले गाना शुरू होते जो म्यूजिक बजता है, जो ट्यून आती है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकली है, वो बियर की खाली बॉटल्स थी जिसको बैठ बैठ के बजा बजा के कहीं ना कहीं से गाना निकाल दिया गया था। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसमें ट्यून याद है? जी हाँ, वो एक कंघे से बनाई गई थी। कमाल की बात है ना, ऐसे कंपोजर को हम प्यार से बहुत कुछ कहते हैं, बट उनके रियल एक्सपेरिमेंट्स को हमने कभी भी इतना नहीं सराहा। उनके म्यूजिक जिसने हमें आज के वक्त में भी उन गानों को सुनने का मौका दिया, जिन्होंने आज भी हमें झूमने पे मजबूर किया, भले वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी हमारे बीच है, हमारे जुबान पर है, हमारे लबों पर है, और हम कहते भी हैं प्यार से उन्हें कि भाई किसका गाना चल रहा है, और कोई अगर पलट के कह दे कि पंचम दा का, तो दिल खुश हो जाता है। एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर जो जब भी आया, जब भी उतरा म्यूजिक के लिए, बस इतिहास रचा। फिर चाहे वो आशा जी के साथ मिलके गाना गाना हो, या फिर बैठे बैठे स्टूडियो में बिना इंस्ट्रूमेंट के कोई गाना बजाना हो, कभी किसी की पीठ थपथपा के ट्यून निकाली है, कभी बियर की खाली बॉटलों को टकरा के, कभी ग्लास के साथ खेल के, कभी झाड़ू और कंघे से। आपने नहीं सोचा होगा ना कि कभी एक झाड़ू और कंघा भी किसी के म्यूजिक का सहारा हो सकता है, या दो ग्लास जो हमारे घर में लुढ़कते पड़कते रहते हैं, इधर उधर गिरते रहते हैं, ये कभी म्यूजिक बन सकते हैं। आपने नहीं सोचा होगा कि जो खाली बोतलें आप फेंक दिया करते हैं, वो म्यूजिक बन सकता है, वो किसी म्यूजिक का इतना बड़ा पार्ट बन सकता है। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक इंसान और उस इंसान की पीठ पर सिर्फ थपथपाने से, यानी कि जो आप थपथपाया करते हैं, मारा करते हैं, उससे भी किसी गाने का म्यूजिक तैयार किया जा सकता है। ये बात, ये स्पेशल चीज जो थी ना, वो सिर्फ एक कंपोजर के अंदर थी जिन्हें प्यार से पंचमदा और नाम से आरडी बर्मन कहते हैं। उनके गाने बड़े ही हिट होते हैं, बहुत ही जबरदस्त होते हैं, और इन गानों को सुनते सुनते मुझे उनकी याद आ गई, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी कुछ बातें शेयर कर ली जाए। और मैंने बताया आपसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो अगली बार जब भी आप पंचम दा का गाना सुनिएगा ना, तो ये मत सुनिएगा सिर्फ कि ये सिर्फ एक गाना है जिसको लिखा गया है, इंस्ट्रूमेंट्स पे फिल्माया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स पे इस पे बनाया गया है, फिल्मों में लगाया, ना ना ना ना, आप सोचिएगा कि पंचम दा ने इसमें किस कदर अपना हुनर दिखाया है। म्यूजिक से इतनी मोहब्बत कि जब वो इजिप्ट गए थे घूमने, उन्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी थी जिसको तंबूला कहते हैं, उन्हें बहुत मस्त लगा। भारत वालों ने कभी उनका नाम भी नहीं सुना था कि ये क्या बवाल चीज़ है, वो उसे उठा लाए भारत में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार था, म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्यार था, और उन्होंने खुद का एक तंबूला बना दिया जिसमें तंबूले का शेप था, बीच में एक मटका था और नीचे साइकिल चलाने वाला पैडल लगा था, और वो उससे म्यूजिक बना रहे थे। आपने देखा होगा म्यूजिक कंपोजर्स को, म्यूजिक आर्टिस्ट को, सिंगर्स को इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं थे, पहले से मौजूद हैं। किसी ने गिटार बनाया है, किसी ने पियानो बनाए हैं, लेकिन पंचम दा अपना इंस्ट्रूमेंट खुद ही डिज़ाइन कर लिया करते थे, उन्हें ज़रूरत नहीं थी इन सारी चीज़ों की। तो ये खासियत थी आपकी अपने पंचम दा की, आर डी बर्मन की, जिन्हें मैं आज भी दिल से बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। और आइए उन्हीं की याद में एक बढ़िया सा गाना सुन लेते हैं जो आपका फेवरेट है, यादों से चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आपकी अपनी गुड मॉर्निंग होना में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसके बाद हम आपको मिलाने वाले हैं उस इंसान से जो आज भी हमारे बीच में मौजूद है, जिन्हें बनारस के लोग कहते हैं कि अगर भगवान नहीं देखा है तो इनको देख लो, आपको पता चल जाएगा भगवान कैसे होते हैं। बताते हैं वो कौन है और क्यों उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं लोग, जरूर बताएंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस बात, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए आर डी बर्मन साहब का एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग चुरा लिया है तुमने जो दिल को।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग ओरा में। वापस इस्तकबाल करते हैं आपका। मैं हूं आपकी अपनी अर्जुनती और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग का स्पेशल वाले शो आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM पर। कमरन अहमद की आवाज में आपने इंजॉय किया लंबी जुदाई, जो कि फिल्माया गया था इमरान हाशमी के ऊपर जन्नत फिल्म में। इस गाने को सुनने के बाद, जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले प्रॉमिस किया था, हम आपको लेकर जाएंगे उस ऐसे पर्सनालिटी की तरफ, एक ऐसी शख्सियत की तरफ, एक ऐसे शख्स की तरफ जिन्होंने अपनी कहानी इतनी खूबसूरत बनाई है, इतनी प्यारी बनाई है, जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर्ड कर रही है। आपने दुनिया में ना बहुत सारी पर्सनैलिटीज देखी होंगी, बहुत सारे डॉक्टर्स से मुलाकात की होगी, कभी ना कभी आपने भी हॉस्पिटल के दर्शन जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करूंगी, मैं विश भी करूंगी, दुआ करूंगी कि आप कभी भी हॉस्पिटल ना जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी हम खुद बीमार पड़ते हैं और या फिर किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जरूर जाते हैं और वहां हमें डॉक्टर्स से मुलाकात करने का मौका भी मिलता है, जहां कुछ डॉक्टर्स आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपका इंसान या फिर आपका अपना ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। वहीं पर कुछ इंसान, कुछ डॉक्टर्स ये भी भरोसा दिला देते हैं कि नहीं यार, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। जहां कुछ डॉक्टर्स सिर्फ आपकी केयर के लिए जी जान लगाते हैं, वहीं पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे से बहुत सारे पैसे छाप रहे हो। और ऐसा हमने अक्सर देखा है, लोग इवन घरों पर बात करते हैं, डॉक्टर बन जाओ, 7 पुश्तों का काम हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओ, आने वाले 7 पीढ़ियों का जिंदगी सवर जाएगी। घर का एक डॉक्टर अगर कोई बन जाता है ना, तो उसके आगे सारी जिंदगी सवर जाती, उसकी, उसके बच्चों की, उसके बच्चों की, बच्चों की। क्यों? क्योंकि भैया डॉक्टर्स तो बड़ा पैसा छापते हैं। डॉक्टर की फीस, सिर्फ मात्र फीस, मिलने की फीस 300 से 1000 होती है, सोचिए। वहीं पर एक ऐसे भी डॉक्टर है बनारस में जहां पर लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, और इसके पीछे का रीजन भी बहुत क्लियर है। एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका गया, जिसने इंग्लैंड से पढ़ाई की, हो सकता था वो वहां रुक जाए, बट वो नहीं रुके, वो भारत वापस आए। मात्र 250 रुपए में उन्होंने बनारस के BHU में पढ़ाना शुरू किया, एज अ प्रोफेसर शुरू किया। उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, उन्होंने कोई महंगी कार नहीं ली, उन्हें महंगी कार, BMW, लंबोर्गिनी, फरारी, इन सारी चीजों से मतलब ही नहीं, यहाँ तक कि उनके पास अल्टो भी नहीं है, 800 भी नहीं है, फॉर्चूनर, ब्रेजा, क्रेटा, इन सबकी तो बात ही छोड़ दो, उनके पास कोई कार नहीं है। इवन कार की तो बात दूर है, उनके पास अपनी कोई बाइक तक नहीं है, ना बाइक ना साइकिल, वो आज भी पैदल चल रहे हैं। आज उनकी उम्र भले ही 84 साल की हो चुकी है, लेकिन वो आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्लस आज भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो माहिर हैं ओपन हार्ट सर्जरी में। जी हाँ, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। और कमाल की बात यह है कि कार्डियोलॉजिस्ट जिनको देखते ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अरे बाबा, इनके पास तो बड़ा पैसा होगा, ये तो पैसा छापते होंगे, इनके घर में पैसा तो ऐसे ही पड़ा होगा। वहीं पर एक ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके पास कुछ पैसे नहीं है। रीजन ये नहीं है कि वो पैसे कमाते नहीं है, कमाते भाई, उनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, बट कमाल की बात यह है कि वो अपनी सैलरी का सिर्फ 1% अपने पास रखते हैं जो उनके खाने पीने की होती है, अदरवाइज वो अपना बाकी सैलरी डोनेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है। जब उन्हें पद्मश्री के लिए, जब उन्हें अवार्ड देने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया था, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकता, मुझे इस अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं छुट्टी लूंगा तो पीछे से मेरे मरीज कौन देखेगा, मेरे पेशेंट्स का ख्याल कौन रखेगा, मेरी एक दिन की छुट्टी में अगर मेरे मरीज की जान चली गई या उसे कुछ हो गया, मामला सीरियस हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे किसी अवार्ड से नवाजे जाने की कोई भी खुशी नहीं है, अगर राष्ट्रपति को मुझसे मिलना है तो वो मेरे BHU में आ जाए, मेरे फ्लैट पर आ जाए, मैं राष्ट्रपति भवन चलकर नहीं आऊंगा। ये बात उन्होंने साफ कह दी और राष्ट्रपति जी ने उनकी बात मानी भी। उन्हें दोबारा से बुलाया गया और इस बार जब BHU के पूरे यूनिवर्सिटी ने, पूरे मेडिकल स्टाफ ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई कि सर आप जाइए, आपके मरीजों को कुछ नहीं होगा, हम हैं ना पीछे से, हम ख्याल रखेंगे, हम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम आपको वादा करते हैं कि आपके मरीजों को उतने घंटे कुछ नहीं होगा जितने घंटे आप यहाँ नहीं रहेंगे। इसके बाद वो गए हैं अपने अवार्ड को लेने, अदरवाइज वो अवार्ड लेने ही नहीं जाते थे, हर बार मना कर देते थे कि अगर प्रधानमंत्री को भी मिलना है तो वो मेरे पास आए, मैं उनके पास नहीं जाने वाला हूँ, मेरे मरीज किसी भी अवार्ड से, किसी भी प्रेसिडेंट से मुलाकात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं मिल सकता। वो 84 साल के हो चुके हैं और आज भी हाथ में एक छोटा सा बैग और एक काला छाता लेकर रोज निकल पड़ते हैं घर से, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पैसों का शौक है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मेरे शरीर में जिंदगी है, मैं तब तक अपना कर्म करूंगा, मैं तब तक इन मरीजों का ख्याल रखूंगा, मैं तब तक इन लोगों से प्यार करता रहूंगा। एक ऐसा डॉक्टर जो पैसे नहीं लेता, जिसने कभी शादी नहीं की, शादी ना करने की जब उनसे वजह पूछी गई तब उन्होंने यही कहा कि भाई मैं अगर शादी कर लेता तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता और मुझे अपने मरीजों की सेवा करने के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई भी पल नहीं चाहिए कि मैं अपने मरीजों से दूर हो जाऊं। उनके मरीज उन्हें भगवान मानते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी जो कि करोड़ों में होती है उसको वो फ्री कर देते हैं, वो नहीं करते हैं, वो फ्री में गरीबों के लिए इलाज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और कमाल की बात एक और बताऊं, उनके पढ़ाए बच्चे आज हार्ट सर्जरी में माहिर है। जी हाँ, 250 रुपए से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था और उन्होंने जिस जिस इंसान को पढ़ाया है आज वो इंडिया के टॉप सर्जन बन गए हैं, वो इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट बन चुके हैं। इवन क्या पता आप जिस डॉक्टर के पास अपनी दिल की बीमारी लेकर गए हो और उसने कहा हो कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी सर्जरी होगी, हो सकता है वो भी उसी इंसान से ट्रेंड होकर आया हो जो बनारस में बैठ कर पढ़ा रहा है, लोगों को ऑपरेशन करना सिखा रहा है, लोगों की जिंदगी कैसे बचानी है ये बता रहा है, जो ये सिखाता है कि पैसे सब कुछ नहीं होते, पैसों से आगे भी एक दुनिया है, डॉक्टर्स हमेशा ऐसे नहीं होते जैसा कभी कभार आप क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, जिन्हें किसी अवार्ड की, किसी पहचान की जरूरत नहीं है, बस वो अपना काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत सादा इंसान, बहुत सादा ही उनकी पर्सनैलिटी है, बट जितने खूबसूरत उनकी बातें आपको सुनने में लग रही है उतना ही खूबसूरत उनका दिल है। ओपन हार्ट सर्जरी के मास्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो आज भी लाखों करोड़ों की फीस माफ करके फ्री में सर्जरी कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिटायर नहीं हो चुके, वो बहुत साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने फ्लैट से अपने व्हाइट कोट के साथ निकल पड़ते हैं बच्चों को पढ़ाने और अपने टाइम पर ड्यूटी करने। वो पैसे नहीं लेते, वो अपने पेंशन के पैसे भी दे चुके हैं, उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद पैसे दिए गए थे वो भी उन्होंने डोनेट कर दिए, उन्होंने अपने पास उसका एक टुकड़ा भी नहीं रखा ये सोचकर कि मेरे को क्या काम, ना मेरे बच्चे, ना मेरी शादी हुई, ना मेरा घर, ना मुझे पैसों की जरूरत है, पैसों का लालच तो मुझे कभी था ही नहीं, इससे किसी गरीब की मदद हो जाएगी। और उन्होंने अपने सारे पैसे जो कि शायद करोड़ों या अरबों तक पहुंच चुके होते अब तक, वो सब किसी और के नाम कर दिए। और इस महान पर्सनैलिटी का अगर मैं नाम बताऊंगी ना, चलिए तो बता देते हैं, जो बहुत सारे गूंगे बच्चों को आवाज दे चुके हैं, बहुत सारे दिल जो ऑलमोस्ट धड़कना बंद कर रहे थे उनको एक नई जिंदगी दे चुके हैं, उनका नाम है तपन कुमार लहड़ी। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, फिलहाल ये रहे बनारस में रहे हैं। आई होप आपकी कभी मुलाकात हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो क्या लगता है आप कभी मिलने जाएंगे, क्योंकि भाई लोग इनसे मिलने के लिए पागल रहते हैं बट इनके पास वक्त नहीं होता कि लोगों को वक्त दे पाए, राष्ट्रपति को भी नहीं दे पाए। एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत हमारे बीच में रहती है जिसके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि हमारा ध्यान इंटरनेट के किसी दूसरे कोने में लगा हुआ है, और जो रियल पर्सनैलिटीज हैं हम उन्हें खोते जा रहे हैं, जो रियल सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें हमें कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहिए हम उन्हें खोते जा रहे हैं, बिकॉज हम ट्रेंड के पीछे पागल होते जा रहे हैं। बनारस के लोग इन्हें भगवान कहते हैं, और अगर आप भी इन्हें भगवान मानने लगे हैं तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे थोड़ी लोग कहते हैं कि अगर आपने भगवान के दर्शन नहीं किए तो बनारस में आकर के तपन जी से मिल लो, आपको समझ में आ जाएगा डॉक्टर्स को भगवान क्यों कहा जाता है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आशा के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 11.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी भाई, तो वक्त हो गया है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, क्योंकि घड़ी धीरे धीरे इशारा कर रही है कि फुर्सत के लम्हे निकालिए और चलिए थोड़ा सा विदा लेते हैं। थोड़ा सा क्या, क्योंकि मुलाकात आपसे फ्राइडे में होने वाली है। तो भाई आइए बात कर लेते हैं आपके चैट बॉक्स में आए मैसेजेस की जो आपने भेज दिए हैं। लेकिन उससे पहले भाई मेरा आपसे सवाल है कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है, वो पसंद आया होगा, आपको किस कंटेंट में सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे ज़रूर से बताइएगा आपके अपने वाले चैट बॉक्स में। आज का फीडबैक आपकी तरफ से, आपका ओपिनियन, आपका थॉट क्या है, आपके विचारों की, आपके फीडबैक्स की, आपके ओपिनियंस का मुझे इंतज़ार है। तो जब तक हम पढ़ते हैं आपके मैसेजेस, तब तक आप ज़रूर बताएं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू यू, जय श्री राम, राधे राधे, आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड सुजीत जी ने लिखा है, आरडी बर्मन जी आप बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके बाद लिखा है सुजीत जी ने कि वाकई आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, मैं तो आपसे बहुत ही इंप्रेस हुआ, गॉड ब्लेस यू नतीजे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवा पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मुस्कुराते होंगे और ऑफकोर्स मेरी तरह खिलखिला रहे होंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत मॉर्निंग है भाई, आज बादल है, हवा है और कहूँ तो मेरा पसंदीदा समा है। और इसके बाद मोहम्मद तालिब अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा निवासियों, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आई थिंक आप भी गोंडा से हैं मे बी। धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं, तो मैं सुनते हैं आवाज़ विकास से लिखा है, सबसे पहले ऐसे डॉक्टर को मेरा नमन, नमन पहुँचे, इन डॉक्टर साहब की सोच डॉक्टर साहब जन सेवा है और वह जन सेवा करके सोचते हैं कि मैं हरी की सेवा कर रहा हूँ। जी हाँ, बेशक हो सकता है, फिलहाल जो भी हो, लेकिन ऐसी शख्सियत से मुलाकात जिंदगी में एक बार जरूर करनी चाहिए, और मौका मिला तो मैं तो करूंगी, आप अपना जरूर बताइएगा कि आप करने वाले हैं ऐसे इंसान से, ऐसे डॉक्टर से मुलाकात या नहीं। एंड ओके, वल्फशा जी लिख रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी, आप रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर वेंसडे मैं मिलती हूँ गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके साथ हमेशा। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। आपका अगला कार्यक्रम गांव की गूंज, जिसमें आपको वही गांव की सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आने वाली है, भले आप शहर में क्यों ना बैठे हो, लेकिन आप एंजॉय पूरा करेंगे, याद बचपन की आपको गांव तक जरूर लेकर जाएगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आशोदी के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो कैनस 89.6 FM पर। बाय बाय, टेक केयर।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: आज का नया प्रोग्राम है गांव की गूंज की टीम का। अप्रैल का महीना चल रहा है, पर गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है।
8: आप सबने बैंगलोर की न्यूज पढ़ी? अरे वही शहर जो IT कैपिटल ऑफ इंडिया है, पानी के भयंकर संकट से जूझ रहा है। अरे मेरा भाई इंफोसिस में काम करता है, वो बता रहा था कि हम लोगों ने मांग की है कि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए।
9: अरे जिम्मी तुम सुनो, अब की गर्मी में तुम बैंगलोर जाना चाह रही थी? देखो हरिओम क्या बता रहा है कि बैंगलोर के लोग छुट्टी लेकर अपने गांव आ रहे हैं, वहां पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है।
10: हरिओम सही कह रहा है, स्विमिंग पूल पर तो रोक लगा दी गई है, कार वॉशिंग नहीं कर सकती, यहां तक कि लोग 2-3 दिन में एक बार नहा रहे हैं, और कपड़े धोना तो जैसे भूल ही गए हैं।
11: हाँ यार, कल रात मैं और साक्षी भी न्यूज देख रहे थे, बता रहे थे कि बैंगलोर में पहले पॉपुलेशन करीब 80 लाख की थी, अब 1.5 करोड़ पहुंच गई है। जिस फ्रेंड के पास हम सभी जा रहे थे, वो वापस आ रही है, अब अपने गांव से ही काम करेगी।
8: बैंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता था एक टाइम पर आज कंक्रीट का पूरा जंगल बन गया है। किरण दीदी, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप अपने गानों को तैयार कर लीजिए और मैं गांव के सभी लोगों से मिलकर पानी की समस्या पर काम करता हूँ।
10: ठीक है हरिओम, बीच में मैं गाने सुना सुना कर तुम लोगों की स्ट्रेस दूर करती रहूंगी।

0: गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य था कि हमारे गांव वीरान न हो, लोग उसकी मिट्टी से जुड़े रहें। और देखो, जब कोरोना हुआ तब हम सब ने देखा कितने गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, उनको कम नुकसान हुआ। गांव के दौर में जब हम लोग सब मुसीबत में थे आदि, तब भी सबको आने वाली गांव की मिट्टी ही याद आई।
1: इसलिए तो हमारी टीम कहती है कि अपनी मिट्टी की खुशबू कम ना होने दीजिए, उसे आबाद रखिए, उसे ना भूलिए। मुसीबत के समय, परेशानी के समय सिर छुपाने आप वहीं जाते हैं।
2: जब से आप लोगों के गांव की गूंज की टीम के साथ जुड़े हैं, तब से बराबर देख रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। कोरोना में तो लाखों लोग अपने घर वापस लौट आए थे। अब बेंगलोर में पानी की समस्या, सुकून तो अपने गांव की मिट्टी में ही मिलता है।
3: हमारी जिम्मी कितनी सयानी हो गई है, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। चलो, हमारे दूसरे गाने की धुन भी तैयार हो गई है, सुन लो तुम लोग।

0: पता है, जब हमारे बड़े भैया बैंगलोर जा रहे थे तो बहुत दुखी मन से जा रहे थे, पर भाभी को गांव में रहना पसंद ही नहीं है। जब कभी बेचारी गांव में रही ही नहीं तो गांव की वैल्यू क्या ही जाने।
1: हाँ हरिओम भैया, कल भाभी ने हमको भी फोन किया था और कह रही थी कि जब हम लोग बैंगलोर जा रहे थे तब बहुत खुश थे कि चलो गांव से पीछा छूटा, पर दादी साथ समझा रही थी कि गांव की मिट्टी को बंजर मत होने देना, घर की चौखट को हमेशा बनाए रखना, जब भी छुट्टी हो घर आती रहना। पर बहू, समय के चक्र को तुम जानती नहीं, और ये याद रखना कि जितनी भी परेशानी आए गांव की मिट्टी कभी भूखा नहीं रहने देगी।
2: सच कह रही हैं आप। सोचिए, आज बैंगलोर में लाखों कमाने वाले लोग भी पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। करोड़ों के घर हैं लोगों के पास, एक से बढ़कर एक बाथरूम है, पर एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
3: पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे शहर और हमारे गांव में यह समस्या ना हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। अभी मौसम विभाग की चेतावनी है कि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ेगी। हम सब क्या करें? चलो मिलकर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जिस पर हमें काम करना है।
4: पानी की समस्या से निपटने के बारे में अगर आज से नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन के पास तो पीने को साफ पानी रहेगा ही नहीं। पूरी जानकारी हम लोग इस समस्या पर काम करते हैं। शंकर चाचा चाची गोरखपुर से आए हुए हैं और पूरे गांव की गूंज की टीम के लिए टेरी कोटा से सामान लाए हैं। तुम सब ले जाना और गोरखपुर पर एक गाना है, वह भी सुनते जाओ।
5: गोरखपुर के, हाँ गोरखपुर के।
4: अरे क्या,

0: है कि पानी को बचाना है। पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, पर पीने योग्य पानी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1% है। पूरी पृथ्वी का 97% पानी समुद्री है यानी खारा, 2% ग्लेशियर और पर्वत है। बचा जो 1% है वो हम पीने के काम में लेते हैं और घर के बाकी काम में लेते हैं।
1: इतना कम पानी है हम लोगों के पास, हम अब गिलास में उतना ही पानी देंगे जितना पीना है, नहीं तो 2 घूंट पीते हैं और बाकी सब फेंक देते हैं।
2: ठीक कह रही हैं समता दीदी। अभी कल ही मैं एक शादी में गई थी और वहाँ जैसे ही बारात वाले पहुँचे सबको एक एक बोतल पकड़ा दी। अब सभी ने बस 1 या 2 ही घूंट पानी पिया और बाकी पानी फेंक दिया। अब किसी को दोबारा प्यास लगे तो वो दूसरी बोतल ले लिया करता था। अब इस पे देखिए पानी कितना ज्यादा वेस्ट हुआ।
3: अरे हाँ, आज तक तो हम भी यही करते थे, पर अब से नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे, जब तक एक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी नहीं लेंगे, और दूसरों से भी यही कहेंगे कि जितना पानी पीना हो उतना ही ग्लास में लीजिए।
4: गांव की गूंज की टीम का सेव वाटर की मुहिम का ये पहला कदम, और दूसरा कदम ब्रश करते समय नल चलाकर छोड़ नहीं देंगे, नहाते समय बेकार में पानी बहने नहीं देंगे, समय समय पर लोगों को भी समझाते रहेंगे ज्ञानस्त्री रेडियो के माध्यम से। जल ही जीवन है, लो यह गाना सुनो और लहसुन की चटनी के साथ घुघरी खाओ।

0: 30% शुद्ध जल हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, पर अंडरग्राउंड वाटर का मुख्य सोर्स जो है वो वर्षा है। और आप सभी न्यूज में सुनते ही रहते होंगे कि वर्षा प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। हर जगह तो घर, सड़क, पुल बनते जा रहे हैं, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। हर जगह तो घर, सड़क, पुल बनते जा रहे हैं, करोड़ों का घर बनवाएंगे, पर बरसात में अपने घर में पानी का संचय कैसे होगा, इसका कोई भी उपाय नहीं करेंगे। आजकल गमले का फैशन चलने लगा है, घर में पेड़ पौधे लगाने का फैशन चला है। तो अगर घर आप बनवा रहे हैं तो घर में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दें, जिससे क्या हो, बरसात का पानी सोख कर जमीन के अंदर चला जाए।
1: हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने छत के पानी को पीवीसी पाइप लगाकर बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लिया था, और कई दिन तक उसी पानी से कार को धोने का काम, बगीचे में डालने का काम करते हैं। देखो, हमारे पास फोटो भी है। तब हम सोच रहे थे कि ये सब बेवकूफी है, पर आज समझ आ रहा है कि कितना अच्छा काम किया है उन्होंने।
2: आज ही हम घर जाकर पापा से बोलेंगे कि क्या पापा, इस बरसात में हम लोग बारिश के पानी को बचा सकते हैं? एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है हम लोगों ने। अपना जो लान था ना, उसको हमने भैया से कह के बहुत ही जिद करके बोला कि भैया इंटरलॉकिंग वाला टाइल्स लगवा दीजिए, जबकि भैया भाभी दोनों बहुत मना कर रहे थे इसको लगवाने के लिए।
3: श्वेता मैम, जब जागो तभी सवेरा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, रुकवा दीजिए। जब हम सही होंगे तभी तो लोगों को अच्छी बातें सिखा पाएंगे।
4: अपने घर के पास पानी से भरी बाल्टी या नादा लगवा दीजिए, जिससे सड़क के कुत्ते, आवारा जानवर प्यास से ना मरे, और छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, जिससे चिड़ियों को पानी मिले और हम सब की बूंद बूंद की कोशिश और कितने को जीवन दान मिलेगा।

0: ये गाना किरण दीदी बिट्टू की शादी के लिए तैयार किया गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। गांव में छोटे छोटे गड्ढों में पानी डालने के लिए सरकार पैसे भी देती है और साथ में ताल भी खुदवाती है सरकार, पर प्रधान पैसे खा जाते हैं और उतना अच्छा काम तो करते नहीं है। और गांव के लोग बेचारे ठहरे सीधे साधे, प्रधान से पूछ भी नहीं पाते हैं। और हम लोग की टीम का काम है जागरूकता फैलाना और लोगों को बताना कि उनका अधिकार क्या है।
1: हमारी नदियों और झीलों की गहराई इतनी कम होती जा रही है क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। गहराई कम होने के कारण बरसात के पानी इकट्ठा होने की जगह से बहुत जगह भी कम होती जा रही है। बेंगलोर में भी न्यूज में था कि जो लेक थे उस पर बिल्डिंग बन गई। इन्हीं सब कारणों से पानी की कमी हो रही है।
2: अरे हाँ यार, यहाँ पर भी तो पीछे तालाब था जिसमें बरसात का पानी चला जाता था। पिछली बार तो बरसात में करीब एक महीने तक कॉलेज और गली में पानी भरा हुआ था। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था।
3: अपनी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। अब बेंगलोर में ही देखो, हर किसी को वही नौकरी करनी है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, पर कल ही हमने देखा कि वहाँ का तापमान लखनऊ से 1 डिग्री ज्यादा था। बर्फ के गोले खाते खाते यह लोकगीत सुनो, हम नहीं खाएंगे, गला तुरंत पकड़ लेता है।

0: पानी की परेशानी को दूर करने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ पेड़ हमें गर्मी से राहत पहुँचाते हैं, वहीं गांव और शहर के तापमान में कम से कम 2-3 डिग्री का अंतर होता है। हवा को शुद्ध रखते हैं पेड़। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ एसी कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रात में तो आज भी लोग छत पर, आंगन में या बाहर चारपाई लगाकर मच्छरदानी के अंदर सोते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं। बिल्कुल हेल्दी लाइफ होती है उनकी।
1: पता है, पेड़ लगाने से उस एरिया में वर्षा ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी के जंगल में होती है। फिर जब हम सबको पता है कि जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा वर्षा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करते और रक्षा करें, जिससे हमारे यहाँ कभी पानी की समस्या ही ना हो।
2: समता मैम, आजकल मौसिन राम करके जगह है, वहाँ माना जाता है कि चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश होती है। दोनों बहुत पास हैं, पर अभी इस बात पर विवाद ही चल रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है।
3: हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी वर्षा हो और वर्षा के पानी को हम लोग संचित करें, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर पानी के मूल्य को नहीं समझेंगे तो हम भी और हमारी भी सिचुएशन बेंगलोर वासियों की तरह हो जाएगी। पानी के लिए हमें भी लाइन लगाना पड़ेगा।
4: और इस महंगाई के युग में पानी को हर काम के लिए खरीद रहे होंगे। हम सबको पानी को बचाना है, उसके मूल्य को समझना है। गांव की गूंज की पूरी टीम संकल्प लेती है कि पानी की हर बूंद बचाएंगे। पानी का हर बूंद बचाते चलो, जीवन का हर जश्न मनाते चलो।
5: अरे महंगाई का जमाना,

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी आरशी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना स्वास्थ्य संगिनी, सेहत सही लाभ के बारे के ताले लेकर आए हम स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत पहल, जिसमें बात करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य की। तो भाई, आज आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या बात होने वाली है, इससे जुड़ी जो चीजें हैं ना, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर हुआ होगा। अब ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब स्ट्रेस होता है तो वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और कहते हैं कि इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। बट जो लोग ये नहीं करते, यानी कि ना वो शराब पीते हैं, ना वो सिगरेट का सेवन करते हैं, ना वो तंबाकू खाते, तो वो क्या कर रहे हैं भाई? वो करते हैं स्ट्रेस ईटिंग, यानी कि वो बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी बात पे परेशान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चॉकलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं, बाहर के समोसे खाना शुरू कर देते हैं। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, बाहर से एक प्लेट शॉर्मा आ गया। किसी पार्टनर से झगड़े हो गए, ब्राउनी खा लिया। मम्मी ने कुछ कह दिया, फ्रिज में पड़ी जितनी भी चॉकलेट जितनी भी मिठाई थी पूरी की पूरी खाली कर दी। इसको मेडिकल की भाषा में कहा जाता है स्ट्रेस ईटिंग। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है और स्ट्रेस ईटिंग किस तरह से आपके सेहत को नुकसान करता है, आपको बता दे भाई। जो हम लोग ये चीजें खाया करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मीठा आता है, बहुत ज्यादा जंक फूड आता है, और एक्चुअल में तभी होता है जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें कहीं ना कहीं शुगर क्रश करने के लिए बोलता है, यानी कि चीनी खाने के लिए बोलता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए बोलता है। और आप गुस्से में बहुत ज्यादा खाना खा जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में दिख जाएंगे जो एक के बाद एक, उन्हें टेस्ट से कोई परवाह नहीं है, बस वो खाते जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई आज ये पूरी प्लेट ही साफ कर देगा क्या, पूरा ठेला खत्म कर देंगे। ये वो वाले लोग होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है या तुम सच में इतने भूखे हो। फिलहाल वो इतने भूखे नहीं होते, उन्हें खुद भी पता नहीं चल रहा होता है कि उस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस में वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। और ऐसा आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा। दिल धड़कने 2 एक फिल्म आई थी जिसके अंदर सेम कंडीशन दिखाई गई है, जब उनकी वाइफ को, यानी अनिल कपूर अपनी वाइफ को वेट को लेकर बार बार ताना मारते हैं तो वो और ज्यादा ओवर ईटिंग करती हैं और भी ज्यादा खाना खाती हैं। इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि भाई उन्हें खाना खाने से प्यार है, इसके पीछे की वजह यह है कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। और उस परेशानी को निकालने के लिए, खुद को बेटर फील कराने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए वो जितनी भी चीजें सामने रखी हैं, भले ही आप उसको ना खाने वाले थे, लेकिन क्योंकि आप परेशान हो, इमोशनल हो चुके हो, आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गया है, तो अब सामने पड़ी जितनी भी चॉकलेट जितनी भी ब्राउनी है आपने उठाकर सबकी सब खा ली और लोगों को लगता है कि यार ये इंसान तो मोटा होता जा रहा है, ये बहुत खाता है, इसको रुकना चाहिए। हाँ, वो खुद भी जानते हैं कि वो बहुत खाते हैं, उनको रुकना चाहिए, बट स्ट्रेस हॉर्मोन्स उनसे कुछ और कराता है। इसीलिए आज बात करेंगे हम आपके स्ट्रेस ईटिंग और एक्चुअल ईटिंग के बारे में, यानी कि जो माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में कि सोच समझ कर खाना चाहिए, समझदारी के साथ खाना चाहिए, वो क्या होता है और इमोशनल ईटिंग क्या होती है। WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि जो लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या फिर जो इमोशनल ईटिंग करते हैं उनके बीच में ओबेसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। और आजकल की बदलती दुनिया में जहां हम हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं पर स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। कभी ऑफिस का स्ट्रेस, कभी करियर का स्ट्रेस, कभी हेल्थ का स्ट्रेस, कभी इस बात का, कभी उस बात का, कभी रिलेशनशिप का, और इन सब के चलते जो एक चीज सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो हो रही है स्ट्रेस ईटिंग, यानी कि बेवजह का खाना खाना, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को डोपामिन रिलीज करने के लिए। डोपामिन क्या होता है? एक हैप्पी हार्मोन होता है जो ये बताता है कि भैया आप खुश हो चुके हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं और उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है वो भी डोपामिन से मिलती है। जब आप ऑनलाइन जाते हैं और देखते हैं कि आपकी पोस्ट पे 100 लाइक आ चुके हैं, तो जो खुशी आपको महसूस हो रही होती है वो भी डोपामिन से ही होती है। तो जब इसको रिलीज करने के लिए लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो आज हम समझेंगे इसी स्ट्रेस ईटिंग वर्सेस एक्चुअल ईटिंग को, कि समझदारी से खाना किसको कहते हैं और स्ट्रेस ईटिंग क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, कैसे ये आपके हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो सुनते रहिए मेरे साथ, और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM का प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, अपनी आशा के साथ। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्मार्ट एनर्जी और रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत पहल सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए हम आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल ईटिंग यानी कि स्ट्रेस ईटिंग वर्सेस एक्चुअल ईटिंग की। भाई, जब किसी को बहुत ज्यादा भूख लगे ना, वो भी गुस्से में, स्ट्रेस में, उसको कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग। और कभी कभी हमारा मन करता है कि हैं कुछ नहीं खाएंगे यार, दिमाग खराब हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ये भी होता है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो ये शब्द हम अक्सर सुना करते हैं और अक्सर कहते भी रहते हैं कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और लोग कहते हैं स्ट्रेस मत लो, तो ये स्ट्रेस है क्या और क्या नहीं लेना है, क्या लेना है? तो एक प्रोफेसर है, एक सेकेंड, प्रोफेसर का नाम खो गया मुझे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रजिता सिन्हा अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, और वो बताती हैं जो स्ट्रेस है वो क्या होता है। स्ट्रेस हमारे आसपास की परिस्थितियों, दिमाग में पैदा होने वाली चिंता, शरीर में होने वाले बदलाव जिसमें अधिक भूख का लगना, अधिक प्यास का लगना, या फिर किसी भी चीज पर चिढ़ जाना, इन सारी चीजों को दिखाता है। और ये शुरू होता है आपके एक छोटे से हार्मोन से जो कि होता है कॉर्टिसोल। जब भी आप किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आपके बॉडी में रिलीज होता है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, यानी कि आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और यही वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपसे चीनी और फैट की डिमांड भी बहुत ज्यादा करता है। यानी कि जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो आपका शरीर आपसे मांगेगा कि भैया हाँ तो हमको चीनी दे दो, या तो हमको मीठा दे दो, या तो हमको कुछ फैटी वाला खाना दे दो जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। और इसीलिए स्ट्रेस ईटिंग में एक्चुअल में जो लोग खाना खाते हैं वो या तो पूरा चीनी से भरा होता है जिसमें चॉकलेट, ब्राउनी, स्वीट्स और ये सारी चीजें आती हैं, या फिर बहुत ज्यादा फैटी खाना खाते हैं जिसमें आता है समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, बाहर की चीजें, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब भी है। प्रोफेसर सिन्हा ये भी बताती हैं कि ये आपकी अलार्म सिस्टम है, यानी कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ये उन सब पर असर डालता है और वहीं से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन सक्रिय हो जाता है। आपको बता दें कि भाई प्रोफेसर सिन्हा कहती हैं कि कुछ वक्त के लिए, यानी कि अगर थोड़े वक्त के लिए स्ट्रेस आता है तो ये आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। कई बार स्ट्रेस आपको बहुत सारी चीजों से बाहर निकलने में भी मदद करता है, ये खतरे से बचाने में मदद करता है, या फिर किसी डेडलाइन को पूरा करने में भी मदद करता है। जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना किसी काम को लेकर के कि यार डेडलाइन आने वाली है और कैसे होगा कैसे होगा, उस वक्त जब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है आप अपने काम को बहुत तेजी से करते हैं, और जब वो खत्म होता है, जब डेडलाइन पूरी हो जाती है, उससे पहले काम खत्म हो जाता है तो आपको एक रिलैक्स फील होता है। उस वक्त आपको रिलीज होता है डोपामिन कि चलो फाइनली खत्म हुआ। तो कुछ वक्त के लिए स्ट्रेस का होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है और बहुत ज्यादा आरामदायक भी है, यानी कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है।

0: या तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाते। कुछ लोग जो कहते हैं कि भैया जब हमें गुस्सा आता है ना, जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। और वहीं पर दूसरे हाथ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम का, और वो सुबह से कुछ ना कुछ खा रहे हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा ऑफिस की डेडलाइन कंप्लीट करने से पहले वो 4-5 पैकेट चॉकलेट्स के खा जाते हैं, यूं ही खत्म कर देते हैं, और वो ये भी नहीं देखते कि इसकी कैलोरीज कितनी हो रही है, ये कितना ज्यादा नुकसान कर रहा है। क्या हम जितनी चीनी खाने के लिए बना है हमारा शरीर, WHO ने जितनी चम्मच चीनी हमें कंज्यूम करने को कहा है एक दिन में, ये उससे ऊपर तो नहीं हो गया? इस बात पर उनका ध्यान होता ही नहीं है। वो लगातार सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ईटिंग करते जाते हैं, और इन्हीं कुछ मिनटों की, यानी कि अगर वो 10 मिनट का खाना है तो उन्हें 10 मिनट के लिए एक हैप्पी हार्मोन फील होता है, उनको संतुष्टि मिलती है कि इस बात पर कि भैया चलो हमने कुछ तो खाया, कुछ तो अच्छा हो रहा है। दुनियादारी खराब चल रही है, चलने दो, स्ट्रेस खराब है, होने दो, बट हमने अच्छा तो खाया, हमने मीठा तो खाया, बॉडी में एनर्जी तो गई। और इसको ही हम कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। अब बात करते हैं कि माइंडफुल ईटिंग क्या होता है। माइंडफुल ईटिंग जो खाना आप सोच समझ कर खाते हैं, जिसमें आप हेल्दी खाने को खाने की कोशिश करते हैं, जिसमें फ्रूट शामिल होते हैं, वेजिटेबल्स शामिल होते हैं, जिसमें पानी होता है, हाइड्रेशन होती है, आयन होते हैं, जिसमें सारे विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। और आजकल ये ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है। जब भी लोग आपसे कहते हैं कि अपने बॉडी को चेंज करो, खुद के अंदर थोड़े से बदलाव लाओ, तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक टर्म रखा जाता है कि चलो माइंडफुल ईटिंग करो, यानी कि जो खा रहे हो उसे अच्छे से फील करो, हर बाइट को एंजॉय करो। क्योंकि जब आप आराम से खाना खाते हैं, जल्दबाजी में खाना नहीं खाते, स्ट्रेस में खाना नहीं खाते, आप आराम से एक बाइट को एंजॉय करते हैं, तो आपका पेट भी जल्दी भरता है, डोपामिन भी रिलीज होता है, वो जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है, खाने का सही पोषण आपको मिलता है, और आपका दिमाग भी थोड़े ही से खाने में कह देता है कि भैया हो गया, अब इससे ज्यादा और नहीं खाया जा सकता। माइंडफुल ईटिंग करने से आपका वेट भी कंट्रोल होता है, आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है। बट वहीं जब आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, आप ओवरवेट होते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, इसके बाद भी आपका स्ट्रेस खत्म नहीं होता। तो ये किस तरह से आपके शरीर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर एक्चुअल ईटिंग वर्सेस स्ट्रेस ईटिंग। स्टे ट्यून्ड।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर मेरे यानी उन्नति के साथ। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को, जो कि स्मार्ट एनजी और रेडियो ज्ञान स्थली की है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज एक्चुअल ईटिंग वर्सेस स्ट्रेस ईटिंग के, यानी कि वो खाना जो आप स्ट्रेस में खा रहे हो। और मुझे पता है आप खाते हो, या तो नहीं खाते हो या तो खाते हो, दो ही चीजें होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। कभी हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कभी हम बिल्कुल ही खाना नहीं खाते हैं। और इसको भी लोग फ्लैक्स करते हैं कि यार जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ, आज सुबह से लेकर शाम तक हो गया मैंने कुछ खाया ही नहीं। और जब उनसे पूछा क्यों, तो वो कहते हैं यार भूखने लगी क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं है, भूख लगती है पर स्ट्रेस में कुछ खाना खाने का मन नहीं करता, ये बहाना भी कई लोग चिपका दिया करते हैं। अब इनमें से आप कौन से हैं ये तो आप ही जानते हैं, बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस ईटिंग के डिसएडवांटेज की, यानी कि आपके शरीर पर स्ट्रेस ईटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप गुस्से में खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र काम करना थोड़ा सा स्लो कर देता है, बंद कर देता है, और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा।

जब भी आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, बाकी जो एक और हार्मोन है वो रिलीज होता है, तो आपके हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और आप बहुत ज्यादा गुस्से में खाना खाते हो तो उस वक्त आपका पाचन तंत्र भी काम करना धीमा हो जाता है, यानी कि बंद कर देता है, ऑलमोस्ट स्लो डाउन हो जाता है, जिससे आपको पाचन तंत्र के इश्यूज होते हैं, यानी कि डाइजेशन में इश्यूज होते हैं, खाना ठीक से नहीं पचता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, हैवीनेस होता है, जलन होती है, ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं, क्योंकि भाई आपका दिमाग और आपका पेट आपस में जुड़ा हुआ है। मैं यूं ही नहीं कहती हूँ कि आपका पेट और आपका दिमाग आपस में भाई बहन है, चचेरे भाई बहन है। अगर आप अपने दिमाग को लगा करके खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा चलता है, बट अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो आपके दिमाग में भी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपका पेट खराब रहता है तो आपका दिन पूरा खराब जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, वहीं पर अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो आपका जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेशन है, वो स्लो डाउन हो जाता है, वो ऑलमोस्ट रुक जाता है, वो कहता है कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो कहीं और ही है। इसीलिए गुस्से में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा भी अगर आप गुस्से में खाना खाते हैं तो आपके शरीर में ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है और इससे आपके बाकी शरीर को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जब भी खाना खाने बैठें, कोशिश करें कि आप खुश होकर बैठें, शांत होकर बैठें, अपने दिमाग को शांत करके बैठें, आपके पाचन तंत्र को उस खाने को पचाने के लिए प्रॉपर टाइम देना, कि गुस्से में चिड़चिड़े होकर स्ट्रेस में बैठ जाएं कि जो मिलेगा खत्म कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करने का है, आपको आराम से खाना खाना है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ईटिंग करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, जो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। गुस्से में खाना खाने से शरीर में फैट की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि खाना सही से पचता नहीं है, बेली फैट के रूप में ये जमा होता रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो आपके पाचन तंत्र की वजह से ही ठीक चलता है, आपके लिवर को अगर आपने ठीक नहीं रखा है, आपका लिवर ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बन रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, जिसकी वजह से फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है, खाना पचता नहीं है, गुस्से में खाया हुआ खाना पच नहीं रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका है और इसी की वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए WHO भी कहते हैं कि स्ट्रेस ईटिंग की वजह से ही मेनली मोटापा आजकल बच्चों में और यूथ में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस ईटिंग आपका वजन आसानी से बढ़ा सकता है, सिर्फ बेली फैट ही नहीं, इसके अलावा और भी आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी कहीं ना कहीं आपका वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है। हम आपको बता दें इससे आपकी नींद भी प्रभावित होती है, अगर आप गुस्से में खाना खाते हैं तो आपकी नींद को भी ये डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपको ब्लोटिंग होती है, आपका पेट फूलता है, गैस की दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि इनडाइजेशन है, और इससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है। तो ये वो सारे डिसएडवांटेज हैं, यानी कि वो सारे इम्पैक्ट हैं जो स्ट्रेस ईटिंग की वजह से पड़ता है। तो इसको ठीक कैसे करें, इसको रोके कैसे, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं उनमें से 50% जनता ये कहने वाले कि हाँ ऐसा मेरे साथ जरूर होता है, मैं गुस्से में खाना बहुत ज्यादा खा जाता हूँ, फिर कहीं ना कहीं ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है और प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है, वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 2014 तक जब तक मैं स्कूल में था, बच्चा था, तब तक सब बढ़िया था, जैसे स्कूल से निकला वो वेट बहुत तेजी से बढ़ा। इसके पीछे का रीजन यही है कि अब आप स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं किसको कैसे रोकना है और माइंडफुल ईटिंग यानी कि एक अच्छी आदत को सोच समझकर खाने की आदत को कैसे अपने अंदर डेवलप करना है। तो भाई सबसे पहले आपको धीरे धीरे खाना है, आराम से, बीइंग स्लो, आपको बहुत आराम से खाना है। ऐसा नहीं है कि खाने को हड़बड़ाहट में खाना है कि प्लेट में खाना आ गया तो सब खत्म कर दो 2 मिनट के अंदर, नहीं तो कोई और प्लेट छीन के ले जाएगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जब वो खाना खाने बैठते तो इतनी जल्दी इतनी तेजी से खाना खाते हैं कि अभी अगर 5 मिनट के अंदर नहीं खाया तो कोई तो कॉम्पिटिशन हार जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि प्लेट में से जो खाना है वो निकल के भाग जाएगा। भाई मेरे भाई को तो अक्सर मेरी मम्मी यही कहती कि आराम से खाओ, खाना प्लेट छोड़ के नहीं जा रहा है, तुम्हारा ही खाना है, तुम्हारे ही पेट में जाएगा। इसके अलावा भी वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की कोशिश करता है और इस बात पर हमेशा उसे टोका जाता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं। आप स्नैक ले रहे हो, मील्स ले रहे हो, लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको आराम से एक एक बाइट को एंजॉय करें। वैसे तो कहा जाता है कि एक एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए, अब आप 32 बार नहीं भी चबा रहे तो कम से कम 12 से 13 बार तो चबाओ, आराम से खाओ।
इसके बाद आती है कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। अगर आप खाना खाते खाते फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप पर काम करते रहते हैं तो ये ना करें। जब खाना खाने बैठें तो कम्प्लीटली वहाँ मौजूद रहें, अपना दिमाग उस खाने में डालें। आप मतलब निकाल के नहीं डालने का है, अपने को देखना है कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं वो हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, उसकी स्मेल को ले रहे हैं, उसके अरोमा को फील कर रहे हैं, उसकी टेक्सचर को फील कर रहे हैं, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसको महसूस कर रहे हैं। आपका पूरा जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं आपकी प्लेट पर है, आपके खाने पर है, आपकी आँखें आपके खाने पर हैं। खाने में कितने रंग हैं, 4 से 5 रंग हैं, बहुत बढ़िया, 2 हैं तो भी ठीक है। जितनी कलरफुल आपकी थाली होती है ना, आपका दिमाग उतना ज़्यादा हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, क्योंकि उसको लगता है अरे वाह, सतरंगी कलर रखे हुए हैं, यहाँ पर हरा भी है, लाल भी है, पीला भी है। इस तरह की चीज़ें जब आपका दिमाग, आपकी आँखें देखती हैं तो आपका दिमाग खुश होता है। तो जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं खाना खाते टाइम, जिसमें फ़ोन है कि आप लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं और आपकी नज़र जो होती है स्क्रीन पर होती है, प्लेट पर नहीं, जिससे आपका दिमाग दो जगह डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसा ना करें। इसके बाद आता है कि अपने लिए खाना स्वयं पकाया करें, कुक योरसेल्फ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ आजकल जोमैटो और स्विगी चल रहा है, जहाँ हर कोई 30 मिनट में खाने के इंतज़ार कर रहा है, सोचते भैया 30 मिनट में खाना बना लेंगे, मिल जाएगा, रेस्टोरेंट से आ जाएगा, वहीं पर मैं आपसे कहूँगी कि आप अपना खाना खुद पकाया करें, कुक योरसेल्फ, अपने लिए खाना पकाएं। क्योंकि खाना पकाना एक अच्छा प्रोसेस होता है आपके स्ट्रेस को कम करने का। अगर आप खाना पकाते हैं, उसका अरोमा आपको हिट करता है, आपकी आँखें देखती हैं, आपका दिमाग खुश होता है, और जब आप अपने लिए खाना पकाते हैं ना, और जब वो खाना पककर सामने आता है, प्लेट में आता है, उसे आप पहला बाइट लेते हैं, वो टेस्ट करते हैं, तो आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन हटकर डोपामिन रिलीज होता है। मैं अपने लिए हमेशा खाना पकाया करती हूँ। हाँ, लगता है यार कि खाना पकाना इतनी गर्मी में क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्या ज़रूरत है, 30 मिनट में आ तो जाएगा। भाई महीने में 1-2 बार तो काम ठीक है कि आपने बाहर से रेस्टोरेंट से मंगा लिया, लेकिन अगर आप बार बार रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो, बार बार बाहर जाकर खाना खा रहे हो, तो ये आपकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, प्लस यहीं से आपका वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है। तो भैया अपने लिए खाना पकाएं, साफ सुथरा खाना पकाएं, हाइजीन के साथ पकाएं, तेल मसाले कम रखें और एंजॉय करें। आप देखिएगा, अगर आप खुद के लिए खाना पकाते हो और कम ऑयल में, कम मसालों में खाना पकाते हो, तो आपकी बॉडी लाइट फील करती है खाना खाने के बाद। जितने ज़्यादा रंग, जितनी ज़्यादा सब्जियां, आपके शरीर को उतना बेहतर महसूस होता है। इसके अलावा ईट स्मॉल पोर्शन, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाएं, कम कम खाएं। आपने देखा होगा जब अंग्रेज लोग बैठते हैं तो हमेशा चाकू और छुरी के साथ बैठते हैं, और हमको लगता है भैया हाथ से भी तो खाया जा सकता है। हाँ, बेशक खाया जा सकता है, लेकिन आप एक हाथ के खाने को देखिए और आप चम्मच के खाने को देखिए, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। चम्मच में खाना बहुत थोड़ा सा आता है, और वहीं पर जो हाथ से हम खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत बड़े बड़े बाइट भी ले लेते हैं, कई बार इतना बड़ा बाइट ले लेते हैं कि वो चोक कर जाता है, यानी कि हमारे गले में फंस जाता है, उसको ठोक ठोक के या पानी पीने के बाद वो नीचे जाता है, और हमको लगता है कि वो थोड़ा आराम मिला। वहीं पर बाहर जो लोग बैठ के खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, वो ओवर ईटिंग नहीं कर पाते। आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाते हैं, अगर आप आधे घंटे भी उस चावल को खा ले जाते हैं, 15 मिनट भी खा ले जाते हैं, तो आपका दिमाग कह जाता है कि चलो भैया हो गया, पेट भर गया मेरा। ऐसा होता है जब आप स्मॉल पोर्शन में खाना खाते हैं, तो आपका पेट जल्दी भरता है, क्योंकि आपका दिमाग एक सिग्नल रिलीज करता है जो कहता है कि आपने बहुत देर से खाना खा रहे हो, बहुत हो गया। इसीलिए जब भी आपको स्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करें कि हमेशा हमेशा स्मॉल पोर्शन लें, बहुत ज़्यादा खाना लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी प्लेट भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरी प्लेट भरना चाह रहे हैं तो छोटी प्लेट लें, और उसमें ज़्यादा खाना दिखेगा आपको। बड़ी प्लेट में थोड़ा खाना बहुत कम दिखता है, ज़्यादा खाना भी थोड़ा दिखता है, वहीं पर छोटी प्लेट में अगर आप थोड़ा भी खाना लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा दिखता है, और आपकी आंखें बताती हैं कि तुमने खाना आज बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो कोशिश करें स्मॉल पोर्शंस में ही खाएं, अपने मील को नोटिस करें, उसके टेक्सचर को नोटिस करें, उसके कलर को नोटिस करें, उसके शेप को नोटिस करें, उसके टेम्परेचर को नोटिस करें, और इसीलिए तो हम हाथ से खाते हैं, ताकि उसके टेम्परेचर का सही मतलब निकाल सके कि कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कितना क्या है। इसके अलावा
बात कर लेते हैं कि आराम से अपने खाने को चबाएं, चबाते जाएं, आराम से चबाएं, हौले हौले, धीरे धीरे, स्मॉल पोर्शंस में लें, प्रॉपर उसको चबाएं ताकि वो डाइजेस्ट होने में हेल्पफुल रहे, यानी कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जब आपका पेट 80% भर जाए, यानी आपको लगे या ऑलमोस्ट 80-90% मेरा पेट भर चुका है, तो बाकी ओवर ईटिंग करने की कोशिश ना करें, वो 10% जो खाना है उसको ना खाएं, अपने पेट को थोड़ा खाली रखें, बस इतना ही करना होता है माइंडफुल ईटिंग में। और इससे आपको मिलता क्या क्या है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्योंकि हम बिना फायदों के कोई काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम आपको बता दें वो 7 फायदे जो आपको माइंडफुल ईटिंग से आते हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 10.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और बात कर रहे थे आज हम स्ट्रेस ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग की। भाई ये तो हमने जान लिया कि माइंडफुल ईटिंग करनी कैसे है, लेकिन अब बात करेंगे किसके फायदे क्या है, क्योंकि बिना फायदे के काम करने का मतलब क्या बनता है। चलिए आपको बता देते हैं वो 7 फायदे जो माइंडफुल ईटिंग करने से आते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, जो आजकल हर किसी को चाहिए, वो ये है वेट लॉस। माइंडफुल ईटिंग हमेशा वेट लॉस को प्रमोट करता है, क्योंकि आप वहीं रुक जाते हो जब आपको महसूस होता है कि आप पूरी तरह से खाना खा चुके हो। आप बार बार खाने की चीजों को नहीं बदला करते हो, आप जब भी खाना खाते हो तो कंप्लीट खाते हो, यानी कि नेचर से आया हुआ खाना खाते हो, सब्जियां खाते हो, फल खाते हो जिसमें आपको फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं। जब आप इन सारी चीजों को कंज्यूम करते हो तो आप बिंज ईटिंग नहीं करते हो, आप वो स्ट्रेस ईटिंग नहीं करते हो। आप जाकर के बाहर के टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, बिस्किट, सोडा, कोला, इन सारी चीजों को नहीं लेते, क्योंकि आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है कि हाँ तुमने अच्छा खाना खा लिया है, मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है, डोपामाइन रिलीज हो चुका है, आपको हैप्पी हैप्पी और बहुत लाइट फील हो रहा है, इसीलिए आप बाहर का जंक खाने का मन भी नहीं करता। इसलिए आपके बाहर का जंक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और इसी की वजह से वेट लॉस बहुत इजी हो जाता है। बात करते हैं कि भाई आप अपने भूख को लेकर काफी ज्यादा अवेयर रहते हैं, आपको कब खाना खाना है कब नहीं खाना है ये बात आपको पता होती है। जब भी आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं कि कितनी भूख है और कितना खाना खाना है, कब पेट भर गया है। जब भी हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता हमें कितना खाना खाना है, बट अगर आप खाने पर फोकस रहकर काम करते हैं, यानी कि फोकस रहकर खाना खाते हैं, ध्यान देते हैं खाना खाते टाइम, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आता है कि हाँ आज मेरी भूख इतनी है, 2 रोटी की भूख है, मैं 1.5 ही खाऊंगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था 80 से 90% ही आपको खाना खाना है, 100% या 110% तक खाना नहीं खाना होता है, पेट को थोड़ी जगह जरूर देनी होती है, नहीं तो बाद में फिर यही होगा कि भैया सांस फूल रही है, आज तो पेट को ज्यादा ही भर गया, बटन भी खोलने पड़ेंगे, बेल्ट भी खोलनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है। जब भी आप माइंडफुल ईटिंग करते हो, आप आराम से खाने को चबाते हो, आपका दिमाग शांत रहता है, तो डाइजेशन भी स्मूथ होता है। प्लस माइंडफुल ईटिंग में आप बहुत ज़्यादा सब्जियां लेते हो, घर का पका हुआ खाना खाते हो जिसमें जंक नहीं होता, जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं होता, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या मसाले नहीं होते, होता है तो प्रोटीन, फाइबर, उसके अलावा पानी, बहुत सारे विटामिंस, न्यूट्रिशन, जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके गट को, आपके गट के बैक्टीरिया को फीड करता है, गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करता है, बैड बैक्टीरिया कम करता है, जिससे आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस जैसी समस्या देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग मदद करता है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में। जी हाँ, स्ट्रेस ईटिंग अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप माइंडफुल ईटिंग करना शुरू कीजिए, और माइंडफुल ईटिंग आपके स्ट्रेस को कम करने में डेफिनेटली मदद करने वाला है। जब आप खाने पर पूरा ध्यान देते हो, आराम से एक एक चीज को इंजॉय करते हो, टेस्ट को इंजॉय करते हो, तो आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होता है। फिर आपको बाहर की चॉकलेट, ब्राउनीज, केक, पेस्ट्री, कोला, समोसे, चाट पकौड़ी, ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। माइंडफुल ईटिंग आपके फूड चॉइसेस को हेल्दी कर देता है। जब भी आप अपने खाने को लेकर अवेयर होते हैं, आप जब जानते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये आपके चॉइसेस को भी हेल्दी कर देता है। फिर आप मार्केट में जाकर समोसे नहीं उठाते, आप मार्केट में जाकर सेब उठाते हो, नाशपाती उठाते हो, पपीता उठाते हो, आप वहां पर जाकर कोला नहीं लेते, आप कोकोनट वाटर लेते हो, लस्सी लेते हो, छाछ पीते हो, आप सोडा कंज्यूम नहीं करते, स्वीट के नाम पे आप चॉकलेट्स नहीं खा रहे होते हैं, आप फल खाते हैं, हो सकता है आप आइसक्रीम की जगह पर चिल्ड योगर्ट खा रहे हो, दही खा रहे हो, तो भाई इस तरह से माइंडफुल ईटिंग आपके चॉइसेस को बदल देता है। प्लस आपके बिंज ईटिंग को, यानी कि वो जो आप स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो आज जो हाथ में आएगा सब खत्म कर देंगे, वो वाली जो ईटिंग होती है ना, आप वो नहीं करते हो, आप खुद को कंट्रोल में रखते हो, आप बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाते हो, हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको देख कर रहे हैं कि भैया तुम पोटैटो चिप्स नहीं खाते, तुम कुरकुरे नहीं खाते, तो तुम खाते क्या हो। ये सवाल मुझसे भी कई बार पूछा जा चुका है कि तुम ये सब नहीं खाते तो तुम आखिरकार खाती क्या हो। जो मैं खाती हूँ वही आप भी खाते हैं। जब आपकी चॉइसेस हेल्दी हो जाती हैं तो फिर आप इन सारी चीजों पर अपने पैसे नहीं लगाते हो, आप पैसे लगाते हो अपने अच्छी चॉइसेस पर, जिसमें लस्सी, दही, पनीर, टोफू, टैम्पे, सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। प्लस और आखिरी यानी कि सातवा और आखिरी जो एक अच्छा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है वो है सेटिस्फेक्शन का, यानी कि आपको कम्प्लीटली संतुष्टि मिलती है जब आप अच्छा खाना खाते हो। आपको किसी भी तरह का कोई गिल्ट नहीं होता। स्ट्रेस ईटिंग हमेशा एक गिल्ट के साथ आती है कि यार 7 दिन तक तो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की थी, 8वें दिन मैंने बहुत सारा जंक फूड खा लिया, अब जो वो इतने दिनों तक हम डाइट कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, वो सब का सब धरा का धरा रह गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सारी जितनी भी हमने मेहनत की थी खराब हो चुकी है। ये जो एक रिग्रेट होता है ना, माइंडफुल ईटिंग आपको ये नहीं होने देता है, यानी कि आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिलती है खाने को लेकर कि आपके पेट को आराम मिलता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, आपका खून बनता है, आपको थकान नहीं होती, कमजोरी नहीं लगती, गिल्ट नहीं होता। तो भैया स्ट्रेस ईटिंग को थोड़ा सा टाटा बाय बाय कीजिए। जब भी आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो कोशिश करें अगर आप चॉकलेट खा भी रहे हैं तो उसके 3-4 बार्स खत्म ना करें, 1-2 टुकड़ा दें, 10 से 20 ग्राम खाएं, ना कि 100-100 ग्राम की पूरी चॉकलेट आप खत्म किए जा रहे हैं, पूरा पूरा पैकेट पोटैटो चिप्स का खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा करने का अगर मन भी करता है कि स्ट्रेस के वक्त आपको कुछ खाना खाने का ही मन करता है, तो अपने आसपास फ्रूट्स को जरूर शामिल करें जिसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस हो। एग्जाम्पल के लिए आप नाशपाती शामिल कर सकते हो, आप स्ट्रॉबेरी शामिल कर सकते हो, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं स्वीटनेस यानी कि मीठा आपको थोड़ा मिठास भी देंगी, आपका स्ट्रेस ईटिंग भी नहीं होने देंगी और आपके माइंड को भी शांति मिलेगी। फिलहाल आज हमने बात की आपसे स्ट्रेस ईटिंग वर्सेस एक्चुअल ईटिंग के बारे में। आप क्या मानते हैं, अपने थॉट जरूर से बताइएगा चैट बॉक्स में और मुझे दीजिए इजाजत। वक्त है बाप से विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोला शहर की धड़कन, मेरे यानी उन्नति के साथ आपका अपना कार्यक्रम स्वास्थ्य संग्री। स्टे ट्यून्ड।
1: Watch my biggest blockbusters online anytime anywhere on erosnow.com.
2: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए अपने फोन या आईपैड से। इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
0: बिल्कुल, और आप सुन रहे हैं अपने चहिते आरजेस को। मैं हूँ आरजे अदनान और मेरे साथ हैं
1: आरजे आकांक्षा।
0: जी हाँ, जो आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ आपके पैसे बचाने के अलग अलग तरीके बताते हैं।
1: जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते अपनी नई कड़ी सेहत सही लाभ कई में बताया था कि हमारी इस कड़ी से जानकारी पाकर आप सभी माला माल हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा।
0: अजी बिल्कुल सही कहा, स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, एनर्जी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में आमदनी भी। तो श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमने सभी की मुलाकात सेहतिया सिंह जी से करवाई थी। सेहतिया भैया की कहानी सुनकर तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। हमें तो कम से कम 25 कॉल आई थी स्टेशन के फोन से और सभी ने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका बड़ा कारण था कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी सेहतिया सिंह जी की जिंदगी से मिलती जुलती थी। उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण या सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण या फिर वही झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपने अपनों और अपनी जमा पूंजी को खोया।
0: लेकिन एक हादसे ने सेहतिया सिंह जी की जिंदगी को बदल दिया, उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। इनको लगा कि जागरूकता के अभाव से उनकी तरह हजारों लोग दर बदर भटकते हैं, तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उनकी मदद की जाए। सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुंचे, ये तो सही नहीं होगा ना।
1: आज तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आरजे अदनान।
0: मतलब, अरे मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ पर तुम मुझे बोलने दो तब ना।
1: हाँ हाँ, जो सही बात है भला उसे कौन रोक सकता है। देखा था ना, जब सेहतिया भैया बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम यानी सेहत सही लाभ कई से हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है, जैसे कि फाइलेरिया। मैं कल जब घर जा रहा था तो मैंने ऑटो पर कुछ लाउडस्पीकर चलते हुए देखा। मुझे लगा सेहत से जुड़ी बात हो रही है और श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया है।
1: अच्छा, तो फिर सुनाओ जरा।
0: चलिए तो हम सुनाते हैं आपको ये सेहत की अनोखी बात।
2: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गाँव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
3: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अब तुम बोलोगी कि ये फाइलेरिया क्या बला है, इसीलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इस बारे में अच्छे से बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये बीमारी एक परजीवी की वजह से होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं।
4: तो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयां लेनी चाहिए। इसीलिए सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि ध्यान से सुनिए, जो भी काम कर रहे हों, चाहे मोबाइल देख रहे हों या बच्चे का होमवर्क करा रहे हों या फिर रसोई में खाना बना रहे हों, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी के जरिए बहुत ही जरूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट फिर से करेंगे। कब करेंगे ये बताएंगे आरजे कांशा।
1: तो हम रिपीट टेलीकास्ट करेंगे अगले शुक्रवार को।
4: जी हाँ, तो सुनिएगा जरूर और घर वालों को भी सुनाइएगा। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को।
5: ये एनटीडी है, तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है। लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट के जो पिक्चर है इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडेमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंदर जाता है शरीर में और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं। और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं डीए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूँ, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट्स समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई है और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, 4 मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में, 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स है वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिंस एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसमें 4 गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को 2 गोली और 15 से बड़े को 3 गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसकी मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन।
4: इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी एक बीमारी है जो कि एक पैरासाइट यानी परजीवी की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति उसका वाहक बन सकता है, क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद आते हैं, लोग दवाई लेने से इसकी खतराते हैं।
1: तुम तो भाई वाकई बहुत समझदार हो गए हो। तो क्या आज सेहतिया भैया नहीं आएंगे?
4: आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अब ये 10 अगस्त की तैयारी में लग गए होंगे, भाभी लगी होंगी महिलाओं को जागृत करने में, और भैया जो है वो पुरुषों को कर रहे होंगे।
1: इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी दोनों यानी महिला और पुरुषों को हो सकती है।
4: कभी कभी ना तुम ऐसी बात करती हो जैसे मुझे लगता है कि तुम आरजे कैसे बन गई हो। मच्छर क्या ये देखकर काटता है कि महिला है या पुरुष है, सोचो जरा।
1: तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होती है, और 10 अगस्त को क्या होगा, अगर सेहतिया भैया आ जाते तो उन्हीं से पूछ लेते।
4: जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था।
6: सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार।
1: तो आप भी 10 अगस्त में बिजी थे?
6: बिल्कुल ठीक समझे हो आप, हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाई दी जाएगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी फाइलेरिया जैसी निगलेक्टेड बीमारी की चपेट में है, इसलिए हमारे जिले में भी अन्य जिले की तरह मास ड्रग्स MDA राउंड 10 अगस्त को चलेगा। यह NTD में से एक है। ये वो रोग है जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत भी एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और फाइलेरिया उपेक्षित उष्ण कटबंधीय रोग यानी NTD का हिस्सा है। यह बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है। शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो यह एक अस्थायी विकृत में बदल सकती है। इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है।
4: अरे, हमारे चाचा भी इसी बीमारी के कारण समाज से कटकर रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे। लेकिन सेहतिया भैया की समझदारी और धैर्य ने लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं और किसी के संपर्क में आने से कोई खतरा नहीं होता।
1: तो ये बीमारी यानी ये रोग सभी को हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है ना? हमने अभी डॉक्टर साहब को सुना। इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है, तो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है।
6: होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। NTDS का सामना करने वाले समुदाय में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं।
4: लेकिन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस न केवल शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करता है। लोग जो है वो अंधविश्वासों और भ्रांतियों की वजह से उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और यही वजह है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए कई कोशिशें भी की जा रही है।
1: उन उपायों में से एक उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है, बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जड़ से खत्म करने में एक उपाय है ये।
6: तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या घट जाती है और LF के फैलने का दर भी कम हो जाता है। इससे लोगों में डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है।
4: और भैया, इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या है?
6: भारत में उपेक्षित उष्ण कटबंधीय रोग यानी NTDS में प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, हुकमवर्म संक्रमण, चिकनगुनिया, सिस्टोसोमियासिस, ट्रेकोकोमा, रेबीज और सेकबाइट एनवेशन जैसे रोग शामिल हैं।
4: तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो LF यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए MDA जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही LF जैसी NTDs पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: क्या हमारे देश में और भी निग्लेक्टेड रोग हैं?
6: ये बीमारियाँ मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
1: सेहतिया भैया, मेरा एक और सवाल है। वो पिछले एपिसोड में आपने कुछ बताया था ना निक्षय मित्र के बारे में, वो क्या है?
6: एक बार फिर बताता हूँ, निक्षय मित्र एक सामुदायिक पहल है जिसका उद्देश्य TB क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन TB मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं।
1: तो क्या ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है?
6: नहीं, निश्चय मित्र योजना केवल TB क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके।
4: लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी NFEP के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है।
6: बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग यानी MDA के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयाँ DEC और एल्बेंडाजोल मुक्त में वितरित की जाती है। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसील सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुक्त कराने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुक्त दवाइयां, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती है। एक और खास बात है कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुक्त इलाज मिल सके।
1: सेहतिया भैया, ये तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है।
4: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता दोस्त भाइयों और बहनों, बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयां जरूर लें। और तो और, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके फाइलेरिया से जुड़ी योजनाओं की और ज्यादा जानकारी ले लें।
6: और अब समय हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाई जो खिलानी है। लेकिन
7: आपके जाने से पहले शपथ लेना जरूरी है।
4: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो

0: स्वच्छता का
1: पालन करेंगे
0: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
1: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
0: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
2: तो सेहतिया भैया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखिए, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाइयां जरूर खाइए। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे साझा भी करेंगे।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी के लिए। बस याद

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे
4: अंशिका।
3: हाँ जी, और दोनों लोग आ गए हैं सेम प्लेस सेम टाइम सेम डे पर, यानी कि आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है
2: सुन सहेली
3: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो भाई जल्दी से आ जाइए, हम सभी लोग आ गए हैं, यानी हम दोनों लोग आ गए, अपनी सहेलियां आ गए हैं। एंड अभी हम लोग जब ऑफ माइक था तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, आज इतना हंसे हम लोग कि हम लोग के पेट में भी दर्द होने लगा अभी, तो उसको हम लोग आपसे बयां करेंगे अभी कि हम लोग क्यों हंस रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका टाइम कहीं नहीं कट रहा हो तो आपने फोन उठाना है और आपने रील्स देखना शुरू करना है, आपके 4 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और खास करके जब साथ में सहेलियां बैठ करके अगर आप रील्स देख रहे हैं ना, तब तो और भी पता नहीं चलता है। तो कुछ ऐसा

0: हम लोग भी मसाला ढूंढ रहे थे, और क्यों ना ढूंढे, क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे है। स्पेशल डे बोले तो कि आज है वेनिस डे, और वेनिस डे के दिन होता है स्पेशल विमेंस का डे। तो आज के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी ऐसी विमेंस की बातों को लेकर के, उनके डिजीज को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, हम लोग बहुत सारा चीजें बातें आप तक पहुँचाने के लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि उतारू हैं। उतारू का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड हैं बताने के लिए। लेकिन उसके पहले जो हमारी औपचारिकता है, इतना प्यारी बारिश हुई है सुबह को, मज़ा ही आ गया। मतलब बारिश देख करके यार मज़ा आ गया। मतलब हम लोग बैठे हुए थे कॉलेज में, और इतनी बढ़िया सी बारिश हो रही थी, लग रहा था कि ये अभी दो चार घंटे तो चलेगी, लेकिन मैक्स टू मैक्स अंशिका 15 से 20 मिनट तक बारिश हुई है बस।
1: जी मैम,
0: है ना, 15 से 20 मिनट केवल बारिश हुई, और उसके बाद फिर अभी धूप निकल आई है। तो धूप निकल आई है, लेकिन धूप, उस धूप को हम लोग यूं ही नहीं जाने देंगे, उनकी प्यारा सा वेलकम भी करेंगे। तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों लोग बोलने जा रहे हैं
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया उस्नोज, और धूप है मस्त, हम है जबरदस्त, क्योंकि अगर करना हो मच मच बेटर फील तो देखो रील, ऐसा कुछ।
0: ओके,
1: क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा था अभी। देखिए, ऐसा नहीं है, मतलब हम ये भी कहते हैं कि आप रील में अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करें, लेकिन कभी कभी मस्ती में कुछ मस्ती वाली अच्छी फनी वाली देखनी भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि मूड पूरा, जब आप हंसते हैं ना, उसके बाद चेहरा अप हो जाता है, जैसा अभी हमारा हुआ है।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ फेस भी ग्लो करने लगता है,
1: ग्लो करने लगता है, जैसा मैम का ग्लो कर रहा है।
0: हाँ, ग्लो कर रहा है मेरा तो। लेकिन मैं तो ये जानती हूँ यार कि देखो, जब हम लोग अंदर से खुश होते हैं ना, अंदर से हंसते हैं ना, तो हमारा चेहरा जो है ना, उसमें आप कितनी भी बुटॉक्स करा लो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से अगर आप बुटॉक्स है ना, अंदर से आपकी खुशी वो चेहरे पे दिखने लगती है।
1: बिल्कुल। तो भाई, चेहरे की खुशी का चढ़ा है हुजूम, क्योंकि आज हमारी चेहरे की जो खुशी है ना, वो बहुत ही बम्पर मस्त जबरदस्त है, क्योंकि अभी हमने बारिश भी इंजॉय की सुबह, और अभी अभी थोड़ी सी हंसी और मस्ती को भी इंजॉय किया। तो आज मूड सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि सैटरडे नहीं है, लेकिन आज हमारी महिलाओं, हमारी सखियों का दिन है, इसलिए मूड सुपर से ऊपर है। और उसके साथ एक सवाल भी है, और सवाल ये है आज कि भाई, हम हमेशा कहते हैं बच्चों की बरसात ऐसी होती है, बच्चे ऐसे बारिश को इंजॉय करते हैं, आज जानते हैं कि घर की महिलाएं कैसे इंजॉय करती हैं, उनकी बरसात कैसी होती है।
0: तो उसको मैं सोच रही हूँ अंशिका कि एक छोटी सी पोयम के माध्यम से बताऊं।
1: बिल्कुल। तो महिलाओं की कैसी होती है बरसात, चलिए सुनते हैं आरजे समता के साथ।
0: थैंक यू सो मच अंशिका। तो चलिए फटाफट सुनते हैं कि घिरते ही बादल याद आती है उन्हें, घिरते ही बादल याद आती है उन्हें, घर आंगन की हर छोटी फिक्र, नमी के इस मौसम में छुप जाता है उनके खुद की सेहत का जिक्र, नमी के इस मौसम में छुप जाता है उनके खुद की सेहत का जिक्र, ऐसी गंभीर है महिलाओं की बरसात जहां अपनों का पहरा होता है, पर बंद खिड़कियों के पीछे भी उनका त्याग सबसे गहरा होता है, तभी अचानक खिड़की खुले और वो चुलबुली सी मुस्कान आ जाए, भूलकर सारे सलीके कायदे वो बूंदों संग जरा सा खिलखिलाए, चाय की केतली चढ़ाकर वो खुद के लिए भी एक पल चुराती है, ये बारिश उनके गंभीर चेहरे पर बचपन की वो अलहड़ता लाती है, पर समझदार है वो, जानती है कि मौसम में साफ सफाई ही गहना है, सूती लिबास की सादगी में हर इन्फेक्शन और बीमारी से दूर रहना है, पैरों को सूखा रखना और अपनी साफ सफाई का खुद ही मान करना, बिना किसी शोर शराबे के अपनी सेहत और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना, गिरते ही बादल याद आती है उन्हें, घर आंगन की वो छोटी सी फिक्र, नमी के इस मौसम में छुप जाता है उनके खुद सेहत का जिक्र।
1: वाह वाह वाह, बहुत ही मस्त और जबरदस्त। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैम इतनी अच्छी अच्छी लाइंस लाती कहाँ से है, क्या राज है, आज तो बताना ही पड़ेगा।
0: राज बता दूं? सही वाला तो राज ये है कि रात में सोते नहीं है, और रात भर हम लैपटॉप पे काम करते हैं।
1: ओके।
0: और ऐसी वाली पोयम निकालते रहते हैं कि मुझे सुबह जाना होता है काम पे, तो मैं सोचती हूँ कि आधा काम मेरा निपटा रहेगा।
1: जी मैम,
0: हो गया।
1: यस,
0: अब रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ पे आए।
1: यस जी। तो इसे कहते हैं कि पहले से जब प्रिपरेशन की जाती है ना, तो चीजें इस तरह निखर कर आती हैं। तो चलिए बताते हैं आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। मौसम है बहुत ही प्यारा, हो रही है बरसात, तो करते हैं नई शुरुआत। नई शुरुआत ये है कि आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि किसी की राय पर और किसी के बताने पर खुद को बदलना और निखारना कई बार बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे व्यक्तित्व में ऐसा नहीं है कि कोई कमी होती है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें तब निखर कर आती हैं जब कोई और कहता है। कहना इन द सेंस कि जैसे आपने कुछ मान लो कोई ड्रेस पहनी है और किसी ने आपसे कहा ये पहना है नहीं अच्छा लग रहा है, अगर तुम वो पहनती तो और अच्छा लगता, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया कि ठीक है मुझे ये पहनना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है दूसरे के नज़रिए से, क्योंकि हो सकता है कि हमने खुद को उस तरह न देखा हो जिस तरह दूसरे ने हमें देखा है कि ये अगर ऐसी रहेंगी तो ये और अच्छी लगेंगी। तो इसी तरह हमेशा दूसरे की राय को भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके तवज्जो देनी चाहिए, न कि ये कह के हवा कर दो कि नहीं नहीं मुझे उनकी बात नहीं मानी, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। देखिए जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन वक्त के साथ जो बदलते नहीं वो वक्त से पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमेशा जब आपसे कोई कहे कि बदलने की ज़रूरत है तो बदलिए। बदलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मेरे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है, अगर वो मेरे व्यक्तित्व को ख़राब करता है तो मुझे उसे बदलने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कभी अपनी पर्सनैलिटी को किसी के लिए पूरा चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपना हिस्सा जो आपके लिए बहुत कीमती होता है वो अपने में हमेशा बनाए रखें। बस कुछ तौर तरीके, कुछ चीज़ें, थोड़ी सी अदाएं, वो बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बदलें, क्योंकि बदलना भी कई बार बेहतर होता है
2: और अच्छे परिणामों के लिए मुझे लग रहा है कि समय के साथ बदलना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम पीछे की बातों को लेकर के बैठ जाते हैं, किसी ऐसे कुछ भी ट्रेजेडीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं, किसी एक ऐसे इंसान को लेकर के बैठ जाते हैं, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर किसी के साथ कुछ बिगाड़ होता है तो हमेशा से इंसान रोनू धोनू बना के बैठा रहे, तो इससे पता है इससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी जैसे कहा ना अंशिका ने कि बदलना ज़रूरी होता है, और तब बदलना ज़रूरी होता है जब बात अपने पे आ जाती है, अपने व्यक्तित्व पे आ जाती है, अपने स्वास्थ्य पे आ जाती है। तो उस समय बेहतर होता है कि आप अपने आप को बदलें, समय के साथ चलें। और कहते हैं ना कि जब हम समय के साथ चलते हैं तो समय बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है।
1: बिल्कुल, और जख्मों को भर देता है, और उसके बाद जो खुशी आती है ना, जो बरसात होती है खुशियों वाली, वो हमेशा याद रहती है,
2: हमेशा याद रहती है।
1: इसलिए खुशियों को संजोते रहें और दुख को जाने देते रहें, क्योंकि उसका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं होता है। हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, और जो आपको पेन दे उसे बिल्कुल याद ना करें। टोटल बायकॉट
2: भाई, मैं मुझे तो इतना पता है कि जो आपको पेन दे ना उन्हें आप एक डायरी पेन दे और उनको ये कहें कि आप इनमें हमारी जितनी कमियां है ना उनको लिखें और मेरे पास पोस्ट करें।
1: अच्छा,
2: फिर मैं आपको उसको फिर से रिपोस्ट कर देती हूँ।
1: फिर हम बजट सत्र में सोचेंगे कि हमें पास करना है या नहीं।
2: करना है कि क्या करना है वो तो बात की बात
1: वो
2: है।
1: तो बात
2: फिलहाल आप उन्हें एक डायरी पेन जरूर दें, जो आपको पेन दे आप उन्हें एक डायरी पेन जरूर दें, ताकि वो आपके द्वारा लिखी हुई, आपके द्वारा गढ़ी हुई कहानियों को लिखें और जिंदगी भर बैठ करके उसे पढ़ें। तो महिलाएं आप उठें, क्योंकि आप सशक्त हैं। अगर ऐसी कोई भी महिला हमारे इस शो को सुन रही है कि आपको किसी ने डंप किया है, आपको किसी ने परेशान किया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने ये किया है वो किया है, तो हटाओ। एंड आपको सिर्फ एक लाइन मन में अपने मन में ठान लेनी है, सिर्फ एक लाइन, गो टू हेल।
1: वाह,
2: ठीक है,
1: जबरदस्त, मस्त और वेरी प्राउड वाला। मतलब मैम ने जो अभी जो बताया है वो बहुत प्राउड हो रहा है सुन के, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मैम ने कहा है।
2: हाँ, क्योंकि कई समय पहले मैं भी ऐसी थी, मैं भी रोनू धोनू की तरीके से बैठी रहती थी। तो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने डम किया था, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है अभी भी फिलहाल,
1: मतलब कौन जाना चाहेगा शेरनी के पिंजरे में
2: सीधे सीधे लड़के लोग कौन जाना चाहेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर के मैं भी बहुत टेंस रहा करती थी। बट मुझे लग रहा है कि एक मोटिवेशनल थॉट को हम रोज अगर अपने लिए क्रिएट करें ना उठ करके मॉर्निंग में, तो हमें बहुत बड़ा एक सहारा मिलता है। और ख़ास करके आप वैसे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव लोगों की आप राय लें, तो भी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोग मेरे साथ में भी बैठे हुए हैं इस वक्त, जो कि हैं आरजे अंशिका। एंड हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि हमेशा से मुझे पुश करते रहते हैं। तो ऐसे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को मतलब अपनी तिजोरी में रखना चाहिए जिसका जो कहते हैं ना कि बोनस पॉइंट हमें वक्त रहने पे आप उसे वो पत्ता खोलें जब आप बहुत परेशान हों। तो बहुत परेशानी में मैंने वो कार्ड्स खोले और वो उन कार्ड्स के कारण से आज मैं अपने आप को सुपर हील कर पाई हूँ।
1: तो चलिए आज जो पहला सॉन्ग लगा है ना वो आज पहला सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है okay. और बड़ा प्यारा सा भी है।
2: ओके okay, यानी आज की प्लेलिस्ट अंशिका ने बनाई है ना इसीलिए वो इतना फुदक रही है। तो
1: फुदक नहीं रही हूँ, आप सुनेंगे तो नहीं, आपको भी चलेंगे।
2: अच्छा मैं तो मैं और आरजी आकांक्षा बैठ के अभी रील्स में हम लोग ही हू कर रहे थे तो इसने मुझे बताया नहीं। तो इसने एक जो पहला गाना लगाया है ना ऑब्वियस ही बात है इसने मुझे मेरे लिए लगाया होगा। तो मैं जरूर सुनूंगी इस गाने को एंड आप भी सुनिए और इंजॉय करिए आज के टाइम को भी क्योंकि टाइम हो रहा है 143 का। तुमको कोड बताया था मैंने,
1: हाँ याद आ गया मुझे,
2: याद आ गया ना,
1: याद
2: तो चलिए इस कोड को आप भी एंजॉय करें, सुने इस गाने को। बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा सेगमेंट, यानी कि हमारा आज का टॉपिक। और आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक आज का विमेन सेंट्रिक, जो कि आज के दिन स्पेशली होता है। तो हम विमेन्स के लिए लेकर के आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो कि उनकी डिजीज को लेके हो गया, उनके पर्सनल व्यक्तित्व को लेके हो गया, उनकी खूबसूरती को लेकर के हो गया। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि भाई मॉनसून में किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा का रख सकते हैं, हाइजीन की का ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो फिर हम अपने आप को कैसे सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं।
5: बिल्कुल, तो आज बात करते हैं, बरसात बहुत प्यारी तो होती है मैम, लेकिन प्यारी होने के साथ साथ थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम इस वजह से बढ़ा देती है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा
0: बढ़ जाता है।
5: तो मैं बताऊंगी कि इन्फेक्शन होता कैसे है और कैसे ठीक करना है वो हमारी मैम बताएंगी।
0: अच्छा, क्या होता है वो अंशिका बताती है। ये ठीक ठाक करने का जो जिम्मा है ना, ये इसने मुझे दे रखा है।
5: वो आप बहुत अच्छे से करती है ना इसकी।
0: हाँ, मैं लोगों को ठीक जो है ना वो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। यस आई नो।
5: और फिर वो ठीक होने के बाद कभी खराब नहीं होता,
0: कभी खराब नहीं होते हैं। जैसे ना कोई एक मैकेनिक होता है, अगर उसने एक बार गाड़ी सही कर दी तो वो कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं ना कि वो बहुत शिद्दत से ठीक करने में रखते हैं अपना ध्यान। तो मैं भी कुछ उस मैकेनिक में से एक हूँ। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण है जो कि हाइजीन को हमें सबसे ऊपर रखना है।
5: बिल्कुल, तो सबसे पहले आते हैं कपड़ों पे, क्योंकि कपड़ों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि फीमेल्स भी अब ऑफिस में काम करती हैं, तो उन्हें पूरा दिन जाना है और पूरा दिन आपको उसी कपड़े में रहना है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कंफर्टेबल हो जो भी आपने पहना हुआ है। तो मैं बता दूं कि सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो नमी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसे रोक लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं ऑफिस और रास्ते में बारिश हो गई और थोड़ी देर दूर आपको चल के जाना है, तो जब आप मान लीजिए बारिश का पानी था आप भीग गए, तो सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो अब्सॉर्ब जल्दी करते हैं, जिससे कि वो पानी जो होता है वो हमारी स्किन तक पहुंचता है और फिर रैशेज होते हैं। बहुत लोगों को बारिश के पानी से इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा हाइजीन रखना चाहिए। हाइजीन का मतलब ये है कि जैसे आप कपड़ों को डेली वॉश करें, डेली उन हाइजीन को ध्यान में रखें। अगर वॉश करना है तो डिटॉल में वॉश करें, इससे क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपने पैरों का भी रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
5: पैरों का इसलिए क्योंकि बारिश में जब आप जाते हैं तो आपने शूज़ पहने हो या नॉर्मल हमने सैंडल ही क्यों ना पहनी हो, तो पैर बारिश के पानी में भीग जाते हैं। जैसे आप जा रहे हैं मान लीजिए गड्ढे हैं या कुछ भी है, पानी लग जाता है तो उससे उंगलियों में सफेद पड़ जाता है कई बार।
0: नहीं, वो पता है अंशिका क्यों होता है?
5: क्यों
0: जब हम ऐसे आजकल जो वो प्लास्टिक के जो स्लीपर्स आने लगे हैं, क्रॉक्स जिसको बोला जा रहा है, तो क्या होता है ना उसमें वो आगे से पूरा कवर्ड होते हैं और वो प्लास्टिक होने के कारण से उसमें पानी जो है वो थोड़ी देर के लिए वो जमा रहता है उसमें पानी। तो क्या होता है कि और अगर आपने कोई भी किसी भी मतलब क्या कहते हैं मेटेरियल का चप्पल पहना हुआ है, लेकिन पानी तो उसमें रहेगा ना, क्योंकि बारिश का पानी, अगर आप पानी आपने अगर जूती पहनी है तो भी पानी उसमें क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा रहता है, गीली हो जाएगी या प्लास्टिक की हो या फिर चमड़े की हो। तो क्या होता है कि आपकी उंगलियों में स्पेस नहीं होता है पैर की उंगलियों में, तो वो पानी वहाँ जाके जम जाता है और जमने के कारण से उसमें इचिंग होने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा फंगस होने लगते हैं।
5: चप्पल,
0: तो इसीलिए कहा जाता है कि एक अंगूठीदार जो चप्पल होती है, मतलब एक खुली चप्पल होती है ना, तो बारिश के दिनों में खुली हुई चप्पल ही पहननी चाहिए, खास करके महिलाओं को।
5: बिल्कुल। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें बारिश के मौसम में खाने पीने की, तो बारिश के मौसम में आप जब जाते हैं तो जंक फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड खाने से ही हमें बारिश में ज्यादातर पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, फिर आपको लगता है कि अरे मैंने तो कुछ बाहर का लिया भी नहीं और ऐसे हो गया है। लेकिन कई बार जैसे मौसम बहुत अच्छा है तो मन करता है समोसा खाते हैं, मतलब इस मौसम में मन करता है ना ऐसी चीजों को खाने का, या बाहर की चाय ही आपने मान लीजिए मंगाई की, लाओ अच्छा चाय पी लेते हैं। तो देखिए बारिश का पानी है कहीं ना कहीं बाहर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, मान लीजिए आप लेकर के आ रहे हैं उस टाइम बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है। और बाहर के मटेरियल्स में जैसे मान लीजिए ठेलों पे रखा रहता है, तो बारिश हुई बारिश का पानी तो पड़ा ही पड़ा, साथ में धूल है बाकी चीजें, तो कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसलिए बाहर का ना खाएं। अगर आपका मन ही है बारिश में कुछ चटपटा कुछ अच्छा खाने का, तो आप घर पे पकौड़ी बनाइए और इंजॉय करिए, लेकिन बाहर का खाने से थोड़ा सा बचिए। साथ ही साथ में जो चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अपनी डाइट में ज्यादातर चाय, बहुत लोग बहुत ज्यादा लेते हैं और बारिश के मौसम में हमें मन भी होता है ज्यादा चाय पीने का, तो अगर ऐसा है तो तुलसी की चाय पीनी चाहिए। तुलसी की चाय के दो फायदे होते हैं मैम। पहला फायदा ये होता है कि तुलसी की चाय पीने से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और दूसरा बार बार इसकी आदत नहीं लगती। और नॉर्मल जो हम चाय पीते हैं ना तो हमें आदत लग जाती है।
0: ओके, तुलसी की चाय पीनी चाहिए।
5: बिल्कुल
0: गुड, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजों की देखभाल कैसे की जाए। जैसा कि अभी अंशिका ने बताया ना कि सारी चीज़ें ऐसा होता है कि हम बारिश के दिनों में ख़राब हो जाती हैं, तो जैसे बालों की देखभाल है ना, बालों की देखभाल, तो क्या होता है कि स्कैल्प को साफ रखना है। मतलब बारिश के पानी में हम बहुत अच्छे से नहा तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम नहा लेते हैं उसके बाद में हम लोगों को लगता है कि भाई अब किस कैसे हम उसको साफ कर सकें, तो नमी और पसीने से बाल चिपचिपे हो जाते हैं। तो वीक में 2 से 3 बार हमें इसको साफ करना चाहिए और बाल को धो लेना चाहिए, और गीले बालों में कंघी करने से बचें, खास करके बारिश के दिनों में। और उसके बाद में आपको हेयर स्टाइल जो बनानी है वो बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल बनानी है। बालों को कसकर बांधने के बजाय हल्का पोनीटेल या साधारण सी चोटी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा से देखिए किचन में होते हैं पूरा बाल, या तो लेकर के आप क्लैचर ऊपर से लगा लें, या फिर मतलब आपका कंधा जो है ना वो खाली रखना चाहिए। और खान पान में के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपको ज़्यादातर बना के रखनी चाहिए। सड़क के किनारे मिलने वाली चाट, कटे हुए फल और खुले हुए जूस को पीने से बिल्कुल बचना चाहिए। खास साथ ही साथ अपनी डाइट में विटामिन सी यानी कि नींबू, संतरा, अदरक और साथ ही साथ में तुलसी की चाय जो भी अंशिका ने बताया ये हम कर सकते हैं। ठीक है अंशिका
5: जी? मैम अभी वही मैं कह रही थी, देखिए जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना। मैंने अभी आपसे बोला था कि जब ठीक करने की बात आती है तो मैम बहुत अच्छे से बताती हैं कि ठीक कैसे करना है।
0: ओके,
5: तो कहीं ना कहीं ठीक करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो मुझे लगता है कि मैंने सही को दिया है।
0: तो आइए चलिए फटाफट देखते हैं और हमें कुछ ऐसी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि हमें सिंथेटिक यानी कि अपने अंडर गारमेंट्स को हमें ऐसे पहनना चाहिए ताकि वो सूखे हुए बिल्कुल रहें। जैसे कहते हैं ना कि इन्फेक्शन का जो खतरा है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। एंड साथ ही साथ में जब पीरियड्स होता है उसमें भी हमें मतलब मौसम की नमी के कारण से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा पनपने लगते हैं, इसीलिए आपको हमेशा से उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि पीरियड्स में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ सफाई, साफ सफाई का ध्यान हमें ज़्यादा रखना चाहिए कि ताकि अगर जैसे कुछ महिलाओं को क्या होता है कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिन बार बार जाती है, तो अपने आप को अच्छे से साफ करना, क्लीन करना पीरियड्स के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में अपनी स्किन को सूखा रखें, नहाने के बाद में शरीर को विशेषकर जो कि उंगलियों में जो पैरों की उंगलियां होती हैं और बगल के हिस्सों में यानी कि जो अंडरगारमेंट्स में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अच्छे से साफ सफाई से रख सकते हैं और सूखे ही कपड़े पहने। मतलब बारिश में क्या होता है कि हम कपड़े धुल तो लेते हैं लेकिन वो हल्का सा भी गीला होता है ना तो लगता है कि चलो यार पहन लो कोई अंदर अपने आप से सूख जाएंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उन्हें सुखा करके ही पहनना चाहिए। तो चलिए भाई ये थी आज की जानकारी और यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहे इस प्यार से गाने को।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के अपने नए सेगमेंट की ओर, जो कि है बहुत ही ज्यादा वाला औसम।
7: औसम तो है क्योंकि बात है बारिश।
6: औसम अच्छा है क्योंकि मौसम अच्छा है।
7: अरे वाह,
6: औसम है लेकिन इसके साथ में मौसम अच्छा है। आजकल बहुत राइमिंग हो रही है ना,
7: ये असर होता है पता है।
6: हाँ।
7: जब हम किसी अच्छे इंसान के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों के पास रहते हैं, थोड़ी गुड गुड वाली फीलिंग को फील करते हैं।
6: हाँ।
7: और अभी मैंने फर्स्ट सॉन्ग बजाया था, उसमें बहुत अच्छी सी लाइन थी।
6: हाँ।
7: वैसा जब कुछ होता है तो ऐसा होता है।
6: हाँ।
7: मतलब बढ़िया बढ़िया सी राइमिंग जो होती है
6: जी,
7: वो निकल करके आती है और एक चेहरे पे मुस्कान
6: होती
7: वो
6: है।
7: होती है
6: जी। हो गया,
7: हो गया,
6: आगे बढ़े। चलिए तो आज का टॉपिक नेक्स्ट क्या है?
7: नेक्स्ट ये है कि भाई देखिए, हम खुद को तो रेडी कर लेते हैं कि मॉनसून आ रहा है तो बढ़िया सी रेनकोट खरीदनी है, या बारिश में भीगना है, या फिर पकौड़ियाँ खानी है, या फिर भुट्टे खाने हैं, जो भी करना है। लेकिन क्या आप अपने घर को रेडी करते हैं? क्योंकि उसे भी रेडी होने की जरूरत है। भीगता तो वही है ना, मतलब हमारा घर ही भीगता है। हम तो बच जाते हैं बट वो नहीं बच पाता है। और जब भीगता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताऊंगी। और क्या होगा वो कौन बताएगा, ये आप जानते हैं। तो पहले मैं प्रॉब्लम बता देती
6: जी।
7: प्रॉब्लम बताना वो मेरा वो है, मैं प्रॉब्लम बताती हूँ। तो प्रॉब्लम ये होती है कि घर की छत और दीवारों में दरारें आ जाती हैं, और दरारें आने की वजह से जो पानी होता है वो अंदर रिसने लगता है, यानी कि आपके घर में सीलन आ जाती है।
6: बिल्कुल। और सीलन से परेशान जो होते हैं ना, वो माय गॉड, मतलब पूरा जैसा जो ये जैसे बॉडी नहीं ठंडी हो जाती है कभी कभी, वैसे पूरा घर ठंडा हो जाता है। दीवारें ठंडी हो जाती है और नहीं चाहते हुए भी इतनी गंदी वाली स्मेल आती है, जैसे लगता है कि आप चाहे जितना परफ्यूम उसमें लगा लो, आप चाहे जितना उसमें कोई भी कर लो, लेकिन वो सारी जो की स्मेल होती है वो पूरे घर में फैलने लगती है।
7: बिल्कुल। और इसे ठीक कैसे करना है, क्या कर सकते हैं?
6: मेरे ख्याल से अगर सीलन को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय तो यही है भाई कि अगर धूप आती है तो धूप से फिर से पूरी हमारा जो ये घर है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन और मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैं बताऊं?
7: बिल्कुल,
6: थोड़ा बहुत बताती हूं।
7: नेकी और पूछ।
6: तो दीवारों पर जो सीलन हो जाती है और पपड़ी जम जाती है, उसकी समस्या जो हो जाती है ना, उसका निदान आइए हम आपको बताते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छत या दीवारों में दरारें होने से बारिश का पानी जो है ना अंदर आने लगता है, जिसके कारण से सीलन हो जाती है। और उसके बाद में जो अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें ना हो, तो वाटर प्रूफिंग कोटिंग यानी मानसून शुरू होने से पहले ही छत और बाहरी दीवारों पर वाटरप्रूफिंग प्राइमर या फिर डॉक्टर फिक्सिंग जैसे लिक्विड वाटर फॉर्मिंग मेबेन की एक परत चढ़वा दें। लेकिन अंशी का पता है, ये सब तो ठीक है, हम मानते हैं, बट अब ये कौन क्या कहते हैं रेगुलर करेगा? कि अब भाई बारिश आने वाली है तो भाई अब हम जाकर के हम वाटर प्रूफिंग कराएं। ये तो ये तभी हो सकता है जब हम कोई नया घर लेते हैं या नया घर में जब पेंटिंग वगैरह होती है या फिर दिवाली के टाइम पर जब पेंटिंग होती है तब ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई लगे हाथ वाटर प्रूफिंग करा दो, है ना, ऐसा हो सकता है। फिर सेकेंड पॉइंट है कि लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का फूलना, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जिनकी मतलब आगे से अगर कहते हैं दरवाजों पर बारिश का पानी आ जाता है तो लकड़ी जो होती है ना वो हवा में वो नमी ले लेता है, सोख लेता है
7: जी मैम,
6: जिससे दरवाजे और खिड़कियां फूलने लग जाती हैं और इसी कारण से वे ठीक से बंद नहीं हो पाते और उसमें अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। तो उसका उपाय जो है वो उपाय ये है कि आपने क्या करना है ना कि सैंड पेपर और ऑयलिंग, जो हिस्सा फंस रहा है उसे सैंड पेपर यानी रेगमाल से थोड़ा सा घिसना शुरू कर दें। ये कर सकते हैं सब लोग,
7: हाँ ये तो कर सकते हैं।
6: और दरवाजे के कब्जों में सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर वैसलीन लगाएं ताकि वे आसानी से चल सके। ये तो मैं भी करती हूँ, दरवाजों में अगर आवाज आने लगती है ना तो जहाँ पर वो मेन जहाँ से टर्न होता है ना बंद होता है तो वहाँ मैं कड़वा तेल लगा देती हूँ तो उनकी ची चू चू सब बंद हो जाती है,
7: सब बंद हो जाती है,
6: ठीक है। पेंट या वॉशिंग, लकड़ी के फर्नीचर और दरवाजों पर मॉनसून पहले से ही वॉशिंग पेंट या एक सुरक्षात्मक परत लगा दे जिससे नमी जो है ना वो लकड़ी के अंदर नहीं जा सके और उसको वो पहले ही सोख ले, ऐसा कर सकते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है ये आप पहले से कर सकते हैं या फिर आपको लग रहा है कि अगर बारिश हो रही है तो भी आप अगर चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी उपकरण हैं तो करंट और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए पहले से ही आप लोग इसमें सतर्क रहें। और इसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग ना मॉनसून में ये सब चीजें पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट होके रहा करिए भाई, ये तो करवाना ही करवाना चाहिए क्योंकि इससे ना कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं,
7: पूरी सेफ्टी है
6: कई जिंदगियां। अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो कुछ से कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वायरिंग की जांच हमेशा से करवानी चाहिए। घर के सभी खुले तारों को इलेक्ट्रिकल टेप से अच्छी तरह से कवर कराएं। अगर किसी दीवार पर सीलन है तो वहां मौजूद स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करने से बचें, ठीक है
7: जी।
6: अगर अर्थिंग आ रही है तो अर्थिंग चेक करवाएं, एक बार किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से पूरे घर की अर्थिंग जरूर चेक कराएं ताकि भारी बारिश या बिजली कड़कने के दौरान उपकरण में सुरक्षित रहे। तो भाई ये चीजें तो हैं, साथ ही साथ मैं आपको कुछ बताऊं कि अगर आप घर पे प्रेस करते हैं जो इस्त्री करते हैं कपड़ों को
7: जी,
6: तो कई बार होता है कि जिस प्लग में आप लगा रहे हैं वो प्लग में पहले से ही मॉइस्चराइजर होता है, पानी होता है और हम जान नहीं पाते। प्लग लगा दिया, जैसे हमने स्विच बोर्ड में प्लग लगाया, प्लग ऑन किया और बहुत तेज से शॉर्ट सर्किट हो गया जिसके कारण से आपकी प्रेस तो गई, साथ ही साथ में क्या कहते हैं MCB गिर जाएगा, उसके साथ साथ में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और पानी की जो मोटर होती है, मोटर मशीन होती है, उसकी बिल्कुल देखभाल करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि वायरिंग खुली होती है और हम जान नहीं पाते और प्लग ऑन कर देते हैं और उसमें भी हमें करंट लगने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ बाथरूम में गीजर का प्लग जो हमेशा लगा रहता है, आप जान नहीं पाएंगे, गीजर को छू लेंगे बारिश के टाइम पर और उसमें भी करंट हो सकता है। तो ये सब की जानकारी आप कर सकते हैं और इससे हम मॉनसून में अपने को और अपने घर के पूरे फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा पे हम अपने आप को बचा सकते हैं।
7: बिल्कुल बचाएं और अपनी सेफ्टी रखें और बारिश को एंजॉय करें, लेकिन जो अभी हमने आपको प्रिकॉशंस बताए उसके साथ।
6: आइए तो अब हम चैट बॉक्स में चलते हैं और चैट बॉक्स में काफी हमारे लिसनर्स आज आ गए और मुझे लग रहा है कि काफी नए लिसनर्स की एंट्री हुई है तो सबके नाम हम ले लेते हैं। अंशिका
7: जी,
6: जिशान खान आए हैं और मोहम्मद अंसारी, लवली सिंह, शिवा पटेल, प्रमुख जी एंड प्रमुख जी अगेन एंड उसके बाद में चमन जी और प्रीति जी, गुलफसा जी, निरंकार मिश्रा जी, महक, आशु जी, मनी शर्मा, गुलफसा अगेन, धर्मेंद्र जी, तो काफ़ी हमारे लिसनर्स आज आ गए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज चैट बॉक्स जो हमारा हरा भरा लग रहा है, इन सभी को गुड आफ्टरनून एंड शुभ दोपहरिया हम दोनों की तरफ से। आइए सुनते हैं इस गाने को और गाने के बाद आएंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए इस प्यारे से शो को सुनते रहें और साथ ही साथ हमारे गानों को भी सुनते रहें। स्टे ट्यून्ड।

0: अब पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9 45 5 83 5346।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: दोस्तों आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं उस मेन टॉपिक की ओर, आ गए हैं अब हम लोग, जो कि हम महिलाओं में ज्यादातर ये चीजें पाई जाती हैं और नहीं पाई जाती हैं।
5: बिल्कुल, क्योंकि घर की महिलाएं जहां बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, वहां ढेर सारा बहुत सारा उनके अंदर जो भरा होता है वो ये होता है लापरवाही। बहुत सारी उनके अंदर लापरवाही होती है और वो सिर्फ खुद को लेकर होती है, वो किसी को लेकर नहीं होती, वो पापा को लेकर नहीं होती है, हस्बैंड को लेकर नहीं होती, किसी को लेकर नहीं होती,
4: बच्चों को लेकर नहीं होती है,
5: सिर्फ खुद को लेके होती है कि हम नहीं खाएंगे और बाकी सबको सलाद भी चाहिए, अचार भी चाहिए, दही भी चाहिए, चावल भी, मतलब प्रॉपर खाना चाहिए लेकिन खुद के लिए नहीं चाहिए, खुद के अरे रहने दो, बचाए तो ठीक है, नहीं तो बना लिया जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि आपको हो जाती है विटामिन और आयरन की कमी, और उसके बाद होता है बॉडी पेन, और जब बॉडी पेन होता है तब भी नहीं सुधरती, बॉडी पेन के बाद भी अरे हो रहा होगा हल्का दर्द, लाओ काम निपटा लें तब दवा खाएंगे,
4: बिल्कुल,
5: या दवा भी नहीं खानी, कुछ नहीं करना है। तो इसलिए ढेर सारी, क्योंकि मैं इन सब बातों को लेकर मम्मी से बहुत झगड़ा करती हूँ और उनके बहुत पीछे पड़ती हूँ, और जब पीछे पड़ती हूँ तभी दवाई खाती हैं और तभी वो फल या ऐसी कुछ चीज़ें भी खाती हैं। मतलब मेरे यहाँ मम्मी को ये है कि जैसे उनको थोड़ा ब्लड की भी कमी है, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि चुकंदर ज़रूर खाया करो, और उनके लिए मैम हम लोग ला के रखते भी हैं घर पे, पापा ले आएंगे अगर मार्केट जाएंगे, मैं जाती हूँ तो ले आती हूँ, लेकिन वो चुकंदर खाने के लिए दिन भर में 10 बार याद कराना पड़ता है।
4: क्योंकि पता है अंशिका, ये हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी धीरे धीरे जैसे तुम अभी बोल रही हो ना, कुछ टाइम के बाद तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है कि हम अगर क्या कहते हैं कि लगता है कि घर में रुक रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो लगता है यार ठीक है ना, अभी कर लेंगे ना, अभी खा लेंगे ना, चलो ठीक है थोड़ी देर हम पहले ये वाला काम निपटा लें। एक्चुअली मेरे साथ भी शाम को यही होता है, शाम को जैसे लगता है कि एक फ्रूट की आदत है कि भाई हाँ कोई भी एक फ्रूट हम लोग शाम को लेते हैं, फिर काम का प्रेशर इतना हो जाता है, जिस दिन काम करो भाई कपड़े भी प्रेस करने हैं, खाना भी बनाना है, ऊपर से हमको अपने रूम को भी देखना है, थोड़ा क्लीन करना है, अभी जैसे बारिश के लिए बता रहे हैं तो बारिश में वैसे ही बहुत साफ सफाई का होता है। अच्छा, किचन में भी होता है कि खाना बनाना है, कहीं भूल ना जाओ कि कुछ खुला नहीं रख के आ जाओ, या फिर तो इसी में देर देर में क्या होता है कि अच्छा ठीक है अभी खा लेंगे, अभी खा लेंगे, अच्छा तो अच्छा ठीक है मम्मी तुम कट करो हम आते हैं, पर ऐसे ऐसे करके शाम के मतलब शाम क्या मतलब वही 8-9 बज जाते हैं, फिर लगता है अच्छा छोड़ो यार अब चलो खाना ही खाते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि हम लोग ना अपने लिए लापरवाह हो जाते हैं, और यही लापरवाही थोड़े दिन के बाद हमारी वीकनेस का सबसे ज्यादा वाला कारण बन जाती है।
5: बिल्कुल, और देखिए महिलाएं हो या लड़कियां हो, जैसे कई बार ये कहा जाता है ना कि अरे नहीं मम्मी को या पापा, मम्मी को कहा जाता है स्पेशली कि आपकी एज हो गई है इसलिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, बट यहाँ फैक्ट ये है कि एज इज नॉट मैटर। आप 20 साल के भी हो, आप 15 साल के भी हो, आजकल ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है कि वीकनेस सबको होती है।
4: मैं तो ये एडवाइस देना चाहूंगी कि गर्ल्स को भले बचपन से ही कुछ ना कुछ प्रोटीन विटामिन्स लेते ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आगे फेस करने को आती हैं। तो एक लड़की को मतलब ये सारी चीजें, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी प्रोटीन और मतलब विटामिन्स की चीजों को हमेशा से लेते रहना चाहिए।
5: बिल्कुल, अब आपको मैं बताऊं सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना कि घर में ही चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर होता है कि हम उनका ध्यान नहीं देते। चलिए कुछ भूली बातें आपको याद दिलाते हैं, ये याद दिलाते हैं कि आपके घर में क्या है जो आपके काम आ सकता है।
4: ओके।
5: तो सबसे पहले अगर विटामिन की बात की जाए तो सभी के घर में नींबू जरूर आता है।
4: हाँ।
5: ऐसा किसी के घर में नहीं होगा कि कोई ये कह दे कि मेरे घर में नींबू नहीं आते।
4: हाँ, बिल्कुल।
5: सभी के घर में आते हैं। तो क्या करना है, एक बढ़िया सा नींबू लीजिए, बड़ा सा बड़ा सा, इट मीन्स कि एक ग्लास आपका उसमें हो जाना चाहिए, और पानी लीजिए और चीनी लीजिए और एक गिलास उसमें शरबत बनाइए।
4: अच्छा,
5: और इसे पी लीजिए।
4: अच्छा, नींबू का शरबत।
5: हाँ,
4: जिसमें नींबू और चीनी भी हो।
5: चीनी भी।
4: ओके।
5: अगर आप पीते हैं तो आप थोड़ा सा हल्का सा एक पिंच नमक भी डाल सकते हैं।
4: अच्छा।
5: मैं नमक
4: काला नमक।
5: हाँ, काला नमक। हाँ। मैं नमक नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, मतलब मुझे मीठा ही अच्छा लगता है। और फिर मीठा एक आधा चम्मच आप करिए अच्छे से, अगर डायबिटिक नहीं है तो, अगर डायबिटिक है तो फिर उस हिसाब से। और इसको पीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनर्जी आती है। जब आप इसे पीते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी पूरी होती है।
4: okay.
5: और जिनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होती है उन्हें जल्दी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कि एज बढ़ रही है, या एज नहीं भी बढ़ रही है तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा लैपटॉप या फोन पे काम किया तो आंखें दर्द हो रही है। वो क्यों होता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है।
4: Okay.
5: इसलिए नींबू पानी जरूर पिए। अगर आप नींबू नहीं पी पाते मान लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हम पीते नहीं तो हमें हैबिट नहीं है। वो ना कीजिए। एक और चीज बताती हूँ, प्याज सभी खाते हैं घर में।
4: हाँ।
5: सैलेड में।
4: हाँ।
5: प्याज काटिए अच्छे से रोल रोल। काट लिए आपने, प्लेट भर के काटिए।
4: हाँ।
5: और उसमें बढ़िया से ऊपर से नींबू का रस डाल दीजिए।
4: ओके।
5: हल्का सा नमक डाल दीजिए, उसको शेक कर लीजिए, मिला लीजिए
4: और खाने के साथ
5: खा लीजिए।
4: ओके। यानी मतलब किसी भी कहने का सेंस मतलब ये है कि किसी भी सूरत में आपको नींबू का रस लेना ही लेना है,
5: क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग ब्लैक टी पीते हैं।
4: हाँ।
5: काली चाय बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर आपको काली चाय पीने का आपका रूटीन है तो आप उसमें रस डाल दीजिए नींबू।
4: हाँ।
5: बहुत अच्छा लगता है उसमें डाल के, तो लगता है कि हाँ आधी कप आराम से पी जा सकती है। एक फायदा और होता है ब्लैक टी पीने का। ब्लैक टी पीने का फायदा ये होता है कि आपको उसकी कभी हैबिट नहीं रहेगी।
4: अच्छा।
5: कभी एडिक्शन नहीं होगा कि मुझे मिलनी ही चाहिए।
4: हाँ।
5: जैसे हम दूध वाली चाय जब पीते हैं तो एडिक्टेड हो जाता है कि मिलनी ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो सर में दर्द।
4: मेरे साथ है अंशिका, मैं
5: एडिक्शन
4: में हूँ। मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि जो जैसे 5 बजा मतलब कि 7 बजे के अंदर मुझे लगता है कि, और ऐसा भी नहीं कि पूरा मतलब बड़ा हुआ मतलब एक बड़ा गिलास हो चाय का और पूरा एक पैकेट बिस्किट का हो, ऐसा कुछ नहीं है। आधी बिस्किट एंड आधा कप चाय, आधे से भी आधा मिल जाए ना एक सिप चाय, बस वो जिसे कह रही हूँ ना कि एडिक्शन है, बस वही कि हाँ मुझे हेडेक ना हो या फिर कुछ ऐसा हो।
5: बिल्कुल।
4: तो वो आधा कप ही मतलब लगता है कि हाँ मिलना चाहिए।
5: और सबसे अच्छा विटामिन एक और चीज में होता है।
4: हाँ।
5: और वो होती है पालक। पालक आपकी विटामिन से भरी हुई होती है। और एक अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका बताऊं, जिन्हें भी पालक नहीं पसंद है उन्हें भी पसंद आ जाएगा, और वो ये है कि पालक का आप बनाए सूप। बढ़िया सा पालक ले आइए, पालक का कढ़ाई में सूप बनाइए और सूप बना करके पीजिए। आप देखिए आपको आदत लग जाएगी। और मैं ये भी बताऊं, जैसे बहुत महिलाएं कहती हैं कौन रोज इतना करे, घर का वैसे इतना काम हो जाता है, तो आप एक काम कीजिए, आदत डाल लीजिए वीक में 2 दिन कि हम वीक में 2 दिन पालक का सूप पियेंगे, चाहे सुबह दोपहर शाम में किसी भी एक टाइम वीक में 2 दिन पियेंगे। मानिए अगर वीक में 2 दिन भी आपने कर लिया ना तो वो आपकी बॉडी में जितने विटामिन्स की जरूरत होती है उतनी कमी वो पूरी
4: कर देता।
5: एक चीज और बताएं, और ये बहुत अच्छी वाली है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। आप जो घर में मतलब बाकी लोगों के लिए करेंगे ना वो आपके भी काम आ जाएगा।
4: अच्छा।
5: घर में जब भी सब्जी बनाइए तो कोशिश करिए कि जिस कढ़ाई में आप बना रहे हैं वो लोहे की। लोहे की कढ़ाई में बनाने से क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि लोहे में आयरन पूरे प्रॉपर
4: पूरी भरपूर मात्रा में होता
5: है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो उस कढ़ाई के पूरे जो प्रोटीन्स होते हैं वो सब्जी में आ जाते हैं और आयरन आपको भरपूर मिलता है। इससे क्या फायदा होगा कि आपने घर में सबके लिए सब्जी बनाई, वही सब्जी आपने भी खाई, लेकिन फायदा आपको भी मिला और फैमिली को भी मिला। इसलिए आयरन की कमी पूरी करने के लिए ये अच्छा होता है।
4: ओके। तो लिसनर्स, आज हमारे काफी नए लिसनर्स आ गए हैं जो कि हैं रोशनी रावत एंड कमल नयन जी, धर्मेंद्र जी एंड जिशान जी आ गए हैं और लिख रहे हैं कि हाय मैं अरमान बोल रहा हूँ। मैम आप बहुत ही अच्छी बातें बताती हैं।
5: थैंक यू सो मच
4: जिशान जी। और आपकी आईडी में तो जिशान आ रहा है लेकिन आप बोल रहे हैं अरमान। ओके। हो सकता है कि आपका अरमान नाम हो। एंड आशु जी आ गई है। हेलो आशु जी, कैसी हैं आप? तो अभी हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में बात करी है, जो कि महिलाओं में अक्सर ये कमी पाई जाती है। तो अभी जो भी उपचार बताए गए हैं, जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर से अपनाएं। और आपके घर में अगर महिलाएं सुन रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर महिलाएं नहीं सुन रही हैं, मेल लिसनर्स भी सुन रहे हैं, तो आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें आज के प्रोग्राम्स के बारे की जो जानकारी है उन्हें ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आइए चलते हैं एक ब्रेक की ओर, और ब्रेक में सुनाऊंगी मौसम का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंड उसके बाद आएंगे एक स्टोरी लेकर के। आज आए हैं हम लोग, तो वो स्टोरी भी कुछ महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, और लेकिन आप सभी को सुनना है, आपको कहीं नहीं जाना है हमारे साथ, क्योंकि 89.6 FM में अभी बहुत कुछ है बाकी। बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून।
6: Let's start the fun!

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: आइए फटाफट शुरू करते हैं, हमारे बच्चे कुछ एक टाइम को आपके साथ स्पेंड करते हैं, क्योंकि अगर ये आई लव यू शाई लव यू के चक्कर में रहेंगे तो हमारा जो टाइम है ना वो निकल जाएगा। तो चलिए, अभी एक स्टोरी नहीं है, मतलब आज के जो कि हमारा विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम होता है तो उसमें स्टोरी नहीं सुनाते हम लोग कुछ उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाओं को, कुछ ऐसी प्रेरित की हुई बातों को आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज किन बातों से हम और आप प्रेरित होते हैं।
1: तो आज मैं बताने वाली हूँ जिनके बारे में, वो है सुधा मूर्ति जी, जो कि आज बहुत ही अच्छे एक फाउंडेशन की चेयरमैन हैं, जिसका कि नाम है इंफोसिस। मैं बता दूं कि वो बहुत अच्छी राइटर भी हैं, और अपने कॉलेज के दिनों में वो इंजीनियरिंग में एक अकेली लड़की थी, मतलब अपने पूरे क्लास में अपने कॉलेज टाइमिंग में वो अकेली लड़की थी जिसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, और सब यही कहते थे कि अरे तुमसे नहीं होगा ना, तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये आप लोगों की मतलब लड़कियों के लेवल की बात नहीं है कि वो किसी फाउंडेशन में चेयरपर्सन हो। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इतनी अच्छी वो थी कि मतलब उन्हें टाटा जैसी बहुत ही प्रसिद्ध कंपनियों से भी ऑफर आए कि आप हमारे यहाँ आकर के काम करें। तो उन्होंने साबित किया कि पढ़ाई की अगर लगन हो, मेहनत हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लड़की है या लड़का। और मैं बता दूं कि आज वो बहुत सारे वेलफेयर्स के लिए भी काम करती है, मतलब महिलाओं की बहुत सारी ज़रूरतें जैसे कि लड़कियों की पढ़ाई, और उन्होंने कई सारी लाइब्रेरीज भी बनवाई हैं और बहुत सारे वृद्धाश्रम। आज उनका नाम एक ऐसी इंसान के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी पढ़ाई को अपने लिए तो यूज़ किया ही, बट उससे जो अर्निंग हुई उसे औरों के लिए भी यूज़ किया।
0: तो ऐसे ही थोड़ी नहीं कहा जाता है कि अगर एक महिला सशक्त हो जाती है तो उससे कई कुल जो हैं वो उभर कर आते हैं, उनके एक सशक्त होने पर काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो कहते हैं ना कि मतलब आज का जो प्रोग्राम हमारा जो कि वेडनेसडे को होता है वो होता है विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम, जिसमें आज के दिन हम स्पेशली महिलाओं को ही समर्पित करते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम हमेशा से कहते हैं ना कि एक समर्पण की जहाँ भावना आ जाए, एक त्याग का जो दूसरा नाम है वो औरत ही होता है। तो ऐसे ही जो कि अभी अंशिका ने बताया कि वाकई में कई ऐसे हमारे पास किरदार हैं जिनको अगर हम बताने बैठ जाएंगे तो शायद हमारा आज का पूरा दिन भी कम पड़ जाए। तो ऐसे ही ऐसी कई महिलाओं को हमारा बिल्कुल हैट्स ऑफ है, शत शत नमन। तो चलिए हम लेंगे आज से अब इजाज़त और मिलेंगे कल सेम डे सेम प्लेस पर। तब तक के लिए बारिश हो रही है, इंजॉय करें, और लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान देते हुए, क्योंकि अभी अभी आज हम लोगों ने बताया था कि बारिश के मौसम में महिलाओं को स्पेशली ध्यान देना है। तो हम मिलेंगे कल फिर से सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किड्स प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88-40-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: हाँ जी श्रोताओं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा में आप सभी का। वक्त हो गया है, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि भाई अब ये वक्त है, थोड़ा थम जाइए, कितना काम करेंगे, पूरा दिन तो बीत गया लगभग आधा आधा। हाँ जी, और वादा था ना कल का, आज फिर मिलेंगे, तो मिल लिया है आप सभी से, हो गई है शुरुआत, आगाज हो गई है आपके अपने शो की जिसका नाम है बेशक वही आपका पसंदीदा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। और 3:06 बाय स्टूडियो क्लॉक। और एक और बात, हाँ, प्यारी सी सूचना जनहित में जारी है भाई, जारी इसलिए है क्योंकि अब बारी है आपके कॉल मिलाने की, आपके अपने फरमाइशों की, आपके अपने पसंदीदा सॉन्ग्स की, आपके डेडिकेशन वाले सॉन्ग्स की। और इस मौसम को जो थोड़ा सा इन्होंने सुहाना बनाया, कल शाम से ही जो बरसात की रिमझिम फुहारें आई भाई, कल हमने अपने श्रोताओं से बोला था भाई जिसके उधर भी बारिश हो रही है थोड़ा सा इधर को धक्का मार दो, इधर धकेल दो, तो भैया इन लोगों ने पहुंचा दिया। कुछ उत्तराखंड के श्रोता हमारे, कुछ बिहार वाले हैं, कुछ एमपी वाले हैं, कुछ राजस्थान वाले, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मिला के सभी ने अपनी तरफ से बारिश यहां तक पहुंचा दी। फिलहाल आज सुबह में भी, मॉर्निंग में भी, बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं लेकिन हाँ लगभग 10 के करीब बहुत प्यारी बारिश हुई है और आधे से एक घंटे, और मौसम सुहाना बना हुआ है, कभी बदली हो रही है, कभी धूप हो रहा है और फिर कभी 2-4 छींटे बारिश के फिर से पड़ रहे हैं, तो इस तरह से मौसम काफी प्यारा बना हुआ है और आज का मूड आपकी आकांक्षा का बेहद प्यारा है भाई। ऐसे मौसम में तो या तो लॉन्ग ड्राइव बनती है या फिर अपने दोस्तों से, मतलब बहुत कई दिनों से जो नहीं मिले उनसे मिलने की बात होती है, या फिर आप कहीं किसी के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, बेशक ऐसे ही तो मौसमों का इंतजार होता है। और एक बात और, अगर आपके पास में वक्त नहीं हो ना तो इमरजेंसी में वक्त निकालिए, जिस तरह से आप कुछ आपके साथ में अहित हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो भाई आप जबरदस्ती टाइम निकालते ही ना, तो जब आप दुर्घटना के वक्त जबरदस्ती टाइम निकाल लेते हैं तो फिर खुशियों को बटोरने के लिए किस बात का इंतजार करते हैं। जनाब वक्त निकालिए, हालात को अपने हिसाब से बनाइए और उसके बाद में एंजॉय करिए इस प्यारे से मौसम को। फिलहाल मौसम तो आप इंजॉय करते रहेंगे लेकिन उसके साथ साथ में भाई पहली डिमांड हम लेंगे, लेकिन उससे पहले भाई आज मेरा मन है बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुनने का, थोड़ा सा रेनी वाला, थोड़ा सा रोमांटिक वाला, थोड़ा सा रोमांस वाला और थोड़ा सा उन ख्यालातों वाला जिसमें बस आप और आपके साथ में कोई खास होता है। एंजॉय करिए इस ट्रैक को भाई, हमारी पसंद से, हमारी प्लेलिस्ट से, आप सभी के लिए 3-4 के सफर में मैं आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और शो आपका सबका पसंदीदा फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा।
1: पीता पियों के शरारे पीछे हैं ये सावन के।

हाँ दोस्तों, बरसात के दिन आए, ओ माय गॉड, बरसात के दिन आए, यकीन मानी बरसात के दिन आए। हाँ, कारण ये है कि कई, अच्छा मैं एक सवाल मात्र आप सभी से करूँगी। सवाल ये है कि जैसा आपने कभी सोचा हो किसी के साथ में बरसात के मौसम में वक्त बिताने का, क्या आपने कभी स्पेंड किया है किसी के साथ या नहीं, या आज तक आपका सपना ही रह के, मतलब एक ख्वाहिश रह गई है और वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। भाई हमारी तो हर एक ख्वाहिश को मदर नेचर ने हमेशा कंप्लीट किया है, यकीन मानिए। मुझे जब भी ट्रिप पे जाना होता है, कहीं भी वीक ऑफ होता है, कुछ भी होता है, मैं लखनऊ तक ही जाती हूँ। और अगर मैंने एक दफ़ा कह दिया कि भाई धूप मत करिएगा, प्यारा सा मौसम रखिएगा, तो मौसम वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल, मौसम है आशिकाना, ऐसे में ऐ दिल किसी से दिल ना लगाना। हाँ थोड़ा सा ये मैं अपने आप को संभाल के चलती हूँ, लेकिन हाँ मौसम से तो भाई प्यार करना बनता है। तो आज प्यार कर लीजिएगा इस औसम वाले मौसम से, थोड़ा चाय के साथ में, थोड़ा दोस्तों के साथ में, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे, थोड़ा मी टाइम में, कहीं भी आप अपना इस प्यारा, ये जो आपका प्यारा सा समय हो उसको जी हाँ लगा सकते हैं। फिलहाल अब लेंगे आज की पहली डिमांड, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है हमारे प्यारे लिसनर मुस्तफ़ा जी की ओर से, सऊदी अरेबिया से। और भाई गाना बड़ा ही प्यारा है, ओल्ड वर्जन है लेकिन सुपर डुपर हिट वाला सॉन्ग। आवाज़ है हमारे किशोर दा की, एंजॉय द ट्रैक।

अगर हम मौके पे धोखा ना दे तो फिर हमारा होना बेकार। भाई देखिए, सीधी सीधी बात है कि हम चलते चलते कहीं और मुड़ जाते हैं। आप सभी को पता है, आप जब फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम में जिस दिन कॉल इन होता है, बात हम कुछ और कर रहे होते हैं, घुमा देते हैं। बस ऐसा ही कुछ था मुस्तफ़ा जी, और वैसे वो BGM था और गाना यही था। वैसे वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आपको अच्छे से पता है, बारिशों के मौसम का, लेकिन गाना यही था। अब आपकी पसंद, आप इन्जॉय करिए और सभी इन्जॉय करते हैं।

हाँ जी, और इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। डिमांड 90s का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है भाई, सुनील कुशवाहा जी जो हमें MP से सुनते हैं, उनकी डिमांड हम तक आ गई है। और फिर देर किस बात की, आइए सुनते हैं। और इस गाने के जस्ट उस पार हम आएंगे, एक गाने को प्ले करेंगे जो कि डेडिकेशन में होगा RJ अमन जी आपके।

इस गाने से मुझे मेरी फ्रेंड याद आ जाती हैं और उनका नाम था सुमन। हम लोग उन्हें बहुत चढ़ाते थे, तू है मेरी सुमन। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है कमल नैन जी की, और इस सॉन्ग को हम डेडिकेट करना चाहते हैं आरजे अमन जी को जो हमें सुनते हैं, जी हाँ, बिहार से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को 3 से 4 के सफर में। मैं आपके होस्ट एंड दोस्त, और शो चल रहा है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM यानी कि आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, दिल कभी कभी खो जाता है। वैसे मौसम अगर इतना औसम हो तो दिल का खोना बनता है बॉस। और एक बात और कहूंगी कि तमन्ना और आरजू में मतलब अंतर क्या है? एक ही नाम रख लेते तो चलता, रख लेते जो भी है आप, तो बेस्ट होता। आपने दोनों को एक साथ में मतलब पर्यायवाची शब्दों का जो सम्मिश्रण आपने किया है काफी पसंद आया हमको। राधिका सिंह जी, मैं अपनी लिरिक्स कैसे ऐड कर दूं? मेरी तो कोई लिरिक्स ही नहीं है, लिरिसिस्ट की लिखी हुई लिरिक्स है, इसलिए उसके लिए भी माजरा चाहूंगी। और अब चलूंगी उस डिमांड की ओर जो हमारे पास में आई हुई है बिहार से। देवानंद जी हैं जो हमें बिहार से सुनते हैं और साथ ही में इनके साथी गण भी हमें सुन रहे हैं, तो चलिए इनके डिमांड को हम करते हैं कंप्लीट। देन आते हैं अपने पंडित जी की प्यारी सी डिमांड के साथ में। और ये गाना मैं राधिका जी आपको डेडिकेट करती हूँ, एंजॉय करिए।

क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी और मैं तो भूल गई कि इसके लिरिक्स मुझे याद थे, मैं गुनगुना सकती थी। आई एम सो सॉरी राधिका जी। अभी मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट आई डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हमारे प्यारी श्रोता यानी कि पंडित जी की ओर से। चलिए पंडित जी की डिमांड आप सभी तक पहुँचाते हैं, और सेल्फ लवर्स के लिए बहुत ही प्यारा सा गाना है भाई। कभी कभी आप भी आईने में इस गाने को प्ले करके खुद को निहार लिया करिएगा। आप सभी से कह रहे हैं, हाँ खाली एक समय आप सभी से, सब के सब ऐसे ही बहुत प्यारे हो। और हाँ, नजर बट्टू के रूप में काला लेबाज, एंजॉय करिए।

क्या बात है भाई, इस गाने को लेकर के फीडबैक्स भी आए हैं और काफी मजेदार आए हैं, सुन लीजिए आप सभी। हाँ, हमारे प्रमोद कुमार जी जो हमें लुधियाना से सुनते हैं, लिखते हैं, सबका जरूरत नाई है निहारे कहन, तो आईना निहार लो तो सुनर मुन्नर हो। थैंक यू सो मच। और इसके बाद में अशोक मिस्त्री जी लिखते हैं, दिल में हर पल एक नई उम्मीद और आस होती है, दिल में हर पल एक नई उम्मीद और आस होती है, जिंदगी जीने की आकांक्षा सबसे खास होती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो राहों में, हौसलों के दम पर हर मंजिल पास होती है। क्या बात है भाई, हौसला है तो सब मुमकिन है। और अरे भाई सब का क्यों देख रहे हो? ओह माय गॉड, आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस देख के हमको काफी हंसी आती है, मजा आया।

सॉन्ग को लेकर के फीडबैक आया हुआ है अशोक मिस्त्री जी का कन्यालगंज से, जो हमें सुनते हैं। क्या सॉन्ग है मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, गाना राहत साहब को राहत ना दे जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए बढ़ते हैं सफरनामे में आगे, और वक्त हो चला है पूरा 3:31। बाई स्टूडियो क्लॉक यानी कि आधा वक्त पार हो चुका है इस सफर का, और सफरनामे में जो आधा वक्त है वो आप सभी के गानों से सजाया जाएगा। हाँ जी, आपके अपने महफिल यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा को। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। ये डिमांड हमारे पास में आई है हमारे प्यारे लिसनर जिनका नाम है शिवा पटेल जी, और जो मैं सुन रहे हैं केशव नगर से यानी कि बभनान के पास से। चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये बहुत ही प्यारा सा ओल्ड वर्जन वाला बहुत ही शानदार सा नगमा, और इस नगमे के बाद हम आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। एंजॉय करिए।

हाँ जी दोस्तों, ये सॉन्ग आप सुन रहे हैं हमारे प्यारे लिसनर जिनका नाम है शिवा पटेल जी, जो हमें किशनगर से सुन रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिमांड लेने वाले हैं अपने प्यारे लिसनर अमित कुमार जी की। उसके बाद जो डिमांड आ जाइए भाई, आज तो आपने हमारा दिल खुश कर दिया देव प्रसाद जी, इंडिया वाले देव प्रसाद जी। लेकिन उससे पहले हम आपके पैगाम की ओर आएंगे, यानी आएंगे चैट बॉक्स की ओर। फिलहाल ये गाना आप एंजॉय करिए। 3 से 4 के सफर में आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना 89.6 FM, आपके अपने शहर गोंडा की धड़कन। एंजॉय दैट।

श्रोताओं, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर और ये डिमांड है हमारे पास में अमित कुमार जी की। अमित कुमार जी को सुनना है मौसम के हिसाब से, बड़ा ही प्यारा सा गाना है। और चलिए उड़ा देते हैं काले कामा को, अभी तो आप समझ गए होंगे ना कौन सा गाना है। एंजॉय करिए।

क्या बात है भाई अमित कुमार जी, आज तो आपने बहुत ही प्यारी सी चॉइस भेजी है। इतनी प्यारी सी चॉइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो नेक्स्ट चॉइस है भाई, वो हमारी चीची जी पे फिल्माया गया है और हमारे देव प्रसाद जी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी पसंद क्या है। थैंक यू सो मच देव प्रसाद जी। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं चैट बॉक्स की ओर, यानी आप सभी के पैगाम की ओर। एंजॉय द ट्रैक।

आचार्य निरंकार मिश्रा जी हमारे साथ में बने हुए हैं बभनान से। आचार्य नरेंद्र देव किसान स्नातक कॉलेज से ये हैं और आज ये हमारे स्टूडियो में भी आए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में सर। प्लीज़ अपनी फरमाइश को लिखें। ओके, आप आया सावन झूम के। ओहो, क्या प्यारी चॉइस है आपकी। बस थोड़ा वेट करिए, आपका गाना आप तक ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि अभी कम से कम 10 मिनट मुझे लगेगा। मैं चैट बॉक्स से कुछ मैसेजेस उठाऊंगी, फिर एक सॉन्ग प्ले करूंगी, देन आपका सॉन्ग होगा। निरंकार मिश्रा जी अपनी बारी का वेट करिएगा। अभी चलते हैं हम चैट बॉक्स की ओर और देखते हैं प्यारे प्यारे मैसेजेस जो आप लोगों ने बतौर पैगाम अपनी आकांक्षा तक पहुंचाए हैं। चलिए ले लेते हैं। मुस्तफ़ा जी सऊदी अरेबिया से, आशु मिश्रा जी हैं लखनऊ से। भाई आज लग रहा है लखनऊ में भी बारिश हो रही है। ओके, और बहुत बहुत स्वागत है आशु जी, बहुत दिनों बाद आपको मैंने अपने शो में देखा है। और उसके बाद में गुड आफ्टरनून मैम बोला है मुस्तफ़ा जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉल भी आ रही है भाई, कॉल को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि मैं मैसेजेस ले रही हूँ। राधिका सिंह जी हैं, गुड आफ्टरनून आज आकांक्षा मैम, गुड आफ्टरनून टू डियर। सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दर्शन सारी जी हमारी सीतापुर से, और सीतापुर से सुनने वाले सभी लिसनर्स का स्वागत है, गुड आफ्टरनून आपको भी। और गुड आफ्टरनून डियर गुलाब और हार्ट, और एक फ्लावर अपने बगीचे का कभी नहीं आप छोड़ती, एक स्पेशल फ्लावर हमारे लिए खिलता है गुलाब, क्या बात है, धन्यवाद। और सब लोग सावन जी हैं सांता क्रूज मुंबई से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आरजे अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार से, जो हमें बिहार से सुनते हैं। ये खुद एक कलाकार है और जब एक कलाकार किसी कलाकार की तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और प्रमुख कुमार जी हैं लुधियाना से, गुड आफ्टरनून एवरी वन बोला है, थैंक यू सो मच सर। और मुस्तफ़ा जी हमको लगा ओके, नेक्स्ट मैसेज में है, चलते चलते समोसे की दुकान की जगह रसगुल्ले की दुकान में मोर, वाह क्या बात है। सावे बलम जी आपको और कुछ नहीं मिला था, शो के टाइम पे आप खाने पीने की बात करेंगे, कोई बात नहीं आप कर सकते हैं। इसके अलावा भाई प्रमुख जी ने बताया कि बारिश में खूब नहाए हैं ये, कभी अच्छा किसी जानवर के साथ, कभी ग्रामीण क्षेत्र में, तो कभी कहीं एंजॉय इन्होंने काफ़ी किया। मूंगफली और चाय भूनकर बारिश में खाना, बातें करना, गप्पे मारना, खूब मस्ती करना, बहुत प्यारी मेमोरीज हैं आपकी। उम्मीद है एक दिन मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊंगी। भाई आपने मुझे आइडिया दे दिया है कि मैं ऐसा कुछ करूं। और इसके अलावा हमारे साथ में हैं आसिफ खान जी जो हमें मुंबई से सुन रहे हैं। और इसके नेक्स्ट मैसेज में बात करूं तो हमारे बीच में हैं आप सभी के लिए, मतलब आप सभी के मन में होती है एक ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है, एक आरजू होती है, तो हाँ बस तमन्ना आरजू जी हमारे बीच में, गुड आफ्टरनून टू यू डियर, और अपना ख्याल रखना, बस इतना ही कहूँगी आपसे। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मैसेज की बात करें, शिवा पटेल जी हैं जो हमें सुन रहे हैं, जी हाँ बबनान के पास से। और नेक्स्ट मैसेज में आप सभी के फीडबैक्स हैं। अशोक मिस्त्री जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जो हमें कन्यालगंज गोडना से सुन रहे हैं। इसके अलावा इट्स कुमार साहब आ गए भाई एमपी रीवा से, और रीवा वाले हमारे मोस्ट बैचलर जी हाँ कुमार साहब लिखते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून डियर डीडी नेशनल नंबर वन। ओके थैंक यू सो मच, व्हाट अ टैग लाइन, थैंक यू मीन्स अ लॉट। और इसके बाद में निरंकार मिश्रा जी हमारे बीच में, जो कि प्रोफेसर हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ए हवा मेरे संग संग चल, ओके तो आप जरा कॉल मिला लें, अगर आपने कॉल किया होगा तो आपका गाना जरूर बजेगा अशोक मिस्त्री जी। मोहम्मद तालिब अंसारी जी हैं जो कि हमारे साथ में फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, ओके थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बाराबंकी से। ओके और यहाँ भी बारिश हो रही है ऐसा कहना है हमारे प्यारे इट्स कुमार साहब का। भाई ये आजू बाजू चारों तरफ से बारिश हो रही थी, कल हमने आप लोगों से मांगी है थोड़ी सी बारिश, इधर को भी ढकेल दीजिए। हाँ जी बोलते हैं ना अवधि में, धक्का देने को बोलते हैं ढकेल देना, तो भैया ढकेल दीजिए। और आप लोगों ने बहुत ही ताकत के साथ में, फुल ऑन जोश के साथ में उसको ढकेल के यहाँ तक पहुँचाया। फिलहाल वक्त हो गया है 3:40 बाय स्टूडियो क्लॉक, 20 मिनट आप सभी के, मतलब मेरे पास है आप सभी के गानों को प्ले करने के। चलिए फिर प्ले करते हैं देर किस बात की, और देव प्रसाद जी की डिमांड पे बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा, जी हमारे चीची जी पे फिल्माया गया ये सॉन्ग। और उसके बाद निरंकार मिश्रा जी अपनी बारी का इंतजार करिए, आपका सॉन्ग हम प्ले करते हैं, एंजॉय द ट्रैक।

भाई मोहब्बत में ऐसी कसौटी होती है और इस कसौटी पे जो खरा उतर गया, यकीन मानिए मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी ताउम्र के लिए। तो अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच, मतलब जैसे कि रोना धोना हो रहा है ना, तो हो जाने दीजिए। और दर्द का आहा एहसास ही कुछ और अलग होता है मोहब्बत के।

देखिए मनाने का ढंग देखिए, हमारे सामने बिलम जी को हम ऐसे ही नहीं कहते, बड़े इंटेलिजेंट है भाई सल्लू जी। लिखते हैं रोने से आंख साफ हो जाती है, आंख का कचरा भी क्लियर हो जाता है। तो क्या कहते हैं हम नगर पालिका वालों को, घर से बाहर मतलब अपने इलाके से बाहर कर दिया करेंगे, रो रो के अपने सड़कों को और आसपास के कचरों को साफ कराएं। क्या चाहते हैं आप सब लोग जी, क्या चाहते हैं आप, ये भारत जानना चाहता है आप क्या चाहते हैं। फिलहाल मजाक था, एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

नायर साहब आपको कोई खीस दिखा रहे तो आप उसे अपनी 32 ही दिखा दीजिए, 32 दांत देख के डर जाएगा। हाँ, क्योंकि 32 जो दांत वाले होते हैं वो जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है। अब बाकी आप समझ आ रहे हैं। एंजॉय द ट्रैक।

हाँ, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी हमारे देव प्रसाद जी की, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे हैं निरंकार मिश्रा जी की डिमांड, जो कि प्रोफेसर हैं भाई भवनान से, आचार्य नरेंद्र देव से। और चलिए फिर एंजॉय कर लेते हैं इस बहुत ही प्यारे से ओल्ड वर्जन वाले इस बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग को। भाई बचपन में मुझे ये गाना इतना पसंद था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। चलिए एंजॉय करते ना, फिर आप भी जान लीजिए कि कौन से गाने की हम बात कर रहे हैं आप सभी से। एंजॉय द ट्रैक।

जी हाँ निरंकार जी, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज फीडबैक हमें दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप तक हमारा आपका गाना मतलब पहुंच गया है। और इसके साथ में भाई नेक्स्ट डिमांड हम लेके आएंगे अपने प्यारे लिसनर जिनका नाम है, भाई बता देते हैं फटाफट से। हाँ जी, सुरेंद्र यादव जी का गौरा चौकी से, फिर धर्मेंद्र मोहन भारती जी होंगे, फिर सबलू सावंत जी होंगे, रईस जी होंगे और फिर हमारे प्रमुख जी होंगे जो कि दरक्षा जी के लिए गाना भेजा गया है। हाय हाय हाय, क्या बात है।

भाई जब घड़ी देखती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों इतना खुन्नस आती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 3:48 क्या केवल 12 मिनट, मतलब क्या नाइंसाफी होती है। जब मैं पूरी तरह से माहौल क्रिएट होता है तभी शो समाप्ति की घोषणा करना पड़ जाता है हमको। खैर कोई बात नहीं, अभी 12 मिनट है हमारे पास में, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और डिमांड हमारे प्यारे सुरेंद्र यादव जी की है गौरा चौकी से, और इसके बाद में नेक्स्ट डिमांड धर्मेंद्र जी आपकी।

क्या बात है भाई, भाई बहन के रिश्ते को याद दिला दिया आपने, हमारे क्या बोले दुखती और रख पे हाथ रख दिया है, बस यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी सी डिमांड थी भाई। सावन आ रहा है, राखी भी आने वाली है, और एंजॉय करिएगा हर एक त्यौहार को, बहुत खुशियों के साथ आप सभी का जीवन बीते, यही दुआ है हमारी ओर से। और हमारे प्यारा ज्ञानस्थली परिवार जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड है, और इस डिमांड के बाद हम आएंगे लेकर के नेक्स्ट डिमांड अपनी सबलू जी की, और देन हमारे रईस साहब होंगे।

बड़ी प्यारी सी डिमांड चली है भाई हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की भी, सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही प्यारे होते हैं और एक सॉन्ग को ये दोबारा नहीं भेजते हैं, ये अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूंगी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक गाना अगर आप एक बार डिमांड करते हैं तो कोशिश क्या करिए कि उसको कम से कम एक महीने बाद ही दोबारा डिमांड करें। और एंजॉय करते इस ट्रैक को। और प्रेम मौर्या जी का फीडबैक आया हुआ है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने अपने टाइम को कंपनी वालों को भेज दिया। अच्छा,

क्या बात है, बहुत प्यारी डिमांड थी धर्महिंद जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये हमारे हैं प्यारे सबलू सावंत जी की डिमांड। देखते हैं आज अर्जुन पंडित से क्या सुनना चाहते हैं।

हैप्पी रक्षाबंधन बोला गया भाई सुरेंद्र जी की ओर से, आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं हैं और सारे भाइयों को मेरे, बहुत तरक्की करें आप सब अपने अपनी लाइफ में, चाहे कुमार साहब हो, प्रमुख जी हो या जो जहां से भी सुने, आप सभी के लिए। और दरक्षा जी का बताना भाई, सीतापुर में बारिश हो रही है, क्या बात है। और फिर एंजॉय करते हैं इसी सॉन्ग को, आगे क्या सोचना।

तो कदम कदम जा ही क्यों रहे हैं, सीधे पकड़िए रफ्तार और आगे बढ़ के अपने घर जाइए, इतना सोचना क्या। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे रईस जी की डिमांड है। फिर आते हैं प्रमुख जी की डिमांड के साथ में, जो कि दरक्षा जी को डेडिकेट है। और उसके बाद अशोक मिस्त्री जी आपकी डिमांड होगी। और इसी के साथ में मुझे लगता है वक्त खत्म हो जाएगा और आज की 3 से 4 डिमांड पेंडिंग रह जाएंगी। माई गॉड, मैं कितनी कोशिश करूँ रह ही जाता कुछ ना कुछ।

भाई कहावत सुना हमने, देर आए दुरुस्त है, लेकिन पंडित जी हमारे कभी नहीं सुधरेंगे। हमें लगता है कि उनको हमारा टोकना काफी अच्छा लगता है। राधे राधे कहाँ गए ये बताइए, वो वर्ड मुझे चाहिए आपके मैसेज में, एनी हाउ चाहिए, फिर से मैसेज करिए, हाँ तभी हम पढ़ेंगे। एंजॉय करते रहिए इस गाने को, और इस गाने के बाद हम बढ़ेंगे प्रमुख जी की डिमांड के साथ में, और आज की लास्ट डिमांड लेंगे अशोक मिस्त्री जी की, और जिन जिनकी डिमांड रह जाएंगी उनमें है हमारे उस्मान खान जी, अरमान जी, निशा जी और समरीन जी। तो भाई आज चार डिमांड रह जाएंगी, इसके लिए मैं माजरत चाहूंगी, माफीनामा जारी कर दिया।

ये रई साहब की रईसिया से निकाला हुआ बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था, मुखड़ा चांद का टुकड़ा। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं लवली सिंह जी आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। और अब बारी है हमारे प्रमुख जी के प्यारे से सॉन्ग की, जो कि डेडिकेशन में आई हमारे दरक शाह जी की। देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है और हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए।

आज की जो चार डिमांड छूटी है ना, दो डिमांड सैड सॉन्ग की थी, बहुत प्यारी थी, और दो डिमांड बहुत ही प्यारी थी। अरमान जी बहुत प्यारा सॉन्ग है, और उस्मान जी आपका भी सॉन्ग बहुत प्यारा है, और जो सैड सॉन्ग है ना वो भी दोनों बहुत प्यारे थे। तो मैं कल चाहूंगी आप चारों सेम सॉन्ग की डिमांड करिएगा, मैं जरूर सुनना और सभी को सुनाना चाहूंगी। फिलहाल ये गाना

बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड थी भाई। सॉन्ग सिलेक्शन आप लोगों के काफी अच्छे होते हैं और मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, एक गाना अगर एक दफा बजवा दे तो कम से कम एक महीने बाद ही उसको रिपीट करा करिए। कई दफा होता है एक ही गाने की आप लोग डिमांड करते हैं और मेरा दिमाग खराब हो जाता है, कारण ये मैं एक बात को दो बार नहीं बर्दाश्त कर सकती, गाने कैसे करूंगी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग की डिमांड होती है तो कई दफा मैं प्ले कर देती, कई दफा आप ही से चेंज भी करवा देती हूँ। अब बढ़ते हैं आज की लास्ट डिमांड की ओर, जो कि अशोक मिस्त्री जी के, जो मैं सुना है कनैलगंज गोंडा से, और वहाँ बारिश हो रही है और कह रहे हैं बड़ी प्यारी से मतलब समा बनी हुई है, हवाएं बड़ी सुंदर चल रही हैं। तो इसी सॉन्ग के साथ आज का शो वाइंड अप करती है। आपके अपनी आरजे आकांक्षा शो चल रहा था आपका फोन ही फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा, और ये गाना हमारे प्यारे भाई साहब इट्स कुमार जी के लिए। एंजॉय करिए और अब इजाजत दीजिए इस शो से। नेक्स्ट शो आपके लिए है आपका अपना ज्ञान असली बीट्स, जी हाँ, और उसमें आज है इमरान हाशमी स्पेशल। अब चलते हैं, कल जरूर आइएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे

0: बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आपका अपना शो जिसका नाम है गोधुली, यानी कि वो गोधुली जिसमें हम आते हैं और आपकी शाम को और ज्यादा हसीन और रंगीन है किसी अपने गेस्ट के साथ। मैं हूँ आरजे तन्वी और आपने मुझे अक्सर सुना होगा ज्ञानसी लाइव में, बट आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज गोधुली में आए हैं एक बहुत ही खास मेहमान हमारे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परिंदों की तरह होते हैं, जो कि अपने घोंसलों से निकलते हैं और फिर उड़ जाते हैं और कभी वापस नहीं आते, पर उन्हीं में से कुछ ऐसे नायाब हीरे होते हैं जो जहां से उठते हैं जरूर लौटकर वहां आते हैं उस जगह का एहसान चुकाने, यानी कि हमेशा हमेशा कृतज्ञ महसूस करते हैं उस जगह के लिए जिन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बनाया कि वो पूरे देश में पूरे विश्व में कहीं भी जाएं तो अपनी एक अलग जगह बना। ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ हैं जो जुड़ने आए हैं वापस अपनी ही जड़ों से। हमारे साथ हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि हैं अरबिंदो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर, और उनका नाम है मिस्टर पुष्कर पांडे। वेलकम सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद, और उससे भी बढ़के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नारी ज्ञानस्थली परिवार का, आपने मुझे यहाँ अवसर दिया बोलने का और अपनी बात रखने का, और जो भी आपने मुझे जिस भी शब्दों से संबोधित किया मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका भी और न्यारी ज्ञानस्थली परिवार का और आपके इस बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव का जिसका नाम है ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा भी एक स्पेशल, आपने बहुत अच्छे से हमें डिफाइन किया 89.6 FM को। ये डेफिनेटली देवीपाटन मंडल का गोंडा शहर का पहला FM है और हम हमेशा इंतजार करते हैं आप जैसे ऐसे गेस्ट का जो कि जहां से गए थे वहां एक बार जरूर वापस आए एक बदलाव के लिए। तो आज आपको हम इनवाइट किया है हमने यहाँ पे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी और कैसा रहा आपका सफर गोंडा से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गेस्ट लेक्चरर।
2: देखिए, ये शुरुआत गोंडा से हुई, गोंडा जन्म स्थान रहा है, गोंडा मेरी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो गोंडा की हुई, और गोंडा में भी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वो है बेलसर। तो वहाँ पे एक विद्यालय है, कॉलेज है सरकारी, महाराजा देवी बॉक्सिंग इंटर कॉलेज। तो मेरी क्लास 12 तक की पढ़ाई वहाँ से हुई
1: जी,
2: और ये यूपी बोर्ड की पढ़ाई थी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो था वो, मेरी रुचि जो थी वो राजनीतिक विज्ञान या कला के क्षेत्रों में ज़्यादा थी, तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया उसके बाद बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। और उसके बाद फिर चूँकि एक दिल्ली का एक अनुभव हुआ 3 सालों में, और दिल्ली में और भी जो अभी आपकी कन्वर्सेशन में बातचीत में आगे बातें आएंगी और भी अनुभव हुए, तो ये एक ज़रूरत महसूस हुई कि अगर मैं आगे की पढ़ाई करूं तो वापस मैं वहीं से उसी राज्य में लौट के करूं जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूं
1: जी,
2: ताकि मैं अपनी पढ़ाई को और अपनी जगह की वस्तु स्थिति को, इन दोनों को मैं साथ में समझ सकूँ। इसलिए मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी मेरा मास्टर्स है वो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने अप्लाई किया गेस्ट लेक्चरर के लिए, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी मैं वहाँ के श्री अरबिंदो कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। बहुत मुश्किल होता है गोंडा जैसे शहर से यूपी बोर्ड से पढ़कर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में एक प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ दाखिला लेना ही इतना मुश्किल है, वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपकी नियुक्ति एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम आपको इसके लिए तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे।
2: बहुत धन्यवाद।
1: हाल फिलहाल आपने एक बहुत बेहतरीन काम किया है, और वो ये कि आपने गोंडा में जो छात्राएं हैं उनमें से कुछ छात्राओं को एक इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के माध्यम से एक अवसर दिया है अनुसंधान का। तो मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगी, और ये अवसर यू थिंक नाम के अंडर उनको मिला है। तो क्या है यू थिंक, कैसे है आपसे यू थिंक का संबंध, आपका और यू थिंक का क्या नाता है, और क्या है ये अवसर जो गोंडा में छात्राओं को अनुसंधान के क्षेत्र में यूथ इंग द्वारा प्रदान किया गया है।
2: अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जब 3 साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, तो उस पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविज्म का काम था, यानी कि पढ़ाई को हम किस और किताबों के सिवा और कैसे खोजें, उसके बारे में कैसे सीखें, तो ये मेरे ग्रेजुएशन के तीसरे यानी अंतिम वर्ष की बात है। और हम सारे कुछ दोस्त थे, मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, और हमने तय किया हम एक ऐसा रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम कोई भी चीज़ जो हमें समझ में नहीं आती, ये बिल्कुल मैं आपको इनिशियल थॉट्स यानी कच्चा जो विचार था इस सारी शुरुआत का वो बता रहा हूँ, तो उसको हम समझेंगे और समझाएंगे एक दूसरे को। ये वहाँ से शुरुआत हुई द यूथ इंग की, और ये साल 2020 था, ये मेरे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, वहाँ से शुरुआत हुई। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारी जो संरचना थी वो और ही मूर्त रूप लेती गई, और जो एक छोटा सा विचार होता है, एक अंकुर होता है, एक बीज होता है, और जैसे जैसे समय बीतता है वो एक वृक्ष में परिवर्तित होता जाता है। तो जो हम सीखने पढ़ने के लिए या किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही उसको समझाने के लिए जो हम काम कर रहे थे, उसको हमने कब संरचना में डाला, और हमने कहा कि अब हम ये एक शोध का मंच बनाएंगे। और वो शोध का मंच हमारा दो चीज़ों पर आधारित होगा। पहला कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं क्या वो सही है, सही शिक्षा, यानी जिसको हम अपने मोटिव के रूप में लेते हैं। द यू थिंक के दो ही मिशन्स हैं, एक है ट्रू एजुकेशन यानी सही शिक्षा, शिक्षा ऐसी जो केवल किताबों की ना हो बल्कि वास्तविक दुनिया की हो, और दूसरा रिसर्च फॉर मासेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि हम शोध करेंगे आम जन के लिए, यानी जो आम जन समस्याएं फेस करते हैं, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, हम छात्र हैं तो भी हम उसी समाज का हिस्सा हैं, और अगर हम छात्र नहीं है, हमारी पढ़ाई संपूर्ण हो जाती है, तो भी हम उस समाज का हिस्सा हैं।
1: बिल्कुल, समाज से हम टूट नहीं सकते।
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं टूट सकते, और वही विचार है गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यानी समाज को, आप उसी समाज से बिलोंग करते हैं तो आप कुछ ना कुछ आपका दायित्व है, कुछ ना कुछ आपका कर्तव्य है, आप उसको लौटा के देते हैं। तो ये सही शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनको लें, उनके अराउंड अपने विचार बनाएं, जो भी समस्या है उसका हम अध्ययन करें, और उसका कोई ना कोई एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा सोल्यूशन, एक अच्छा हल उस समाज को प्रदान करें।
1: जी, बहुत ही बेहतरीन। तो यानी कि यूथिंग के पीछे जो मोटिवेशन था वो तो आपने हमें बताया है कि किस तरह से आपने यूथिंग के बारे में सोचा, और क्या इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि समाज को वापस दिया जाए, गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, यानी कि जिस समाज से आप आए हैं उसी समाज को वापस दिया जाए। और वापस देने का सबसे पहला जो मैं भी समझती हूँ स्टेप, वो यही होता है कि अनुसंधान।
2: जी।
1: समाज की पहले असली चित्र जो है, एक असली अवस्था सामने आए, और उसमें किस किस चीजों की त्रुटि है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, वो सब हमारे सामने आए ताकि उस पे एक अच्छा काम हो सके। यहाँ तक कि सरकार भी जब कोई भी पॉलिसी बनाती है तो सबसे पहले उसमें अनुसंधान का को बहुत प्राथमिकता देती है, और काफी रिसर्चर्स को हायर किया जाता है।
2: जी।
1: तो यहाँ जो गोंडा शहर में बच्चियों को आपने ये अवसर दिया है, तो ये अवसर का लाभ उन्होंने कैसे उठाना शुरू किया, यानी कि कैसे इन लड़कियों को चुना गया? कुछ छात्राएं चुनी गई हैं एनजीएम नारी ज्ञान असली महाविद्यालय कॉलेज से भी, और कुछ छात्राएं चुनी गई हैं लाल एलबीएस कॉलेज से भी, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से भी।
2: जी।
1: तो कैसे उनको चुना गया, मतलब क्या प्रोसीजर था, और क्या उनका अनुसंधान रहेगा?
2: इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने रिसर्च प्रोजेक्ट जो गोंडा में चल रहा है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगा।
1: जी।
2: रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारा है उसका जो विषय है वो है एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाई रूरल गर्ल्स इन देयर एजुकेशनल एंड करियर जर्नी। मैं इसको हिंदी में कहूँ तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, उनको अपनी शैक्षिक यात्रा में और अपने करियर बनाने की यात्रा में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम उसको अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी हम पढ़ाई यहाँ पे करना चाहते हैं।
1: जी।
2: तो ये जो विचार बना, तो ये शोध गोंडा में हो, जैसा आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि लौट के आना, यहाँ काम करना, यही हमेशा विचार रहा था। क्योंकि इसके पूर्व में जब ग्रेजुएशन के दौरान, मेरे ग्रेजुएशन के बाद यूं कहा जाए, मैंने जब मेरा एसोसिएशन था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ, तो रिसर्च वर्क में लगभग पूरा इंडिया ट्रेवल करने का एक मौका मिला, और ग्राउंड रिसर्च करने का मौका मिला, हर एक राज्य में ये जानने का मौका मिला कि कहाँ पे कितनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, कितने अच्छे काम हो रहे हैं। और फिर घर लौट के आने की वही बात होती है कि हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, वही मोटिवेशन था कि यहाँ पे ये किया जाए। तो दूसरी बात ये आई जो आपने रिसर्च टीम के बारे में कहा कि ये सिलेक्शन कैसे हुआ, तो जब हम यहाँ का एक अपना प्लान बना रहे थे कि योजना बना रहे थे कि हम अध्ययन कैसे करेंगे गोंडा में, तो उसके लिए दो विचार हमारे सामने थे जो हमारी टीम थी। एक विचार ये था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम है, जो अभी टीम हमारी काम कर रही है द यूथ इंग की जो कोर टीम है, वो यहाँ पे आए, यहाँ की सोशल सेटिंग में बैठे, और यहाँ पे वो अपना अध्ययन करे और सारी स्टडीज करे और उसका एक रिपोर्ट लेकर के आए। दूसरा विचार एक भी हमारा आया कि जहाँ की समस्या है क्यों ना हल भी वहाँ के लोग ही निकालें।
1: जी।
2: और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के छात्राओं को, वहाँ के छात्रों को भी इसका मौका मिले कि वो रिसर्च टीम का हिस्सा बन सकें।
1: जी।
2: वो रिसर्च स्किल्स सीख सकें और अपने आसपास वो जो घटित होती समस्याएं देखते हैं उसका सलूशन, उसका हल वो स्वयं से निकालें। तो ये प्रोसेस था, उसके लिए हमने नारी ज्ञान स्थली बहुत, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हमेशा रहूँगा क्योंकि ये मेरा पहला काम है और मेरी इनिशिएटिव का पहला काम है मेरे ज़िले में, और जो पहला कॉलेज जहाँ मैं बात करने आया कि मुझे ये काम यहाँ पे करना है और यहाँ से कुछ छात्राएं मुझे रिसर्च इंटर्नशिप के लिए चाहिए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रिसीव किया गया, बहुत अच्छा मंच दिया गया हमें, और फिर जो छात्राएं हैं उन तक जो संवाद पहुंचाना था कि एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें एक टीम की ज़रूरत है, वो टीम जो कि रिसर्च मेथोलॉजी सीख करके, रिसर्च की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, सारी स्किल्स हैं, सारे कौशल को सीख करके और फिर रिसर्च करेगी, हमने आके यहाँ बताया, हमें मंच मिला और फिर यहाँ से हमने चार बच्चों को अभी सेलेक्ट किया। अगर मैं नाम लूँ तो सौम्या दुबे, नयन श्रीवास्तव, वंदना मिश्रा और गौसिया सुल्ताना। आप प्रोसेस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि ये इसका प्रोसेस क्या रहा, कैसे ये यहाँ तक आए।
1: जी बिल्कुल, बात करेंगे प्रोसेस के बारे में भी, पर पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी उन सभी छात्राओं को जिनको ये मौका मिला है, और सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी आपको क्योंकि आपकी जो ये पूरी सोच है जिसका आपने वर्णन किया है ये बहुत ही अद्भुत है, और एक छोटे से बीज की तरह ये शुरू हुई, जैसे कि आपको लगा कि एक आपको ये लगा कि ऐसे सवालों के जवाब ढूंढे जाएं जो कि समाज में जरूरी हैं, और जब इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं तो क्यों ना वहीं से शुरुआत की जाए जहां से हमने शुरू किया था। तो चलिए इस पे और आगे बिल्कुल बात करेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं गोधुली में आपके और हमारे शो में, जिसमें आए हैं हमारे आज स्पेशल गेस्ट जो कि हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रवक्ता और पॉल साइंस के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो इनसे बात को आगे बढ़ाएंगे, पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर वापस आते हैं। सुनते रहिए आपका अपना शो जिसका नाम है गोधुली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन पे। हम आएंगे बहुत ही जल्दी लौटकर और बात करेंगे पुष्कर जी से और ज्यादा इन बातों के बारे में, अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में, और क्या क्या अवसर यू थिंक लेकर आया है गोंडा में उन छात्र छात्राओं के लिए जो अनुसंधान के लिए बहुत ज्यादा तत्पर हैं और अनुसंधान में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: हेलो लिसनर्स एंड वेलकम बैक टू 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन पे। शाम का समय है और इस खूबसूरत शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए जुड़ी हूँ मैं आपसे के साथ RJ तन्वी, पहली बार आपके इस खूबसूरत से शो में, जिसका नाम है गोधुली। तो हमारे साथ है हमारे गेस्ट मिस्टर पुष्कर पांडे, और पुष्कर जी से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उनका सफर रहा है गोंडा से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रवक्ता का। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक गेस्ट लेक्चरर हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स उन्होंने किया, पॉल साइंस ग्रेजुएट हैं और पॉल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं BHU से। तो दो देश की सर्वप्रसिद्ध और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो वापस आए गोंडा में। गोंडा में आके उन्होंने अनुसंधान का एक नया सफर शुरू किया, यूथ इंक, जिसके वो को फाउंडर भी हैं, उसके बैनर के तले उन्होंने कुछ छात्राओं को गोंडा में एक अवसर दिया अनुसंधान का। तो हम बात करते हैं सर से और पूछते हैं कि किस प्रकार इन छात्राओं को ये सुनहरा अवसर मिला कि वो अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डेज में ही अनुसंधान के क्षेत्र में अपना हाथ आजमा सकें।
4: जी, प्रोसेस की जो बात है कि हमने रिसर्च प्रोजेक्ट जब डिजाइन किया, तो मैंने आपको बताया और हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि दो रास्ते थे। एक, जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम है, यानी जिस टीम के साथ हम हमेशा से काम करते आए हैं, जो हमारी कोर टीम है, हम उसको यहाँ लेकर आएँ, यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों में वो काम करें। दूसरा ये था कि जहाँ पे ये कार्य है वहाँ के लोग ही करें तो बेहतर है, जिनकी समस्याएं हैं वो इनको बेहतर समझते हैं और उनका हल भी वो बेहतर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम जो हमने शुरू किया, उसका उद्देश्य भी यही था कि हम एक टीम का निर्माण कर पाएं जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट में आकर शोध कार्य कर सकें। उसके लिए हमने एक प्रोसेस अपनाया। वो प्रोसेस हमने ऐसा रखा कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र या छात्रा जो या तो ग्रेजुएशन की हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, और या यहाँ पे PhD का कोई शोध कार्य कर रही हो, PhD में एनरोल्ड हो, वो इसमें अप्लाई कर सकती है। और हमने एक लिमिट रख दी कि ये गोंडा की ही होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते थे कि वो जो अवसर मिले वो गोंडा के ही बच्चों को मिले, और चूंकि गोंडा में ही हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है सो इनके लिए कम्फर्टेबल भी रहेगा कि वो गोंडा की ही सेटिंग में सारा काम कर पाए। दूसरा जो हमने रखा, उसमें हमने दो योग्यताएं रखी जो मुझे लगता है मुझे इस प्रोग्राम के थ्रू बताना भी चाहिए आपके लिसनर्स को, कि अगर कोई भी इससे जुड़ना चाहे तो ऐसी दो योग्यताएं हमने कही। एक तो पहले कि हमें एक जो भी इसमें कार्य करना चाहता है उसको भाषा की एक बेसिक सी एक मूल समझ हो, और जब मैं भाषा कह रहा हूं तो उसका अर्थ ये है कि हिंदी या इंग्लिश, कोई एक भाषा उसको अच्छे से आए। और हम थोड़ा प्रेफर करते हैं, हम इसको थोड़ा ज़्यादा मानते हैं कि अगर उसको अंग्रेजी की एक बहुत ही मूल, हम ये नहीं कहते कि उसको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं, एक बिल्कुल मूल समझो, मूल शब्दों के अर्थ पता हो, तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, हम उसको प्राथमिकता देते हैं कि वो हमारी टीम में आए। और दूसरी हमने एक चीज़ ये रखी थी कि कंप्यूटर नॉलेज, जो अभी मैं NGM विजिट कर रहा था तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की लगी वो ये था कि यहाँ पे CCC कोर्सेज जो हैं, कंप्यूटर कोर्स जो कराया जाता है वो ऑफर किया जाता है बच्चों को, और जो कि बाहर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं, एक संस्थान यहाँ पे ऑफर करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एक बेसिक कंप्यूटर की समझ हो, क्योंकि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो ये दो चीज़ें, दो योग्यताएं हम सीख करते हैं कि हमें लगता है कि जो दो चीज़ें होंगी तो हम इनके साथ ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज़ एक ये थी कि हमने इसके अलावा रिसर्च से संबंधित हमने कोई योग्यता नहीं मांगी उनसे, और हमने रिसर्च प्रोजेक्ट का जो हमारा टॉपिक है, यानी रूरल गर्ल्स जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं जो शैक्षिक और करियर में अपनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उससे संबंधित हमने कोई भी जानकारी हमने ऐसा नहीं किया कि इसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। उसका कारण यही है कि अगर हम एक बेसिक समझ वाले बच्चे को लेकर के आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा टॉपिक है और ये जो हमारा रिसर्च मेथोलॉजी है किस तरह से काम करना है, हम ये उसको ट्रेनिंग खुद से देंगे कि हम उसको पहले टॉपिक का समझाएंगे कि ये विषय है, इस विषय पे हमने किस तरह से हम इस विषय तक पहुंचे, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या कारण है इसके कि हम गोंडा में काम करने आए हैं, और दूसरा हमें काम किस तरह से करना है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की ट्रेनिंग क्लासेस हम भी देते हैं, और उन सारे बच्चों को जो इन दो योग्यताओं में खुद को बहुत काबिल पाते हैं, उन्होंने अप्लाई किया और उन्हीं में से इस नारी ज्ञान स्थली परिवार की 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, जिनका नाम मैंने अभी जिक्र किया
3: जी।
4: और उनकी अभी तत्काल अगर मैं बताऊं तो उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें वो रिसर्च कैसे की जाती है, जमीन पे उतर कर डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरव्यूज लेते हैं, और इससे संबंधित जो भी बातें। अब जब मैं इंटरव्यूज की बात करता हूं तो इंटरव्यूज वो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों का भी होगा, वो पब्लिक जो हमारे अधिकारी हैं उनका भी होगा, वो शिक्षकों का भी होगा, वो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका भी होगा। तो एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें उतर के वो काम,
3: यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको, वो उन सबके साथ इंटरव्यू उनका होगा
4: जी।
3: एक तरह से साक्षात्कार सबके साथ
4: जी,
3: होगा
4: जी।
3: तो आपने LBS से भी कुछ छात्राओं को ये मौका दिया है शायद
4: जी। 2 छात्राओं को हमने LBS से सेलेक्ट किया था और वो अभी भी हमारे साथ हैं, और NGM से 4। तो अभी हमारी जो कुल टीम है 6 की है
3: जी,
4: और अभी इसके में कोई रोक नहीं है कि हम 6 को ही लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा रिसर्च का प्लान है वो गोंडा जिले में है
3: जी।
4: गोंडा जिला यानी कि लगभग 16 ब्लॉक गोंडा जिले में है और 4 सब डिविजन्स। तो हमारा उद्देश्य है कि हम गोंडा में पूरा गोंडा विजिट करें, 16 ब्लॉक्स में विजिट करें। उसके लिए हम कम से कम 12 से 15 की टीम रखना चाहते हैं। तो अभी भी स्लॉट्स ओपन है, अभी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो इस जिस रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं और खुद को स्किलफुल बना सकते हैं, खुद को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, खुद को साहसी बना सकते हैं, और खुद को समाज के लिए जो शिक्षा वो ले रहे हैं उसको समाज के लिए भी कुछ काम में ला सकते हैं।
3: बहुत ही बेहतरीन सोच और बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव। तो अगर और छात्राएं आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहें, इस अनुसंधान का जो क्षेत्र है उससे जुड़ना चाहें, यूथ इंक के साथ जुड़ना चाहें, तो क्या वो अभी जुड़ सकती हैं और कैसे?
4: जी बिल्कुल जुड़ सकती हैं। उनको बस एक ही कार्य करना होगा, वो ये है कि वो जिस भी कॉलेज में पढ़ती हैं उस कॉलेज में, हमने लगभग गोंडा के जो प्रोमिनेंट सारे कॉलेजेस हैं हमने उनको कॉन्टैक्ट किया है, हमने उसमें अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजी हैं, और हमने उसमें जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है जिसके थ्रू वो इंटर्नशिप में अपने खुद को रजिस्टर कर सकते हैं वो भी भेजा है हमने, और लगभग हर कॉलेज को हमने कॉन्टैक्ट किया है। तो उनको काम बस एक ही करना है कि जो भी हमने डिटेल्स भेजी हैं उस पर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उन पर बात कर सकती हैं, जो भी हमने डिटेल्स भेजी हैं उस पर रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपके पार्ट का काम है। द मोमेंट यू रजिस्टर, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जब आप अपना नाम दर्ज कर देते हैं, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। हम आपको संपर्क करेंगे और हम देखेंगे अगर आप योग्य हैं तो हम आपको अपने साथ लेकर आएंगे और हम ये शोध का कार्य साथ में करेंगे।
3: बहुत अच्छा, यानी कि अभी भी इट्स ओपन
4: जी,
3: यानी कि अभी भी और कॉलेजेस के छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं दोनों, या फिर सिर्फ छात्राएं?
4: देखिए आरंभ में हमने ये सोचा था कि हम छात्र और छात्राओं दोनों को लेकर चलेंगे। एक ये बात हमारे साथ रही कि चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का काम है और ग्रामीण क्षेत्र की भी लड़कियों के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं, तो जो हमें एप्लीकेशंस आया, जो हमने सिलेक्शंस किए, वो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के ही हुए। तो ये भी एक बड़ी देखने वाली बात हमें लगी और बहुत ही उत्साहित करने वाली बात लगी कि जो हम सोच कर आए थे कि जिनकी समस्या वही हल करें, हम उसमें बस एक कैटलिस्ट यानी हमें उत्प्रेरक बने रहना चाहते हैं
3: जी, जी।
4: तो वही हुआ भी, और अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ लड़कियां जुड़ती हैं तो लड़कियों को ही हम लेकर के आगे चलना चाहते हैं अभी
3: जी। यानी कि क्योंकि

0: प्रोग्राम के माध्यम से ये बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके बेनिफिट्स यानी इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तीन इसके बेसिक लाभ देख सकते हैं। पहला कि जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी में बच्चा है उसको अकादमिक रूप से एकेडमिकली बहुत लाभ होगा। उसका कारण ये है कि अगर आप नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के एरिया में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी के एरिया में जाना है, तो आपको वही रिसर्च मेथोलॉजी पढ़नी होगी जो रिसर्च अभी आप यहाँ करने जा रहे हैं। तो आप जो करेंगे उससे बहुत बेहतर सीखेंगे। एकेडमिकली मैं दूसरी बात कहूँ तो एकेडमिक्स में दो चीज़ें बहुत मूल होती हैं, वो दोनों चीज़ें होती हैं पढ़ना और लिखना। और कई बार हम ये देखते हैं कि शिक्षा का जो हमारा स्तर है वो कई बार ग्रेड्स यानी हमारी क्लासेस ऊपर चली जाती हैं, पर कई बार हम बहुत बेसिक अपनी स्किल्स लैक कर देते हैं, उसमें है पढ़ना और लिखना। तो जब आप रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं तो आप पढ़ते भी बहुत हैं और आप उस पढ़ने के बाद जाँच करते हैं, शोध करते हैं, आप सर्वेज करते हैं और आप फिर लिखने बैठते हैं। तो ये जो पढ़ाई और लिखाई का जो बिल्कुल बेसिक काम है वो अगर आप नेट जीआरएफ या पीएचडी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो ये रिसर्च प्रोजेक्ट आपकी बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं अंत में ये पीएचडी का ही, आप यूं समझ लें पीएचडी का ही कार्य हुआ।
1: जी जी, ये एक प्री पीएचडी प्रिपरेशन एक तरह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसका बहुत इस तरह से भी फायदा होगा, लाभ होगा कि कल को जब वो पीएचडी के लिए कहीं अप्लाई करेंगे तो उनको वरीयता भी दी जाएगी।
0: जी बिल्कुल, जब वो इंटरव्यू में बैठेंगे और उनसे पूछा जाएगा, रिसर्च के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, उनके विषय के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, तो वो बिल्कुल प्राउडली बता सकते हैं कि उनको पूर्व अनुभव है।
1: जी,
0: एक तो ये बात है कि एकेडमिकली बहुत फायदा है, दूसरा सामाजिक रूप से बहुत फायदा है। हम जब गोंडा जैसे जिले की बात करते हैं, ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक पिछड़ा जिला माना गया और आज वो अपने पिछड़ेपन के दाग को बहुत मेहनत से और बहुत बहुत लोगों के सार्थक योगदान से और जैसा ये प्रोग्राम है, जैसा इंस्टीट्यूशन से, वहाँ के शिक्षकों के द्वारा, शिक्षिकाओं के द्वारा, वो इस दाग को धुल रहा है।
1: जी।
0: तो उस बहती हुई गंगा में सामाजिक रूप से अगर कोई छात्र या छात्रा सक्रिय होती है, पर्टिकुलरली मैं छात्राओं की बात कर रहा हूँ, वो सक्रिय होती है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। सामाजिक रूप से सोशली कैसे बेनिफिशियल है, पहली बात ये है कि जीने के लिए कुछ कौशल की ज़रूरत होती है, कुछ लाइफ स्किल्स की ज़रूरत होती है। आप अपनी बात कह सकते हैं क्या? आप समाज में आम तौर पर साहसपूर्ण या कॉन्फिडेंट रह सकते हैं क्या?
1: जी।
0: और इसी से जुड़ी, जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीखते हैं जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं, जब आप जमीन पे उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो हकीकत थी, जो अभी आप घर में थे या जो हकीकत आपने किताबों में पढ़ी, वो बहुत ही अलग थी। तो सामाजिक रूप से जब सक्रिय होते हैं आपको बहुत साहस मिलता है,
1: असलियत का सामना होता है, असलियत से सामना होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल वही बात कि असलियत जो दिखती है वो आपको बहुत बताती है, बहुत सिखाती है। तो किताबों की अपनी जगह है और किताबों में वही लिखा है जो लोगों ने जमीन पे देखा, जो असलियत में देखा। तो जब आप उसमें उतरते हैं तो आप खुद को कॉन्फिडेंट पाते हैं, आप अपनी बात रखने का तरीका सोच सीखते हैं, कन्वर्सेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और भविष्य में आप किसी भी जॉब में जाएं, किसी भी खुद के लिए कोई भी इंटरप्राइजेस क्यों ना चूज करें, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई स्टार्टअप क्यों ना चूज करें, कहीं भी आप जाएं आपको अपनी बात रखनी होगी, आपको साहसी पूर्ण तरीके से बात रखनी होगी, आपकी बातचीत का एक तरीका होगा। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बिना कोई फी पे किए, बिना कोई अलग से काम किए गए, ये आपको एक पैकेज के रूप में मिलती हैं।
1: जी।
0: तीसरा जो मैं कह रहा था वो है पर्सनल, एक बहुत बेनिफिट है इसका। पर्सनल बेनिफिट इस तरह से है कि कई बार हम खुद में इतने उलझे होते हैं अपने करियर को लेकर के, या अपने अंदर हम पाते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं बहुत डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ को लेकर इतना बहुत ओवर थिंक कर जाता हूँ, ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो जब आप ऐसी इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं तो आपको सबसे पहले, चूंकि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी का काम है, तो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अनुशासित होते हैं, आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो अनुशासित जीवन एक आपको मिलता है क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक वर्क से जुड़ रहे होते हैं। अनुशासन की कमी होती है जब हम जिम्मेदार नहीं होते। एक रिसर्च प्रोजेक्ट जिम्मेदारी का काम है, अनुशासन। तो व्यक्तिगत रूप से आपको अनुशासन का बहुत बड़ा लाभ मिलता है।
1: उसको पढ़ना है, फिर उसको क्रियान्वित करना है, साक्षात्कार करना है, साक्षात्कार से जो रिजल्ट आया है उसको फिर पूरा एक तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके फिर उससे रिजल्ट निकालना है।
0: राइट।
1: तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अनुशासन, बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत पढ़ना और लिखने की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: इस प्रोजेक्ट की अवधि क्या है, जिस प्रोजेक्ट के साथ छात्राएं आपके साथ जुड़ी हैं, यूथिंग के साथ, जो ये अभी गोंडा का आपका पहला प्रोजेक्ट है, इसकी अवधि क्या है?
0: ये हमने जो हमारी प्लानिंग थी वो हमने दिसंबर 2024 में कंप्लीट कर ली थी और ये प्रोजेक्ट जो हमारा शुरू हुआ वो जनवरी 2025

0: यानी नए साल से हमने इसका काम शुरू किया है। इसकी अवधि 6 मंथ्स की है और 6 मंथ्स की हमने कोई कैप नहीं रखा है, 6 मंथ्स एंड एक्सटेंडेड, बट हमारे ये प्रयास है कि हम 6 महीने में इस स्टडी को पूरी कंप्लीट कर लें। 6 यानी कि जो हमारा जून का महीना होगा और जो नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा यानी जुलाई, उसके पहले हम अपनी रिपोर्ट लेकर के आए, सो दैट जो नया शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है हम उस वक्त यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को और यहाँ के विद्यालय हैं उनको ले जाकर हम रिपोर्ट दे सकें, यहाँ के जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको ले जाकर दे सकें कि इस तरह की समस्याएं हैं, और अगर ये समस्याओं को अभी हम कुछ ना कुछ सोचते हैं तो जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं घट सकते हैं, जो ज्यादा अवसर हैं वो मिल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों।
1: बहुत ही बेहतरीन, यानी कि पूरी पिक्चर क्लियर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने सोचा एक रात में आपको थॉट आया और आप उठे और गोंडा आ गए और ये सब हुआ, तो पूरी पिक्चर क्लियर है
0: जी।
1: इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर वापस आते हैं गोधुली पे, इसी जगह पे आपके अनुसंधान के सफर को और आगे बढ़ाने। सुनते रहिए 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज की शाम है कुछ खास क्योंकि गोधुली में हमारे साथ खास मेहमान और आपकी आरजे तन्वी। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हम थोड़ी देर में फिर लौटेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
0: हेलो लिस्टनर्स एंड वेलकम बैक टू 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन पे पहली बार आरजे तन्वी आपके साथ शाम के समय गोधुली पे, क्योंकि हमारे गेस्ट ही हैं इतने खास। जब एकेडमिक्स की बात हो तो कैसे आरजे तन्वी नहीं होगी पिक्चर में, क्योंकि हमारा जो ज्ञानश्री लाइव है इट्स ऑल अबाउट इन्फोटेनमेंट। तो जहां भी होगा इन्फॉर्मेशन, वहां हम जोड़ देंगे टेनमेंट विद आरजे तन्वी। तो मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर पुष्कर पांडे, और पुष्कर जी के साथ हमारी एक अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई रिसर्च को लेकर, अनुसंधान को लेकर, और किस तरह से जिसके को फाउंडर है यू थिंक ने गोंडा की छात्राओं को मौका दिया कि वो अनुसंधान के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकें, यानी कि एक ऐसी रिसर्च कर सकें जिसको वो प्रशासनिक अधिकारियों के पटल पर रख सकें, और वो गोंडा के शहर में गोंडा की छात्राओं के द्वारा उन्हीं के गांव में बच्चियों से, लड़कियों से जो साक्षात्कार वो लेंगी, उसी के बेसिस पे जो अनुसंधान का रिजल्ट आएगा, उसी के तहत इस यूथिंक ऑर्गेनाइजेशन प्रशासनिक अधिकारियों को और बाकी स्टेक होल्डर्स को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, ये रिसर्च की कॉपी प्रोवाइड कराएंगे। तो बात करते हैं आगे हम अपने गेस्ट से, और उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हम जनरली देखें, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपने किया है, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं BHU से, और अब आप रिसर्च में आपने एक अपना खुद का थिंक टैंक यू थिंक बनाया है और बच्चियों को रिसर्च का मौका दिया है। तो रिसर्च एज अ करियर, यानी कि अगर हम अनुसंधान को एक करियर की तरह लें बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे रिसर्च को हम एक करियर की तरह बना सकते हैं और कितना अच्छा है ये करियर?
8: जी बिल्कुल, आमतौर पर जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमें लगता है एक बहुत स्टेटिक सा काम है, बैठ के करने वाला काम है, और इसमें करियर की बात PhD तक जाके खत्म हो जाती है कि आपकी PhD खत्म हो गई तो फिर आपका रिसर्च का करियर भी खत्म हो गया, और फिर हम बैक टू जॉब आ जाते हैं कि अब हमें जॉब करनी है। रिसर्च में जॉब कैसे हो सकती है, बहुत अच्छा विषय है, देखिए अभी जब हम बात कर रहे थे तो एक जिक्र आया उसमें कि जब भी सरकार जो भी होती है, जो भी काम करती है, वो भले स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कोई भी पॉलिसी स्कीम कोई योजना बनाती है तो सबसे पहले वो अनुसंधान का काम करती है, शोध का काम करती है। तो सरकारें जब ऐसा काम करती हैं, और हमें पता जब सरकारें काम करती हैं तो बहुत सारी क्षेत्रों में काम करती हैं, यानी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारी मिनिस्ट्रीज सारे डिपार्टमेंट्स ये शोध का काम करते हैं सो दैट वो कोई पॉलिसी या कोई नीति ला पाएं। उसके लिए वो हमेशा वैकेंसीज निकालते हैं, हमेशा एक रिसर्च टीम का निर्माण करते हैं। तो जो हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन में है, वो रिसर्च असिस्टेंट एक पोजीशन होती है रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। मैं अभी प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट जो इतनी भी इंडिया की हैं उनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो रिसर्च टीम का निर्माण करते हैं। तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं वो रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर सकते हैं या रिसर्च ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं या आप एलएलबी कर रहे हैं और आपका विषय है तो आप एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है वो रिसर्च ही है, आपको उसमें रिसर्च का ही काम करना होता है। और ये काम, ये एक जॉब होती है। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, और जब मैं अपने मास्टर्स में गया तो फर्स्ट ईयर इट वाज ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस थी। तो ऐसे ही एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जिसका मैं जिक्र कर रहा था जब मैं उसमें काम कर रहा था, तो एक रिसर्च असिस्टेंटशिप थी मेरी, वो उसमें मैंने ज्वाइन किया और इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जब मुझे पूरे देश का भ्रमण करने को मिला। और जब आप एक बिल्कुल नए उभरते हुए छात्र होते हैं और आपको पूरे देश का भ्रमण करने को मिलता है आपको, तो आपके लिए बहुत उत्साहित करने वाला काम होता है। और दूसरा, जब उसके साथ ही आपके जेब में पैसे भी आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये तो और भी अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया,
9: बहुत अच्छा।
8: तो रिसर्च में जब हम करियर की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, तो जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, हमें उनके जो भी छात्र छात्राएं इस प्रोग्राम को सुनते हैं या सुन रहे हैं, हमेशा उनको देखते रहना चाहिए कि वहां पे ऐसी रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं या नहीं आ रही। एक तो जो गवर्नमेंट की मैंने बात बताई, दूसरी ऐसी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो यही काम करते हैं और करवाते हैं। कई बार गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स उठा करके उस थिंक टैंक को दे देती है। जैसे गवर्नमेंट का जो सबसे प्राइमरी थिंक टैंक है, जो पॉलिसी या नीति से रिलेटेड सलाहें देता है, वो नीति आयोग है
9: जी।
8: नीति आयोग की हर महीने 1 से 10 तारीख तक वो एप्लीकेशंस लेते हैं रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, वो हर महीने होता है। आप हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आप इंटर्नशिप का एप्लीकेशन ओपन करें, जो टैब है वहां पे आप अप्लाई करें, और इस तरह से आप वहां के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। केवल इंटर्नशिप ही नहीं, रिसर्च के भी बहुत सारे पोजीशंस नीति आयोग में भी आते हैं। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा एसोसिएशन रहा है उसके साथ कुछ समय के लिए। इसके साथ ही और बहुत सारे दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में ऐसे बहुत सारे कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे आप अपनी पढ़ाई के साथ, अगर आपको रिसर्च में रुचि है, आप वहां से एसोसिएट हो सकते हैं, आपको अनुभव मिलता है और आपको नौकरी भी करने का अवसर मिलता है।
9: जी, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि किस तरह से अनुसंधान को एक करियर की तरह आप चुन सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये भय होता है कि पीएचडी के बाद भी पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और क्या अनुसंधान में कोई करियर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। पर आपने जिस तरह से बताया उससे पता चल रहा है कि ये बहुत ही अच्छा करियर है। इनफैक्ट जब आप किसी भी नीति आयोग के साथ या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आप इंटर्नशिप करेंगे तो उसको आगे जाके आप उसका बहुत लाभ उठा सकते हैं।
8: जी बिल्कुल,
9: यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट में भी उठा सकते हैं, साथ ही साथ किसी इंटरव्यू में भी उठा सकते हैं, तो ये इसका मतलब बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है।
8: जी बिल्कुल।
9: साथ ही साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यू थिंक और मिस्टर पुष्कर पांडे का क्या विजन है अनुसंधान के क्षेत्र में गोंडा के लोगों के लिए और गोंडा और देवीपाटन मंडल के लिए।
8: दुष्यंत कुमार एक कवि हुए और उनकी दो लाइनें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे कि ये माना अंधेरा बहुत घना है लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है।
9: जी, बहुत बहुत खूबसूरत।
8: जी, तो यहाँ पे जब हम इस सोशल सेटिंग में बात करते हैं, उस क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ के चैलेंजेस मुझे दिखाई देते हैं उतने क्लोजली जितने क्लोजली मुझे बाहर के नहीं दिखाई देते, तो मैं उसके लिए कुछ सोचता हूँ। जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ मैं नहीं, एक आम छात्र, एक आम छात्रा की बात कर रहा हूँ, आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको दिखता है इतने चैलेंजेस हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये दिक्कतें हैं, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, कई बार आप फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाते हैं, या कई बार अवसर की समानता नहीं है, जो अवसर आपको हैं अवसर किसी और को नहीं मिल पा रहे हैं, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता, और कई बार आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आपके पास गाइडेंस नहीं होती, आपके पास कोई मेंटोरशिप नहीं होती, कई बार आपके पास मेंटोरशिप गाइडेंस नहीं होती, और कई बार करियर आपको कहाँ जाना है आपको बहुत लिमिटेड रास्ते पता होते हैं। जैसे अभी हम रिसर्च की बात कर रहे थे, तो रिसर्च की क्षेत्र में जो जॉब्स हैं बहुत अननोन हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ भी काम हो सकता है
9: जी।
8: कई बार पोस्ट खाली चली जाती हैं, लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, द यूथिंग का जो विजन है या जो मेरा विजन है, पहली बात तो ये जो मेरा है वही यूथिंग का विजन है, मैं भी उसी संगठन का हिस्सा हूँ और मैं जो सोचता हूँ मैं उसी के माध्यम से करने का ट्राई करता हूँ।
9: आप उसके को-फाउंडर भी
8: हैं? जी, मैं उसका को-फाउंडर हूँ। तो मैं जो भी सोचता हूँ, मेरी कोर टीम है, उसके साथ बैठते हूँ, बात होती है और फिर हम एक फाइनलाइज करते हैं प्रोग्राम। देखिए, जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा या करियर के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं क्या है, उससे रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो हमने चार चीजें बेसिकली सोची कि जो हम तत्कालीन रूप से इस स्टडी के कंप्लीट होने के बाद, जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारी रिपोर्ट पब्लिश होगी, उसको हम विभिन्न लोगों को देने जाएंगे। दूसरा उस एक और महत्व है हमारे लिए, वो ये कि जो स्टडी रिपोर्ट हमारे आने वाली है उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी समस्या किस रूप में एक ग्रामीण लड़की को, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक्टिव है, जो पढ़ाई कर रही है, किस तरह से प्रभावित करती है। जब ये स्टडी हमारे पास आएगी तो उससे रिलेटेड हम मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं गोंडा जिले में। पहला काम हम ये करना चाहते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी अगर मैं कहूँ तो गोंडा जिले की ही वो लड़कियाँ जिन्होंने अपने दम पे संघर्ष करके अपना नाम बनाया, कोई नौकरी हासिल की या किसी भी क्षेत्र में उन्होंने खुद को स्थापित किया, वो आज मिसाल हैं। हम उनको एक मंच पे लाना चाहते हैं और उन्हीं के द्वारा हम उनको मेंटोरशिप दिलाना चाहते हैं जो जिनको ये अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इससे ये होगा कि वो उन्हीं को देखकर सीख पाएंगी कि वो उन्हीं के फ्रेटर्निटी का, उन्हीं के समाज का हिस्सा है, और चूंकि उनके समाज का हिस्सा है तो एक मोटिवेशन उनको बहुत अच्छा मिलेगा।
9: बिल्कुल, कि हम में से ही, हम में से कोई बीच का ही इतना सफल है और उसने भी इसी तरह के ऑब्स्टिकल्स को फेस किया, इसी तरह की चुनौतियों को फेस करते हुए भी वो सफलता की सीढ़ी चढ़ पाया, तो डेफिनेटली ये बहुत मोटिवेटिंग होता है
8: जी।
9: तो बहुत ही अच्छा आपका ख्याल है और बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, बहुत ही अच्छी आपकी इनिशिएटिव है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप 89.6 FM के साथ गोधुली में जुड़े और आगे भी आने वाले समय में हम ये आपसे आशा करेंगे कि आप 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन के साथ जुड़े और जो छात्र छात्राएं हमें सुन रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन्हें अनुसंधान के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में और इसी तरह से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के क्षेत्र में और न्यू इनसाइट्स उनको मिलते रहें और उन्हें ये पता चले कि करियर अनुसंधान में, रिसर्च में भी बनाया जा सकता है।
8: आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी और नारी ज्ञानस्थली परिवार का भी धन्यवाद।
9: थैंक यू सो मच। तो मैं, ये थे हमारे साथ मिस्टर पुष्कर पांडे और मैं थी RJ तन्वी, जो लेकर आई थी पहली बार आपके साथ शाम का शो गोधुली। और आज की शाम ऐसी थी जो सुहानी तो थी पर रूहानी भी थी। रूहानी इसलिए कि आपकी रूह को छूने वाली, कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी आप पैशनेटली अपना करियर बना सकते हैं। तो मत बैठिए शांत और हो जाइए तैयार एक नए अध्याय के लिए, जिसमें करियर की चुनौतियों को का सामना करते हुए या करियर की चुनौतियों की बाधाओं को पार करते हुए आप अनुसंधान के क्षेत्र में भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इस करियर में मेहनत है, एक डिसिप्लिन है, फोकस है, पर फाइनली इस करियर में भी जीत है। तो सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पे आपका अपना शो जिसका नाम है गोधुली। मैं हूँ RJ तन्वी, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
9: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
10: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
9: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
11: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: जब भी कुछ याद आए बढ़िया, जब भी गाने का मन हो कुछ, और जब भी कुछ लगे कि हाँ यार अब तो दिल कह रहा है कि जिंदगी भी अगर रिबूट हो जाती तो क्या मजा होता, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है,
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
0: बस इसी को ट्यून करना है। तो हाँ, अगर आपने ट्यून कर लिया तो बिल्कुल सही पते पे आप पहुंच गए हैं, क्योंकि आरजुबीना आपके साथ सीधे लाइव हो जाती है हर शाम 6 बजे आपकी धड़कनों को सुकून दिलाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे धड़कनों को सुकून कैसे मिलता है। अरे हाँ, किसी ने धड़कनों को सुना नहीं है, लेकिन धड़कनों को सुकून तब मिलता है ना जब सब कुछ अच्छा लगता है। और सब कुछ अच्छा कब लगता है, जब आप हमारे साथ लाइव होते हैं। फिलहाल का मौसम इतना यार अच्छा हो गया है यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे यहाँ चीज़ें देर में आती हैं लेकिन दुरुस्त आती हैं, बढ़िया आती हैं, मतलब मजा आ जाता है कुल मिला के। तो फिलहाल इस मजेदार शाम में सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, और स्वागत करने के साथ देखूँ कौन कौन जाग उठा है शाम वाली नींद से। तो शाम की नींद से उठ चुके हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोग बहुत सारा काम करके वापस घर को रुख कर चुके हैं। तो जिसने जहाँ जहाँ का भी रुख कर लिया, भाई एक कप चाय के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आज है आपका वाला दिन यानी कि अंताक्षरी वाला दिन। और आज टीम ए बी का होने वाला है जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि फर्स्ट राउंड ही होने वाला है आपका ट्विस्ट वाला राउंड। तो सबसे पहले इस म्यूजिकल जर्नी में हमारे साथ देने के लिए महक हैं, तमन्ना हैं, बड़े अलग अलग नाम के बड़े सारे लोग हैं, सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी जो कहते हैं ना कमर की पेटी जो है उसको बांध लीजिए, और अंताक्षरी खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। और अंताक्षरी के साथ मैं आपको बता दूँ आज की कुछ ताज़ा अपडेट्स, यानी कि आज की ताज़ा न्यूज़ जो है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ बढ़िया बढ़िया जो न्यूज़ है वो आपसे शेयर करूंगी। वैसे तो आजकल न्यूज़ भी ना एकदम मतलब नेगेटिव वाली ही चल रही है, कहीं पे कुछ अच्छा सुनने पढ़ने को मिल ही नहीं रहा है यार। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बढ़िया वाला ही आपको बताऊं। तो सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी वाली न्यूज़ बताती हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में दिमाग की बत्ती एकदम जल जाएगी, कि यानी कि अगर आपके घर में सप्लाई का पानी आता है तो सप्लाई का पानी आने के बाद आपके घर की टंकी जो है वो खुद ब खुद भर जाएगी। और ये एक स्पेशल गैजेट है, बार बार मोटर ऑन या ऑफ करने का आपको जो ये झंझट है उसको हटा देना पड़ेगा। यानी कि पानी की टंकी अगर है आपके पास तो मोटर लगना या ना लगना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मोटर चलाने के बाद हमको नींद आ जाती है और हमारा जो अलार्म है वो चिल्ला चिल्ला के बताता है पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद कर दें, तो ये हमारी नींद खराब कर देता है। इसके अलावा उठकर पानी बंद करना या फिर मोटर चलाना, ये दोनों ही मशक्क़त वाले काम होते हैं, और ख़ासतौर पे बारिश वाले सीज़न में कब लाइट चली जाए कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे आसान उपाय है आपके लिए, आपकी जो टंकी है उसको ऑटोमेट जो मोड पे कर देना, यानी कि पानी आते ही मोटर अपने आप चल जाएगी और टंकी भर जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली जो है वो मोटर जो है क्या कहते हैं बंद भी हो जाएगी। और कई घरों में ये परेशानी है कि मोटर चलाना और बंद करना एक मशक्कत का काम होता है, कई बार लोग एक दूसरे से इसी बात पे लड़ भी जाते हैं, यार तूने मोटर नहीं चलाई, टंकी नहीं भरी, आज पानी नहीं है। और पानी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, बहुत सारे बुद्धिजीवों ने बताया था कि आने वाले समय में ना पानी को लेकर युद्ध हो जाएगा, तो मुझे लगता है हो सकता है। तो आप इस झंझट से बचने के लिए एक ऑटोमेट वाटर लेवल कंट्रोलर आ चुका है, जिसे आप अपने टंकी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये डिवाइस पूरी तरह से प्रोसेस करके काम करता है। ये डिवाइस पानी की टंकी और मोटर के साथ लगाया जाता है, टंकी में सेंसर लग जाते हैं जो हर समय पानी का लेवल चेक करते रहते हैं। जब पानी टंकी में पानी कम हो जाता है तो कंट्रोलर मोटर को अपने आप चालू कर देता है, और फाइनली जो कंट्रोलर है वो अपने आप स्विच ऑफ भी कर लेता है। मतलब आपको चेक ही नहीं करना है टंकी भरी है कि नहीं भरी है, इस सेंसर के अंदर ये लेवल चेक करने वाला सिस्टम है, वो पानी चेक कर लेगा कितना है, कम है, ज्यादा है, वो अपने अकॉर्डिंग मोटर ऑन कर देगा और अपने आप जब टंकी भर जाएगी मोटर ऑफ कर देगा। मतलब आपको एक स्विच भी नहीं ऑन करना है, ना मजेदार गैजेट। तो इस गैजेट को आप लोग यूज करिए और फिर आरजे बीना को बताइए। और आप सोच रहे होंगे ना कि ये गैजेट तो बड़ा महंगा होगा, भाई 3,000 रुपये में लगभग आ जाता है, आप आराम से इसको मतलब यहाँ तो नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता गोंडा शहर में भी अवेलेबल होगा, या मुझे आइडिया नहीं है, अगर किसी का है मतलब इन सब का काम, मतलब ये पंप या सब जो वाटर सप्लायर्स हैं उनके पास अगर है कुछ, मतलब वाटर सप्लाई मीन्स जो वाटर से जुड़े सप्लाइंग गैजेट्स यूज, मतलब शॉप है जिनकी, उनके पास है तो जरा मुझे चैट रूम में ज़रूर बताएं। तो 3,000 की रेंज में है तो मुझे लगता है ये हमारे लिए यूज़फुल गैजेट है और मैं इसको तो ज़रूर लगाने वाली हूँ। मुझे आज ही पता चला, मैंने सोचा कि एक मज़ेदार न्यूज़ दे दूँ, हर वक्त नेगेटिव न्यूज़ सुनना अच्छा नहीं लगता यार। तो हाँ हाँ हाँ, और क्या बताऊँ आप लोग को, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन क्या बताऊँ, कुछ ऐसी भी न्यूज़ है जिनको सुनने के बाद दिल दहल सा जाने लगा है, ठीक है। सो बारिश हो ही रही है, बारिश की वजह से दिल्ली में रोहिणी जो एरिया है वहाँ पे एक जो बिल्डिंग है वो गिर गई है, और कहा जा रहा है कि उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से लग रहा है बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। और ये रोहिणी सेक्टर 16 में पड़ता है और एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो बारिश की वजह से गिर गई है।

जैसा कि मैंने बताया कि इस मतलब हादसे की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो मतलब कंट्रोल में नहीं है। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग दबे हैं, लेकिन अभी कौन कौन दबा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है। ठीक है, तो मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है और बड़ी मतलब दर्दनाक न्यूज़ है ये। तो हम लोग यहाँ से दुआएँ करेंगे कि वहाँ लोग जो हैं वो किसी भी तरह के किसी मतलब समस्या में ना हो और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू का काम कर लिया जाए और लोगों को बचा लिया जाए। तो पानी, बारिश हो रही है, आसपास आपके भी कोई ऐसा मतलब जर्जर बिल्डिंग है तो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखें, और हो सके तो घर में भी ऐसी चीज़ों को मतलब आप थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर रहें कि बारिश का मौसम है तो कोई चीज़ नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ आप लोग जान के थोड़ा मज़ा ही आ गया होगा, लेकिन चलिए मतलब ये पानी की टंकी वाली, लेकिन ये बारिश वाला जो था ये सीन तो भाई बहुत ही मुश्किलात भरा है। जब कहीं कोई ऐसा हादसा होता है तो हमें बहुत डर लगता है और हम सीधे अपने आसपास के एरिया को मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज़ करने लगते हैं कि यार हमारे आसपास ऐसी कोई बिल्डिंग तो नहीं है। तो चलिए सुनते हैं एक बारिश स्पेशल मॉनसून मिक्स सॉन्ग जो कि हमारी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सो लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक और फटाफट से जादू की जो कहते हैं ना कि एनर्जी वाली चाय पी के आ जाइए और अंताक्षरी खेलने के लिए तैयार हो जाइए।

बादलों ने आज फिर एक साजिश की है और हमें एक बेहतरीन शाम देने की गुजारिश की है। आप बताइए, क्या आप इस शाम के साथ गवाह बनना चाहते हैं, एक प्यार भरे एहसास को महसूस करने के? तो बिल्कुल, आपके साथ आरजे बीना भी है, क्योंकि अंबर से बारिश गिरे या ना गिरे, लेकिन यहाँ आपके अपने रेडियो स्टेशन से आरजे बीना आपके पसंद के गानों के साथ आपकी फरमाइश को लेके ज़रूर आती है। तो ये बताइए, तो आपकी फरमाइश सुनने के लिए क्या हम आपके साथ जुड़ सकते हैं? डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो फटाफट से आप लोग फरमाइश तो करेंगे, लेकिन सवालों की फरमाइश तो करेंगे, अगले राउंड की फरमाइश तो करेंगे, अपनी अपनी टीम की। तो फटाफट से टीम ए और बी ज्वाइन कर लें। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ आज की शाम के गवाह बनने के लिए बादल आ चुके हैं, और मेरे साथ ये म्यूजिक भी आपके साथ, कहते हैं ना कि साथ निभा रहा है, तो साथ निभाना साथिया

सी सुनहरी सी चाय की चुस्की वाली, ठीक है। तो आज की शाम हम महक भी रही है गीली मिट्टी की खुशबू से, बादलों की सरगम से, बूंदों की रिमझिम से, यादों की नरम सी दस्तक से। कहते हैं बारिश सिर्फ आसमान से नहीं बरसती, कभी कभी ये हमारी यादों और ख्वाबों और एहसासों में भी उतर जाती है। वैसे मेरे साथ तो हमेशा ही होता, बारिश होते ही मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जो है ना वो सामने आ जाती हैं। किसी मौसम में ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों बारिश में हमारी मेमोरीज वापस से रीगेन हो जाती है। कुछ है इसके अंदर भी नॉस्टैल्जिया, क्या पता नहीं। फिलहाल के लिए आज की सुहानी शाम में बारिश के साथ मुस्कुराते हुए कुछ पुरानी यादों को चलिए ताज़ा करते हैं, कुछ नए सपनों को भी भिगोने की कोशिश करते हैं। कहते हैं बूंदों ने जब धरती को प्यार से छुआ, हर सूखी डाली ने फिर जीना सीख लिया, बारिश ने सिखाया एक खूबसूरत राज, ठहरना नहीं हर मौसम के बाद फिर खिलना सिखा दिया। तो ये बताइए आपकी सबसे यादगार बारिश कौन सी रही है? मतलब हमेशा से सबकी यादों में बारिश का एक किस्सा होता है, कोई शायद ही इक्का दुक्का होगा जो कहेगा मुझे बारिश नहीं पसंद है, पर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी बारिश का जो किस्सा है बड़ा मतलब पुराना सा है। मैं स्कूल से जब भी आती थी तो बारिश होने लगती थी, और अक्सर हम लोग क्या करते थे कि पूरे मतलब प्लानिंग से जाते थे कि स्कूल जाना है तो मतलब किसी तरह बचते बचाते जाना है, लेकिन बारिश वाले दिन ज़रूर स्कूल जाना है क्योंकि वापसी में हम लोग को रुक के समोसे खाने हैं और भीगते हुए घर आना है। और कई बार तो ये होता था कि जैसे अगले दिन इम्पॉर्टेंट स्कूल में काम है तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक ड्रेस रखते थे साथ में, और उस ड्रेस को हम लोग क्या करते थे स्कूल में ही रुक के चेंज कर लेते थे, टीचर से पूछ लेते थे, और घर में घर के कपड़े पहन के साइकिल लेके निकलते थे और फिर ड्रेस को अपना बढ़िया से रख लिया और भीगते हुए मस्त चाल में घर आते थे जिससे घर पर पिटाई भी ना हो। मतलब वो सुहाना टाइम नेवर कम्स बैक, मतलब कभी आएगा ही नहीं मुझे लगता है ज़िंदगी में। फिलहाल मेरा फेवरेट वाला गाना बज रहा है और आप लोग भी सुनने के लिए तैयार होंगे।

0: तो चलिए, कोई प्यार करे या ना करे लेकिन हमारे लिसनर हमसे बहुत प्यार करते हैं और पहला कॉल आ चुका है। चलिए आवाज़ सुनते हैं किसकी। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम? निशा। हमारे साथ ऑनलाइन है और अंताक्षरी में ज्वाइन करने को तैयार हैं। तो सबसे पहले निशा, आप ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं?
1: पटेल नगर।
0: कहाँ से?
1: पटेल नगर।
0: पटेल नगर से। ओके, फाइनली काफी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली, थैंक यू सो मच।
1: तो आपको मैं बहुत याद करती थी वहाँ पे।
0: मतलब मेरा भी दिल यहाँ, पर मैं, मेरा दिल भी नहीं लगता था आपके बिना। फाइनली आप आ गए हैं। तो
1: है ना, सिंपल मैम, वो हमसे बहुत अच्छे से बात करती, मैं फोन नहीं करती थी एक महीने बाद, तभी मेरी फरमाइश लेकर गाना बजाती थी।
0: क्या बात है,
1: कॉल नहीं करती थी तब भी बजाती थी।
0: तो यही यही तो दिल लगी है जो आप लोग समझते नहीं हैं। फिलहाल निशा, आप ये बताइए कि आप अंताक्षरी में लड़कियों की टीम से सबसे पहले आ चुकी हैं, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टीम की बिगनिंग करने के लिए। और सबसे पहले आपको मैं वर्ड देना चाहूँगी, वर्ड नहीं लेटर देना
1: चाहूँगा,
0: अक्षर अक्षर दूंगी। स से आपको गाना सुनाना है, स से।
1: बताने की, मनाने की, आजमाने की,
0: ये गाना गलत है। हंसाने के, रुलाने के, नहीं स से नहीं है ये। सोचिए कोई दूसरा गाना स से।
1: जी मैम, दूसरा सुनाए?
0: हाँ स से ही।

0: तेरे पीछे। वाओ, ये बात अब महसूस हो रही है, अब आपने कॉल किया तो
1: नहीं आता मैम, सॉरी।
0: कोई बात नहीं, आपने जितना भी सुनाया आपकी लिरिक्स सही थी, तो इसलिए आपकी टीम को पॉइंट मिलेगा। और मैं ये कहूँगी कि ये बात सही है, 7 समंदर बाद मतलब 1 महीने बाद आप वापस से हमारे पास आ गई। थैंक यू सो मच। ऐसा तो नहीं है कि अपनी भी शादी कहीं लगा के चली आई जी? जी ओके, चलिए ठीक है,
1: अभी 7 बजे आएंगे, 8 बजे
0: तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच निशा। तो निशा ने कॉल करके अपनी टीम को पॉइंट्स दिला दिए, और आज से 30 पॉइंट्स मिलेंगे आपको एक गाना गाने के। अब लड़कों की टीम की बारी है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ई से गाना गाना है लड़कों की टीम को। चलिए देखते हैं कौन लड़कों की टीम से कॉल करता है। फिलहाल के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे लिए चाय आ चुकी है। आशु जी शुक्रिया चाय के लिए, एक चाय की प्याली के लिए शुक्रिया जनाब। तो चलिए सुनते हैं हम लोग अगला गाना, फिल्म यार यहाँ से।

0: सो लिसनर्स, हमारे साथ लड़कों की टीम से कॉल आ चुका है। चलिए देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो।
1: हेलो
0: सो अमित जी, आप हमारे साथ हैं लड़कों की टीम को सबसे पहले सपोर्ट करने वाले और लगभग हर अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करने वाले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं आपको किस लेटर से गाना गाना है। आपने सुना कि नहीं अभी? यस यस, ई से गाना है।
1: इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर।
0: क्या बात है, चल घर जल्दी हो गई देर। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जल्दी जल्दी अपने टीम मेंबर्स को बुलाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। थैंक यू। सो अमित ने अपनी टीम को फुल सपोर्ट कर दिया है। अब बारी है लड़कियों की टीम की। गुड इवनिंग के गुप्ता जी, तिरंगा कॉम्प्लेक्स से स्वागत है आपका। आपकी तरफ से भी चाय, आज मैं बहुत सारी चाय पी लूँगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए, हमारा जो गाना कंटिन्यू था वो चलता रहेगा और आपके कॉल्स हम लोग लेते रहेंगे। तो बिल्कुल अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए। और अब बारी है लड़कियों की टीम की, चलिए देखते कौन गाना सुनाने वाला है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो हेलो। सो एक हमारे लड़कों की टीम के मेंबर का कॉल आया, लेकिन आवाज़ उनकी तरफ से ज़्यादा आ रही थी सिवाय मतलब उनकी आवाज़ के। तो चलिए देखते हैं, कनेक्ट करते हैं अगले कॉल को आपके साथ, देखते हैं कौन है हमारे साथ, लड़कियों की टीम से है या लड़कों की टीम से। सो बिना देरी किए लेट्स बिगिन टू दिस कॉल। हेलो।
3: हेलो,
0: गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग मैम।
0: आपकी आवाज़ जानी पहचानी, और मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ आशु जी की आवाज़। तो चलिए आशु जी, सबसे पहले तो गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर चाय। और ये बताइए, आपने सुना आपको किस लेटर से गाना सुनाना है? हेलो हेलो हेलो आशु जी।
4: हेलो
0: आशा जी, आपने सुना है किस लेटर से आपको गाना सुनाना है?
4: बिल्कुल मैम, रा से गाना है मैम।
0: रा से, चलिए।
4: राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया और इसका स्टैंजा बहुत अच्छा है। फिलहाल मैं नहीं कहूंगी आपको गाने के लिए, लेकिन आपने गाना बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं लड़कों की टीम ने सुना ध्यान से या फिर नहीं। तो चलिए अगले गाने को सुनते रहिए। लड़कों की टीम के साथ भी हम लोग जुड़े हैं, लगातार आप लोगों से बातें हो रही, मजा आ रहा है यार, देख रहे हैं मतलब लगातार कॉल आ रहे हैं, आप लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं। चलिए आपकी टीम की पावर देखते हैं, आज कौन जीतता है ये देखते हैं।

0: तो चलिए अगला कॉल ऑन एयर, चलिए सुनते हैं आवाज किसकी है। हेलो,
1: हाँ गुड इवनिंग जीना मैम।
0: शुभ संध्या, गुड इवनिंग, कैसे हैं सुरेश जी?
1: अच्छा
0: तो
1: कहाँ से सुनाना
0: है? तासे।
1: तासे।
0: जी।
1: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे लूट कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे लूट कर मेरी जान जा रही है, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाए, दीवाना कर रही है तो बाशिकन अदाए, जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। धन्यवाद।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाया और बहुत सुंदर गाना आपने सुनाया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सुरेश जी ने एक बेहतरीन गाना सुना के अपनी टीम को वापस से पॉइंट दिला दिए हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग वो लिसनर जो अभी अभी जुड़े हैं, और वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, और इतना सुरीला गाना सुन के तो मज़ा ही आ गया। और अगली टीम यानी कि लड़कियों की टीम की बारी है, चलिए देखते हैं आवाज़ किसकी आ रही है। हेलो हेलो हेलो सुभाई, आवाज़ तो नहीं आ रही है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग भी अगला गाना सुन लेते हैं और एंजॉय करते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी शाम को, और ऐसे ही ये शाम खूबसूरत म्यूज़िकल और हमारे साथ गवाह बनती रहेगी सुरों की, क्योंकि आज सुर हवा में बारिश की बूंदों के साथ बरसेंगे। हेलो
2: हेलो हेलो मैम,
0: आशु जी ये बताइए आपने सुन लिया गाना, किस लेटर से आपको सुनाना है?
2: जा रही है आसे मैम।
0: वाह क्या बात है,
2: आगे ऐसे सुनाना
0: जी।
2: हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे।
0: क्या बात है, फिलहाल आप लोग ऐसे गाएंगे तो हर इंसान आप लोग को याद करेगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए लड़कियों की टीम भाई बहुत तेज गा रही है, और वैसे ही लड़कों की टीम भी एकदम बराबरी की टक्कर दे रही है। तो इसी के साथ लड़कियों की टीम के 90 पॉइंट्स हो जाते हैं, और देखते हैं कौन अगला गाना गाने के लिए लड़कों की टीम से हमारे साथ जुड़ने वाला है।
3: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, आदाब प्रणाम, आपका शुभ नाम?
3: जी
0: आपका नाम?
3: सूरज कुमार कश्यप।
0: सूरज कश्यप जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और आपने गाना सुना, कौन सा गाना लड़कियों की टीम ने गाया?
3: हाँ मैम।
0: जी तो किस लेटर से गाना गाना है आपको?
3: ना
0: से सुनाइए।
3: नाना नाना करके प्यार से कर दे,
0: नाना करते
3: इकरार
0: मगर
3: कर
0: दे। हाँ क्या बात है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आपकी आवाज़ को डिस्कनेक्ट करती हूँ, आगे बने रहिएगा। आपके आसपास से बहुत आवाज़ आ रही है सूरज जी, तो थोड़ा सा थोड़ा ट्रैफिक।
3: मैम मैं सामने से बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सूरज जी ने अपनी टीम को 90 पॉइंट्स दिला दिए, और एक और कॉल और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट राउंड की शुरुआत। फिलहाल आप लोग के साथ ये शाम बड़ी रंगीन है, और रंगीन शाम के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं केके जी, अनिल शास्त्री जी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं, केके जी गोंडा से जुड़े हैं, सबका स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और ऐसी हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए आज की शाम को आप ऐसे ही बरकरार रखिएगा और बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, क्योंकि इतने खूबसूरत गाने और इतनी खूबसूरत शाम और इतनी खूबसूरत आवाज़ें एक साथ कहाँ मिलती हैं एक जगह। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा और गाना जिसे सुन के आपको और मुझे आ जाएगा मज़ा। लेकिन एक और कॉल आ गया, चलिए देखते किसका कॉल है। हेलो
4: हेलो,
0: अगेन आशु जी, मतलब आज आपकी टीम का भार सिर्फ आपके कंधों पे है। ओके तो बताइए किस लेटर से आप गाने वाली हैं?
4: कर बैठे था से मैं बोल था यार
0: था से। ओ हो क्या बात है। क्या बात है, क्या चुनिंदा गाने सुनाए जा रहे हैं, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। तो भाई लड़कियों की टीम गाने बहुत अच्छे चुन के ला रही है और फिलहाल इन चुने हुए गानों के साथ ये शाम बड़ी अच्छी लग रही है। देखते हैं लड़कों की टीम से किसका कॉल आता है। और बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, लगातार गाने बजते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी कॉल किसका आता है, तब तक के लिए म्यूज़िक इन्जॉय करिए।
5: कोई है क्या?
6: हाय,
5: मुझे जिमी से मिलना है।
6: वन सेकंड।
0: चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ, सुनते हैं।
7: हेलो विजय मैम, कहाँ से गिरा?
0: ठाड़े रहियो ओ पाके जा, ठाड़े रहियो यासे। हाँ
7: दिल में
0: हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के। हमारे लिसनर का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और मैं चाहती हूँ कि वापस सुरेश जी का कॉल आए। और ये गाना बहुत ही प्यारा है और इस गाने के लिए हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जल्दी से आवाज़ सुनने को मिल जाती हमें तो मज़ा आ जाता। चलिए देखते हैं कॉल वापस आता है कि नहीं, और इंतज़ार का फल मीठा होता है मुझे ये पता है। गाना बहुत अच्छा था और इसी गाने के लिए मुझे इनकी टीम को पॉइंट तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि गाना बहुत सुरीला था और बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, इस बात का मुझे बड़ा दुख है।

0: और इसका स्टैंजा भी बड़ा प्यारा सा है, लेकिन मुझे नहीं याद है। अगर अभी सुरेश जी का कॉल आएगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आप लोग को, और यही गाना स्पेशली सुनाऊंगी आपको, सुन के मज़ा आ जाएगा। फिलहाल के लिए चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म, आपकी मतलब फिल्म का नहीं एल्बम सॉन्ग है, लेकिन सुन के चलिए आपको मज़ा आएगा। लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसी के बाद ये जो राउंड है, फर्स्ट राउंड जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि आपका लेटर राउंड ख़त्म होता है। अब सेकेंड राउंड के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। सेकेंड राउंड में आपको मैं एक स्पेशल एक्टर का नाम दूंगी और उससे जुड़ी एक फ़िल्म का नाम दूंगी, और आपको उसी एक्टर पे फिल्माया गया उस फिल्म में जो गाना है वो गाना है आपको, ठीक है। सपोज़ मैंने आपको अक्षय कुमार दिया और अक्षय कुमार के साथ मैंने नाम दे दिया एक्शन रीप्ले, तो आपने एक्शन रीप्ले देखी होगी, आपको अक्षय कुमार याद आ जाएंगे, उनके ऊपर जो भी गाना गाया गया है आपको भी बजा देना है, मतलब सुना देना है, ठीक है। तो सेकंड राउंड के लिए आप लोग तैयार रहिए, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। वाकई में बड़ा अच्छा गाना था सुरेश जी ने जो सुनाया, आगे आप लोग के गाने के इंतजार करते रहेंगे हम लोग।
1: लव दैट,
2: परफेक्ट, आई सी यू टुमारो देन।
1: यस श्योर, एक्सक्यूज मी।

चुराना। फिलहाल दिल को चुराने वाले लोगों की कमी नहीं है और आज दिल चुराने वाली टीमें दोनों बराबरी से खेल रही हैं। टीम ए 120, टीम बी 120 एंड चलिए देखते हैं कौन है जो आज की शाम को अपने नाम करने वाला है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोग को रूल्स मैं फिर से बता देती हूँ और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस से हम अपने सेकंड राउंड को शुरू करेंगे। एंड आपको एक मूवी का नाम दिया जाएगा, एक्टर का नाम दिया जाएगा और आपको सुनाना होगा उसी मूवी का उसी एक्टर पे फिल्माया हुआ।

0: सो आज फटाफट से इस बारिश की धुन को पहचान के जल्दी से रेडी रहिए क्योंकि अंताक्षरी आप ही के साथ खेलेंगे। सबलू सावंत जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गीता श्रीवास्तव जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। और चलिए ये बारिश वाले गाने को मैं दोनों ही लोगों के लिए नहीं, पूरे शहर के पूरे पूरे के पूरे देश के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह बारिश हो ही रही है।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
3: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: माशाल्लाह हमारी चौखट पे तो सितारे उतर आए।
1: अरे अरे
0: कैसे हैं भाई जान?
1: ये सितारा तो ईद का चांद हो गया।
2: तो बिल्कुल ईद का चांद आज बिना तो नहीं है, इसीलिए आपके साथ वापस आ चुकी है आप लोगों से बहुत सारी बातें करने और आप लोगों से ये कहने कि भाई नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोगों को, जी हाँ आप लोगों को, फिल्म का नाम पहले दिया जाएगा कि बाद में? जी हाँ, आपको फिल्म का नाम बताया जाएगा जब आप कॉल करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं किसकी टीम से कॉल आता है, लड़कों की या फिर लड़कियों की टीम से। हाँ थोड़ा नर्वस करने का राउंड है, लेकिन एक दो मिनट का सोचने का टाइम तो मैं दूंगी। तो सबसे पहले कॉल आप करेंगे, फिर मैं आपको फिल्म बताऊंगी, फिर आप गाना सुनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतना खतरनाक राउंड, नहीं नहीं मैं पहले से बता दूं और आप गूगल करके गाना ढूंढ लें फिर मुझे कॉल करके गाना सुना दें, ऐसा नहीं होने वाला। और आपको क्या करना है, कॉल करना है, मैं आपको गाना दूंगी, मतलब सॉरी गाना नहीं, मूवी का नाम दूंगी, आप गाना सुना देंगे और अपनी टीम को सीधे 50 पॉइंट्स दिला देंगे, है ना मजेदार राउंड। तो चलिए देखते कौन कॉल कर रहा है। चलिए कॉल करने वालों का स्वागत है। एंड स्वागत से मुझे याद आया यार कि जब वेलकम करते हैं हम लोग किसी का तो सबको स्पेशली वेलकम चाहिए होता है, लेकिन इस समय मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे का वेलकम करें, एक दूसरे की आवाज़ का वेलकम करें, चैट रूम में एक दूसरे की आवाज़ को अप्रिशिएट करें, जिससे सामने वाले को लगे यार मैं अच्छा गाया या नहीं गाया लेकिन सबने मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए देखते हैं आवाज़ किसकी है, आवाज़ हमारी।
3: हेलो मैम।
2: हेलो, कैसी हैं गीता जी? वेरी गुड इवनिंग। आवाज़ सुनते पहचान गई मैं आपको। मैं भी बिल्कुल मस्त स्वस्थ और चकाचक। हेलो।
3: तो हेलो मैम, सुन रहे हैं?
2: जी जी। तो आप फिल्म के लिए तैयार हैं?
3: जी मैम तैयार तो है, अपनी तो तैयार है।
2: तो चलिए पहले, मतलब आपने पहले पहले कॉल किया तो आपको बहुत ज्यादा नहीं डराया जाएगा, आपको आसान सी फिल्म दी जाएगी। आमिर खान दिल।
3: आमिर खान दिल,
2: दिल मूवी आपने देखी होगी जहाँ तक है?
3: जी मैम
2: जी। दिल मूवी में आमिर खान है और गाना उसी फिल्म का आपको सुनाना है।
3: मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
2: क्या बात है,
3: थैंक यू मैम,
2: थैंक यू सो मच। तो देखिए लड़कियों की टीम की तैयारी यार कहनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि बहुत बढ़िया चल रही है यार। मतलब ये लोग सोचते नहीं हैं, सीधे गाने सुनाते हैं। और दिल फिल्म का गाना एक बार में मतलब झट से सुना देना कोई मामूली बात नहीं थी, पर हाँ जैसे कहते हैं ना कि जिसके अंदर कहते हैं ना जज्बा होता है वो अपना जज्बा जगा लेता है। वैसे आके आपको पता है दिल मूवी में आमिर खान के साथ कौन सी एक्ट्रेस है? चलिए एक गूगली दी है मैंने, देखिए कौन गेस करता है। और इसी के साथ लड़कियों की टीम के हो जाते हैं सीधे सीधे सीधे 150 पॉइंट्स। नो नो नो नो नो 150 नहीं, 170 पॉइंट्स, क्योंकि इस बार तो आपको 50 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। चलिए लड़कों की टीम से देखते हैं किसका कॉल आता है। फिलहाल लड़कों की टीम भी बड़ी तेज़ तरार है, सबके अंदर गट्स बहुत हाई हैं, लेकिन हम तब तक के लिए अगले कॉलर का इंतजार ही करेंगे। तो आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो।
4: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
4: रमेश कुमार, महाराष्ट्र, मुंबई।
2: रमेश जी महाराष्ट्र से, क्या बात है, मुंबई से। तो सबसे पहले तो आप मुंबई से हैं तो आपको बहुत अच्छा सा ट्विस्ट देना पड़ेगा। तो आज आपने पहली बार कॉल किया है रमेश जी?
4: हाँ पहली बार, अभी मतलब आकाश में से मैडम से बात होता था, लेकिन आज पहली बार अंतर से भी बात किया।
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए रमेश जी। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिल्म देती हूँ, उस फिल्म का आपको गाना सुनाना है। अरे आप रेडी
4: हैं? ओके बोलिए। तो
2: धड़कन, अक्षय कुमार।
4: अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो है।
2: हाँ उनकी धड़कन फिल्म आपने देखी होगी, उसी फिल्म का आपको गाना सुनाना है।
4: ओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी शुरुआत। और आते ही आपने अपनी टीम को 50 पॉइंट्स दिला दिए, नॉट बैड।
4: थैंक यू मैडम,
2: थैंक यू सो मच रमेश जी, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू फॉर कॉल. भाई रमेश जी ने मुंबई से कॉल करके अपनी टीम को सपोर्ट किया है, तो भाई इस जज्बे के लिए तो सलाम करना पड़ेगा. और मुंबई में बारिश हो रही है, तो इस बरसती गरजती बारिश के लिए मुंबई वालों के लिए गाना सुना देते हैं. तो चलिए गोंडा वालों, तैयार रहो, कॉल करते रहो, आपकी टीम कॉल करेगी तभी ना आपकी टीम को पॉइंट्स मिलेंगे. चलिए देखते हैं किसने ये गाना सुना है या नहीं. मैंने तो बहुत बार सुना और मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है. तो चलिए सुनते हैं गाना तेरी मेरी कहानी. तब तक के लिए कॉल करते रहिएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये गाना एंजॉय करिए.

0: चलिए बारिशों का पानी बाद में सुनेंगे, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: श्रीदेवी।
0: कैसे हैं, क्या हाल है?
1: आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चलिए आपको आप ही की पसंद की फिल्म का गाना देती हूँ मैं, मतलब मूवी देती हूँ, आप रेडी हैं? हाँ चलिए, मिस्टर इंडिया का गाना सुना दीजिए।
1: मिस्टर इंडिया का?
0: उसमें
1: कौन सा गाना?
0: जो भी गाना,
1: कोई शब्द होगा?
0: नहीं, शब्द से नहीं, आपको मूवी का गाना सुनाना है। तो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी है ना, अनिल कपूर और श्रीदेवी की?
1: यही सॉन्ग है, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बाहर मिस्टर इंडिया से।
0: इतना ही सुना के आप पॉइंट लेना चाहते हैं? गा के सुनाइए, गा के सुनाइए, नहीं 50 नंबर चले जाएंगे आपकी टीम के।
1: हेलो,
0: कह रहे हैं
1: क्या बोला?
0: गा के सुनाइए, गा के सुनाइए, नहीं तो आपकी टीम को पॉइंट नहीं मिलेंगे।
1: गा के सुनाना है
0: जी? हाँ।
1: ओके, अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से।
0: क्या बात है श्रीदेवी जी, मुझे लगता है आप श्रीदेवी जी की सारी फिल्में देख चुके हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो लड़कों की टीम को मिल जाते हैं 50 और पॉइंट्स, और इसी के साथ लड़कों की टीम के पॉइंट्स है 220। तो हम सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गाना, अपना और आपकी पसंद वाला गाना, लेकिन एक और कॉल आ गया।
2: हवा।
0: हेलो निशा जी।
2: निशा जी,
0: निशा कैसी हैं? वापस से आपका स्वागत है।
2: जी बिल्कुल अच्छी हूं जी, मैम क्या सुनाना है?
0: तो फिल्म का नाम मैं आपको दे सकती हूँ? आशिकी 2 का गाना सुना दीजिए।
2: आशिकी 2 का पिक्चर तो देखे नहीं, पिक्चर कोई सा भी देखे नहीं है मैम।
0: श्रद्धा कपूर की फिल्म है आशिकी 2।
2: मैम पिक्चर नहीं देखी, छोटी फोन है तो पिक्चर कहाँ से देखेंगे मैम, टीवी भी नहीं है ना, वो फोन एकदम।
0: तो गाना तो सुनी होंगी ना?
2: दूल्हे राजा का बताइए मैम, दूल्हे राजा का बता दीजिए, गा देंगे।
0: नहीं दूल्हे राजा का मत सुनाइए, मैं आपको देती हूँ कहो ना प्यार है का गाना सुना दीजिए। चलिए मूवी थी ना एक कहो ना प्यार है, उसका गाना सुना दीजिए।
2: कहो ना प्यार है
0: जी? हाँ
2: मैम नहीं आता है मैम, पिक्चर तो नहीं देखती, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं देखती, जो दूल्हे राजा का पिक्चर देखे हो जानते हैं।
0: अच्छा तो कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं जरा बताइए।
2: वो देखे हैं, दूल्हे राजा देखे हैं, राजा हिंदुस्तानी देखे हैं,
0: विवाह मूवी देखी है?
2: विवाह
0: जी
2: जी।
0: तो इसी फिल्म का गाना सुना दीजिए।
2: मुझे हक है ये वाला है।
0: हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे गाने हैं, कोई भी सुना दीजिए। इसमें ABCD वाला गाना कहाँ है? विवाह फिल्म का गाना सुनाना है जिसमें आपके शाहिद कपूर हैं।
2: शाहिद कपूर?
0: हाँ मुझे हक है जो आप कह रही थी वो गाना सही है, आप वो सुना सकती हैं।
2: देखे तो जानते पर गाना मुंह में आ नहीं रहा है।
0: अरे बाप रे, फिर कौन सी फिल्म आपने देखी है? और
2: मैम पिक्चर तो नहीं देखते हैं, टीवी में नहीं है, फोन वाले मोबाइल नहीं, तुम कहाँ देखेंगे मैम, थोड़ी मतलब थोड़ी आती है।
0: स्वीट आओ स्वीट। चलिए कौन सी फिल्म आपने देखी, चलिए उसी फिल्म का सुनाइए, कौन सी फिल्म देखी आपने?
2: दूल्हे राजा वाले।
0: हाँ हाँ चलिए दूल्हे राजा को सुनाइए। चलो
2: दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, सुनो तो सुर जी सुनो तो सुर जी, फिर अब छोड़ो मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। नंबर।
0: चलिए आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया, थैंक यू सो मच निशा, और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, और मूवीज जितनी भी देखिए उतने में ही आप सेटिस्फाई रहिए, आपके क्वेश्चन उसी में से रहेंगे, थैंक यू। तो चलिए निशा ने गाना सुनाया, क्योंकि निशा ने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं तो इसलिए निशा को मैंने ऑप्शन दे दिया, तो ऐसा मत सोचिएगा सबको मिलेगा, निशा के साथ रेयर केस था इसलिए निशा को ऐसा ही मैंने ऑप्शन दिया जिससे कि वो अपनी पसंद का गाना सुना सके। फिलहाल थोड़ा तो फ्लेक्सिबल आर्ज बिना के रूल्स तो हो ही जाते हैं, आप लोग को पता ही है। चलिए देखते हैं अगले कौन कॉलर हैं हमारे साथ, आवाज सुनते हैं। हेलो
1: जी,
0: जी श्री देवी जी, चलिए आपको अगली फिल्म मैं देती हूँ, आप सुना दीजिए आशिकी वन का गाना।
1: आशिकी वन का?
0: हाँ आशिकी वन नॉट टू,
1: जी कुमार सानू की आवाज में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: सांस की जरूरत है जैसे, सांस की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए चाहत की जरूरत है ऐसे, बेखुदी के लिए एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो चलिए श्रीदेवी जी ने अपनी टीम को फिर से पॉइंट दिला दिया है और मज़ा आ रहा है यार, मतलब आप लोग के पास कितने अच्छे अच्छे गाने हैं, मज़ा आ जाता है सुन के। तो चलिए एक और गाना मेरे साथ सुनिए और चलिए तब तक इंतज़ार करते हैं हमारे लिसनर्स का, कौन कॉल करके क्या सुनाने वाला है। फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जो भी सुनाने वाला है वो अच्छा ही सुनाएगा, सो डोंट वरी। चलिए हम इस गाने को सुनते हैं, गाना है सजदा।

राउंड को मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोग रहिएगा तैयार, और आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से है। तो फिलहाल नेक्स्ट राउंड के लिए देखते हैं आप लोग तैयार हैं कि नहीं। नेक्स्ट राउंड थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, पहले ये गाना सुनिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: वो लंबा चलाने का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल वापस हम आ चुके हैं आपके वाले वन मिनट राउंड में, लेकिन वन मिनट राउंड आपको बता दूं थोड़ा ट्विस्ट वाला होगा, क्योंकि आपको गाने ही सिर्फ नहीं गाने हैं, आपको आज एक मिनट में दिए हुए टास्क पे गाने गाने हैं। मतलब आपको अगर मैं वर्ड दे रही हूँ तो उसी वर्ड से पूरे एक मिनट में गाने गाने हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक मिनट मिला और आप गाते चले गए, आपको एक मिनट के साथ एक वर्ड भी मिलेगा तब आपको गाने गाने हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं आप लोग के कॉल का। और भाई कॉल से पहले एक छोटा सा मैं आप लोग को डिस्क्लेमर नहीं एक थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगी कि भाई हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हैं, मतलब बहुत मन लगा के एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। वो हमारे लिए, आपके लिए, क्या सबके लिए, समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो।
1: हाँ मैडम बोलिए, कौन सा चल रहा है?
0: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: रमेश कुमार।
0: ओके रमेश जी, मुंबई से। ओके वेलकम बैक, आपकी आवाज का वापस से स्वागत है। एंड अभी
1: अच्छा लगता है प्रोग्राम,
0: थैंक यू सो मच। एंड अभी नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, आपको एक मिनट का टाइम दिया जाएगा और एक मिनट में आपको गाने गाने होंगे, ठीक है? लेकिन गाना एक शब्द होगा, उसी से आपको कई सारे गाने, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको बारिश, तो आप बारिश से ही गाने गाएंगे, बारिश ये बारिश वो, बारिश का मौसम है। अभी अभी अभी बारिश दिया नहीं है, मैं तो एग्जांपल ले रही थी शब्द अभी मैं।
1: ओके ओके ओके बोलिए।
0: तो आप रेडी हैं?
1: हाँ।
0: मतलब तैयार हैं एकदम से?
1: एकदम रोमांटिक से यार।
0: ओके चलिए। आपका शब्द है फूल।
1: फूल।
0: टाइम शुरू होता है अब।
1: बाप रे बाप, फूल फूल बन गए।
0: फूल।
1: ओके ओके, मैं सोचना पड़ेगा फूलों में।
0: फूल में सोचना पड़ेगा, फूल तो बड़ा ही आसान, बहुत आसान सा शब्द है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देती हूँ मैं आपको, टाइम नहीं वेस्ट करूँ।
1: दे दो, दे दो, जरा हमको अच्छा लगेगा। तो
0: फर्स्ट टाइम आपने इस राउंड में कॉल किया है तो इसलिए। तो चलिए आपको याद, याद से गाने सुनाने हैं, जितने भी गाने होंगे वो याद।
1: याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी।
0: और
1: अरे बाबा बाबा, वो दिनों के बाद ये एकदम ये अंतरिक्ष में आ गया।
0: याद से और भी बहुत सारे गाने हैं, यादें फिल्म का ही एक गाना है।
1: याद है
0: कि
1: सॉरी मैडम, आप ही गा के सुनाओ।
0: यादें याद आती हैं, आपके 30 सेकंड।
1: एक नंबर गाना है वो। बातें भूल जाते हैं,
0: 30 सेकंड बचे आपके पास।
1: याद आते हैं बातें भूल जाते हैं, जो भी हो इसमें बहुत दिनों के बाद मैं भी गाना अभी याद आप गिना दिया। सॉरी मैडम, आप ये सुना दो।
0: थैंक यू सो मच। और आपने मतलब दो गाने गाए हैं जिसमें से एक गाने का आपको पॉइंट मिलेगा, दूसरा मैंने बताया था उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा आपका। तो चलिए रमेश जी ने बहुत अच्छी कोशिश की और इसी के साथ इनकी टीम को 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं और इन्हीं की टीम के हो जाते हैं सीधे सीधे सीधे 280 पॉइंट्स। नॉट बैड। हेलो हेलो, चलिए देखते हैं लड़कियों की टीम से किसका कॉल आता है। और एक कॉल आया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, अगले कॉलर को मौका देते हैं। हेलो
2: हेलो।
0: ओके वेलकम बैक गीता जी, कैसी हैं आप? अभी इसके पहले आप ही का कॉल था।
2: पता नहीं मैम, 2-3 बार कर रहे थे, बिजी बता रहा था, बूट किया तो नहीं बता।
0: सो बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे है ना, तो इसीलिए। तो चलिए आप रेडी हैं?
2: जी मैम
0: बिल्कुल एकदम अच्छे से।
2: अरे मैम बहुत टफ दे देंगी तब क्या करेंगे।
0: अरे आप लोग बहुत मतलब टैलेंटेड लोग हैं।
2: अरे मैम ऐसा मत कहिए, अभी देखिए धड़ाम से गिर पड़ेंगे।
0: तो चलिए आपका वर्ड है मौसम और टाइम शुरू होता है अब।
2: मौसम की तरह तुम बदल न जाओगे, तुमने रख तो ली।

0: फिर हमारी, लेकिन बाहरों जिस तरह मौसम बदलता है, तुमको भी देखा है रंग रंग भरे बादल के, नहीं मौसम में बोलेंगे मौसम, दो गाने हो गए बरसात के दिन आए मुलाकात में भी मौसम, नहीं कितना टफ दे दिए मैं, मौसम से कहाँ जंगली गाने हैं,
1: एक मौसम से ही गाना है बहुत अच्छा सा।
0: मौसम क्या मौसम आया है, यही मैम
1: और क्या, और सोचिए, तीन गाने हो गए, 20 सेकंड और बचे।
0: अरे मैम नहीं आ रहा है मौसम क्या, बरसात की मौसम बस, जब कभी जो
1: टाइम पूरा होता है आपका अब, और मैं दो गाने बताती हूँ, एक गाना तो ये है मौसम है आशिकाने,
0: और मैं वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, नहीं सोचते रहेगा
1: और सुनिए मौसम की तरह तुम भी,
0: ये तो गाया मैंने, मैं
1: ये गाया आपने, चलिए ठीक है, तीन गाने के 30 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, नॉट बैड,
0: थैंक यू।
1: आपको और बहुत सारे गाने आ सकते थे क्योंकि पुराने में बहुत सारे गाने हैं
0: मैम। अच्छा दोबारा कॉल भी मतलब रैंडमली है कि फिर लड़के ही करेंगे?
1: हाँ जिसका भी कॉल आएगा उसको ऑन एयर कर दिया जाएगा, इसमें किसी की बारी वाला सिस्टम नहीं है।
0: थैंक यू।
1: तो चलिए गीता जी ने अपनी टीम को दिला दिए हैं 30 पॉइंट्स, तो 220 पहले थे अभी तक 230 पॉइंट हुए हैं। भाई कहाँ हैं दोनों टीमों के मतलब एकदम पक्के पक्के खिलाड़ी, वेयर आर द खिलाड़ीज, फटाफट से रेडी रहे। नीना गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, अपनी टीम को सपोर्ट करिए चैट रूम में, सिर्फ कॉल करके सपोर्ट करिए, नहीं तो मतलब टीम को सपोर्ट करने का क्या ही मतलब होगा। फिलहाल चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ, नीना हैं और प्रमुख जी भी हैं। प्रमुख आप कॉल करके गाने सुना सकते हैं, आप तो बहुत अच्छा गाते भी हैं और मतलब एक्टिव भी रहते हैं, तो यू कैन ट्राई। फिलहाल हमारे एक कॉलर का कॉल आ रहा है, चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, ओ माय गॉड। चलिए देखते हैं और कॉल्स आते हैं या फिर अभी आज की शाम यहीं पे विराम होने वाली है। चलिए अगली कॉलर हमारे साथ, देखिए कौन है। हेलो
2: हेलो मैम,
1: गुड इवनिंग आशु जी, मतलब आज आप ही लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है, बाकी सारी सखियां, बाकी सारे सखे आप लोग के सब गायब हैं। तो चलिए आपको मैं वर्ड दूं।
2: बिल्कुल मैम, इजी दीजिएगा, ज्यादा टफ मत दीजिए।
1: दोस्त टाइम शुरू होता है अब। आशु जी
2: तेरा जैसे यार कहा,
1: एक नया गाना है दोस्त पे, देखिए मैं हिंट भी दे रही हूँ आप लोग को।
2: नई मूवी है क्या मैम?
1: नहीं एल्बम सॉन्ग है,
2: एल्बम
1: बहुत चला था गाना। आपका टाइम पूरा हो गया आशु जी, और आपने तीन गाने गाए क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो लड़कियों की टीम के सपोर्ट से लड़कियों की टीम के हो जाते हैं 260 पॉइंट्स। चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं। हेलो
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम?
3: जी मैम, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है,
1: थैंक यू सो मच। आपका नाम? निशा। आप बदल बदल के आवाजें बोलेंगे तो कैसे हम पहचान पाएंगे?
3: ये वाला प्रोग्राम है, एक मिनट में 10 गाने 9 गाने होते हैं ये प्रोग्राम में?
1: नहीं नहीं, एक मिनट में आपको जो शब्द दिया जाएगा उससे गाने गाने होते हैं। हेलो हेलो, देखिए निशा की आवाज़ भी डिस्कनेक्ट हो गई और लड़कियों की टीम के 260 पॉइंट्स हैं। ओके नॉट बैड।

0: फिलहाल कोई कॉल नहीं कर रहा, मैं ही खा रही हूँ। एक कॉल चल रहा है, चलिए देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो हेलो, वापस से कॉल डिस्कनेक्ट होता हुआ, अगली आवाज़ चलिए सुनने की बारी। हेलो हेलो, यार इतने सारे कॉल एक साथ, क्या कहने क्या कहने। हेलो हेलो हेलो, मतलब आप लोग कभी कभी मुझे लगता है कि एकदम नेटवर्क से कॉल करते हैं, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नेटवर्क में रह के भी कहीं चले जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: हाँ गुड इवनिंग, मैं से पूजा हूँ।
0: पूजा, ओके, गुड इवनिंग पूजा, कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सु पूजा हूँ, SUPOOJA।
0: सुपूजा,
1: मैं यहाँ गोंडा से बात कर रही हूँ।
0: ओके गोंडा से, तो पूजा आपने रूल्स सुन लिए हैं, आप वर्ड मैं आपको दूँ, आप रेडी हैं?
1: हाँ रेडी हैं।
0: पक्का
1: जी,
0: आर यू रेडी, श्योर?
1: हाँ हाँ बिल्कुल रेडी।
0: चलिए, आपका वर्ड है इश्क, इश्क से आपको गाने सुनाने हैं।
1: इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यार, एक ये गाना हो गया। अरे आसान, ये वर्ड तो बहुत आसान है, मुझे गाने नहीं याद आ रहे जल्दी से। ये इश्क है बैठे बिठाए, जन्नत दिखाए, हाँ हो रामा, ये इश्क है।

0: हो गई मैं कुछ समझ ना आया। साजन साजन साजन साजन एक ही गाना
1: बहुत सुरीला गा रही हैं।
0: इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ।
1: स्टॉप ना स्टॉप आपका टाइम पूरा हो गया और आपने चार गाने गाए बहुत अच्छे। अभी तक सबने तीन ही गाने गाए थे और आपने चार गाने गाए, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ आपकी टीम को 40 और पॉइंट्स मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी, बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू। तो भाई आज तो लड़कियों की टीम भाई बड़ी मजबूत दिख रही है, लड़कों की टीम मुझे थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मुंबई से तो कोई कहीं से कॉल कर रहा है, लेकिन मतलब किसी में कोई कमी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग फटाफट से कॉल करके अपनी टीम को सपोर्ट करें और किसी तरह का कोई मतलब हेलो गुड इवनिंग, योर गुड नेम अमित। तो कैसे हैं अमित आप?
2: मैं ठीक हूँ।
1: तो आपकी टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है।
2: मैम बताइए लेकर। तो क्या मैं
1: वर्ड आपको दूं?
2: जी जी जी।
1: पक्का रेडी हैं आप? हेलो।
2: हाँ मैम बिल्कुल।
1: प्यार से गाना सुनाना है आपको।
2: क्या है मैम? प्यार। हेलो प्यार है ना?
1: हाँ हाँ प्यार।
2: टाइम शुरू हुआ?
1: टाइम शुरू हो चुका है आपका।
2: प्यार नहीं करना जहान का रहता है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना।
1: प्यार से बहुत सारे गाने हैं
2: मैम है तो, लेकिन
1: एक आसान वर्ड मैंने लड़कियों को दिया, एक लड़कों को दिया, इसीलिए बराबर ही रहे। अभी 30 सेकंड आपके पूरे बाकी हैं।
2: ओके।
1: प्यार प्यार से आपको गाना नहीं याद आ रहा है। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास।
2: वो भी समाप्त हो जाएगा।
1: प्यार से गाने इतने सारे हैं
2: मैम, आते हैं बिल्कुल, हमें आते हैं, लेकिन वो इस समय नहीं याद आ रहा है।
1: आपकी टीम के लिए गाना किसी ने डेडिकेट किया, प्यार किया तो डरना क्या।
2: हाँ मैम ये सब तो था, चलिए ठीक
1: है। थैंक यू सो मच। कितने गाने आपने गाए टोटल बताइए। सो भाई इसी के साथ भाई हमारे लिसनर अमित ने गाने सुना दिया और अमित की टीम के हो जाते हैं 30 पॉइंट्स, एंड 30 पॉइंट्स के साथ दोनों ही टीमें हो जाती हैं 300 पे टाई। नॉट बैड, मतलब इस बार दोनों ही टीमों ने स्लो खेला, आराम से खेला और दोनों बराबरी पे रही, नॉट बैड। और इसी के साथ मुझे अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दोनों टीमें बराबर पे रही, अच्छा खेला, स्लो खेला लेकिन मज़ेदार खेला और सबने मतलब बराबर सपोर्ट किया। चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग मतलब कुछ ऐसे नए लिसनर्स हैं जिनको 1 मिनट वाले राउंड के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, बट हाँ आप लोगों ने कोशिश अच्छी की। तो नेक्स्ट बार मतलब नेक्स्ट टाइम आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, कैसे क्या करना है बिल्कुल मतलब एनर्जी बना के रखिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। कुछ ही देर में आप सुनेंगे गीत आपके नाम से आरजे सिंपल के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत। और दोनों ही टीमों ने अच्छा खेला और दोनों ही टीमें मेरे साथ मेरी इस अंताक्षरी में विजय हैं, तो इसीलिए खेल खेल में आगे भी ऐसे हम जीतते रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे।

very good evening and welcome in your super my शिवी द आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन स्टेट

नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में। कभी यादों का कारवा तो कभी गीतों का साया, और एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना पसंदीदा शो फरमाइशी, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, आपकी खट्टी मीठी कड़वी और चटपटी सी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों, जज्बात आपके, अल्फाज मेरे और नगमे वो जो सीधे आपके और मेरे दिल को छू जाए। सो आज की शाम है आप सभी के नाम, और रोज की शाम तो होती है आप सभी के गीतों के नाम। सो क्यों ना आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में इस गीतों के कारवां को, इन जज्बातों के उमड़ते सैलाब को क्यों ना खोला जाए। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार लुधियाना से, नीना गोंडा से, केके गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका तो दिल से स्वागत है। सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, अनुष्का श्रावस्ती से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, नागेश्वर धाकड़ आपका भी स्वागत है राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, सबलू सामंत मुंबई से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सबीहा गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बर रानी बजाज सुनार गली गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, राजू सलमानी गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो क्यों ना फरमाइशी के पिटारे को खोला जाए और पहली फरमाइश को प्ले किया जाए। जी हाँ दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे पास में है प्रमुख कुमार की लुधियाना से, और प्रमुख कुमार को लुधियाना से सुनना है गाना खता तो जब हो कि हम हाले दिल किसी से कहें, और किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इसी के साथ में नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि फूल गवाह है कि तोड़े वही जाते हैं जो खूबसूरत होते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की अतरंगी सी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। थैंक यू सो मच प्रमुख कुमार फ्रॉम लुधियाना, आई लव दिस सॉन्ग।

हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में ये 90s का दर्द भरा प्यारा सा नगमा हमारे प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर जो कि है लुधियाना से। सो क्या आप सभी तैयार हैं हमारी आज की अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? सो हमारे पास में अगली फरमाइश है दोस्तों के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। के गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से सुनना है गाना अगर दिल कहे कि। सो एंजॉय करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में कौन है जो सपनों में आया मूवी का ये नगमा हमारे के गुप्ता जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सुजीत, आपका स्वागत है। शिवा पटेल नगर गोंडा से शायद, या फिर शिवा पटेल आपका भी स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से वेलकम इन योर शो। और मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आपका भी दिल से स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। नागेश्वर धाकर का कहना है कि कुछ अलविदा इतने खामोश होते हैं कि उनकी आवाज जिंदगी भर सुनाई देती है। क्या ऐसा सच में होता है? चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना।

अगर दिल कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में हमने कौन है जो सपनों में आया मूवी का ये गाना एंजॉय किया है, हमारे केके गुप्ता जी की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। सो बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है उनकी प्लेलिस्ट का बहुत ही कमाल का नगमा। जी हाँ, अगली फरमाइश हमारे पास है अंग लग जा बलमा गाने की। आशा जी की आवाज में एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, मेरा नाम जोकर मूवी का, सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, तमन्ना अर्जू, आपका स्वागत है। सबलुस सावंत मुंबई से, रोशनी रावत, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अंग लग जा बालमा हमने एंजॉय किया है आशा जी की आवाज में। मेरा नाम जोकर का ये वाला नगमा हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से गौरा चौकी से। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय कर लेते हैं अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था क्या होगा क्या होगा जरा सोचना था। एंजॉय करते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारी अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था तलाश का ये नगमा अलका याग्निक की आवाज में हमने एंजॉय किया है अनुष्का की फरमाइश पर जो कि है श्रावस्ती से। और ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नगमों को एंजॉय करने के बाद में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल बस इतना ही कहना चाहेगी कि सुरीली यादों का ये सिलसिला चलता रहे, सुरीली यादों का ये सिलसिला चलता रहे, आपकी पसंद का हर नगमा दिल से निकलता रहे। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, मोहम्मद रफी जी की आवाज में एंजॉय करेंगे अब हम ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। अनिल शास्त्री जी को गोरखपुर से सुनना है गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है। सो एंजॉय करते हैं ये ऑल टाइम फेवरेट वाला गाना, सबके दिल में धक धक कर देने वाला नगमा हमारे अनिल शास्त्री की फरमाइश पर।

हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर हिट मोहम्मद रफी का नगमा ओल्ड इज गोल्ड नगमा हमारे अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर जो की है गोरखपुर से। बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन जब आपकी फरमाइशी गीतों को आपकी आरजे सिंपल प्ले करती है और हेडफोन में बहुत ही गहराइयों के साथ में उसको सुनती है और आपकी जज्बातों को फील करना चाहती है, सो कुछ ऐसा ही लगता है कि जुबान से कुछ कहें ना कहें ये गाने बहुत कुछ कह जाते हैं। जुबान से कुछ कहें ना कहें ये गाने बहुत कुछ कह जाते हैं। रेडियो ज्ञान स्थली के जरिए हम सीधे आपके दिल में उतर जाते हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है हमारे पास में है नीना की और नीना को सुनना है गाना ये मौसम। सो एंजॉय करते हैं झनकार बीट्स के साथ में बलमा मूवी का ये नगमा कुमार सानू की आवाज में हमारी नीना की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और कुमार सानू के साथ में आपको अलका याग्निक जी की भी प्यारी सी आवाज सुनने को मिलेगी।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा मॉनसून वाला नगमा। हाउ रोमांटिक वाला नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी नीना की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। एंजॉय करेंगे लखनऊ से आई हुई फरमाइश को। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि सफर में हम सफर कोई गीत हो जाए, सफर में हम सफर कोई गीत हो जाए तो महफिल का हर लम्हा संगीत हो जाए। क्यों, सही कहा ना। सो एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट फरमाइश, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। ये फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, आवाज है मोहम्मद अजीज और लता जी की, मूवी का नाम है राम अवतार। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक वाला नगमा।

जाने ना कोई चोरी चोरी का प्यार किसी से हो जाए। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही अतरंगी सा गाना और मैंने तो इस गाने को पहली बार सुना है। सो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास कोंडा से, उदित नारायण कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जो की है आवास विकास गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइशी गीत की तरफ। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में गाना इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को ना चाहे। सो एंजॉय करते हैं मेरे प्लेलिस्ट वाला नगमा मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे कोई किसी को ना चाहे,
1: तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी।
0: हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा हमारे मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शिवा पटेल की। शिवा पटेल को सुनना है गाना हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। एंजॉय करते हैं ये फरमाइशी गीत। इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा। मिलते हैं सीधे 9 बजे।
2: माँ की बर्थडे का सब

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
8: गुड इवनिंग।

ये पेपर से स्वागत है, इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। आपके अपने शो फरमाइशी में जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है सबलू सावंत की मुंबई से। सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है गाना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। सो एंजॉय करते हैं ये दर्द भरा नगमा हमारे सबलू सावंत की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

लूट लिया घर यार का और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना जिंदगी प्यार का गीत है इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राहुल कुमार स्टे ट्यून्ड। और जग्गू दादा आपका भी स्वागत है।

जिंदगी एक वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा, और जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है द एक्सपोज का गाना, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते, और कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम।

हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही सोलफुल म्यूजिक हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर जो कि है एमपी रीवा से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो निरंकार मिश्रा आपका स्वागत है, राहुल कुमार आपका भी स्वागत है। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना मेरी वफाएं याद करोगी। सो सैनिक मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं कुमार सानू आशा जी की आवाज में हमारी निशा की फरमाइश पर चुकी हैं पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

याद करोगे, रोगे फरियाद करोगे। हमने एंजॉय किया है ये नगमा निशा की फरमाइश पर। चले चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है मुकेश यादव की गोंडा से। एंजॉय करते हैं उनका फरमाइशी गीत और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, सो मच लव टू यू गाइज, सो मच केयर टू यू गाइज, बाय बाय, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, इस्तकबाल आप सभी को जी। और आज का कार्यक्रम है कालीन भाई, तो आज तो आपको गाना है और हमको सुनना है, हम सभी को सुनना है, तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, खजाने को खोल कर रखिए, हम लौटते हैं इस प्यारे से गीत के उस पार।

0: जी हाँ, यादें ही तो छोड़ जाता है इंसान, यादों के अलावा और शायद जिंदगी में कुछ बचता ही क्या है। बचती हैं तो सिर्फ यादें, यादें, यादें, याद याद याद, बस याद रह जाती है। जी हाँ, तो भाई आज तो आप हमारे श्रोता हैं और हम हैं रोज वाले श्रोता, आज हो जाते हैं वक्ता और रोज वाले वक्ता आज हो जाते हैं श्रोता। जी हाँ, तो देखते हैं हमारे साथ भाई कोई जुड़ चुका है और देखते हैं कौन हमारे साथ आज।
1: हाँ नमस्कार भैया।
0: अरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दर्द कुमार जी।
1: हाँ सही है।
0: और कैसे है? आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, पहले प्रणाम आपको।
1: हाँ
0: जी जी, आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो क्या बात है, आज की शुरुआत हमने दर्द कुमार जी से की है, तो कुछ दर्द ही सुनने को मिलेगा या कुछ रोमांस सुनने को मिलने वाला है?
1: चलो शुरू कर लेते हैं।
0: मतलब मौसम बहुत अच्छा है, तुमको लगा ऐसा नहीं कि आज दर्द कुमार जी रोमांस की तरफ जाएंगे?
1: दर्द दर्द का

0: तो कुछ असर रहेगा ही।
1: हाँ, जी
0: मौसम कोई भी हो तो ये खुशी गम तो साथ रहता ही है।
1: जी जी तो शुरू करते हैं।
0: है दुनिया फिर जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। दुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है सजदे के काबिल और वो दीवाना, के जो बन गया हो तस्वीर जाना। है सजदे के काबिल और वो दीवाना, के जो बन गया तस्वीर जाना। करो ऐतराज़ उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बर्बाद हो ना जिसकी अदा हो, दर्दे मोहब्बत उसकी दवा हो। बर्बाद हो ना जिसकी अदा हो, दर्दे मोहब्बत उसकी दवा हो। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। धन्यवाद।
1: वाह भाई वाह, क्या बात है। और एक कंफ्यूजन दूर हो गई मेरी कि मैं कई दिन से सोचता था कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और मुझको ये नहीं पता था कि ये धुन किसकी है। और आज आपने एक कन्फ्यूजन दूर कर दी कि वाह क्या बात है। है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, क्या बात।
0: हाँ तो
1: और वास्तव में अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, मोहब्बत में जिए, इसका मतलब आप जिए। क्या
0: बर्बाद मोहब्बत जिसकी दवा अदा हो, दर्द मोहब्बत उसकी दवा हो, सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का है।
1: हाँ, क्या बात है। और निरंकार मिश्रा जी ने लिख दिया है, बहुत अच्छा दर्द कुमार जी। देखिए अब आप लोग, अब आपको लोग सुरेश कुमार जी न कहकर दर्द कुमार जी कहने लगे।
0: अरे वाह, ठीक है, थैंक यू भाई,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ भाई, तो हमने शुरुआत कर दी है, हमारे साथ निरंकार मिश्रा जी हैं, बहुत तरस्पर्श आपको, और इट्स कुमार जी हैं, गोंडा में बारिश हो रही है। बिल्कुल साहब, अरे यहाँ तो जम के बरस, अभी थोड़ा सा थम के बरस, इसके बावजूद भी हम हल्का सा भीग कर ही स्टूडियो आए हैं। जी हाँ, तो बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही है। नीना जी हैं, आदाब आपको करते हैं। जी हाँ, और इट्स कुमार जी कैसे हैं आप? अरे कभी आप भी गाइए साहब, सुने आपके प्यारे से कंठ से प्यारी सी आवाज़, और तमन्ना आरज़ू, ये दोनों नाम क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नाम भाई। और विशाल बेदा जी लिखता है, नमस्कार मनु जी, जी आपको भी प्रणाम। और मुस्तफ़ा सोदी जी हैं, गुड इवनिंग सर जी, सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि भाई मुस्तफ़ा जी की आवाज़ भी कभी सुनने को मिल जाएगी। और हमारे कई सारे ऐसे श्रोता हैं जिनकी आवाज़ हमने अभी तक सुनी नहीं, तो हम चाहते हैं कि भाई उनकी आवाज़ भी हम तक पहुँचे। और आप लोग बहुत अच्छे गाने वाले हैं, आप लोगों से बहुत अच्छे कुछ लोग, तो भाई कुमार जी बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं, तो प्रीति शुक्ला जी देखिए क्या बात है, मतलब दूध हो गया होगा इनको, काफ़ी समय गाए हुए, हमको लगता है आज प्रीति जी से भी हम बिल्कुल घिसनेंगे। इम्तियाज अहमद जी मेरे साथ है भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको। और अब चलते हैं, देखते हैं कि भाई अगली कॉल हमारे पास कौन से ऐसे हमारे रोज के जो श्रोता हैं वो आज बनने वाले हैं वक्ता। हालांकि कार्यक्रम की आधारशिला, कार्यक्रम की नींव रख दी गई है, और आपका दूरभाष क्रमांक वही है 6393316429, यानी 6393316429। हिंदी में एक बार पुनः सुने, 6393316429। तो भाई मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, बिल्कुल देर मत कीजिए आप। काल तो करते हैं, बट सबको सरस्वती जी का वरदान कहाँ मिला है मनु जी, जैसे आपको मिला है। अरे क्या बात करते हैं, हमको कहाँ मिला है, हम तो आप लोगों से ही सीखते हैं साहब। और उसके नया शुक्ला जी आ चुके हैं, चरण स्पर्श आपको, और देखते हैं कोई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कौन है। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
1: दादा, यानी अनिल शास्त्री जी, हमारे गोरखपुर से दादा, चरण स्पर्श।
2: बहुत बहुत खुश रही है, बहुत तरक्की कीजिए
1: जी, बहुत अच्छा लगा। तो आज मौसम कैसा है गोरखपुर का? हाँ, आज गोरखपुर का मौसम कैसा है दादा?
2: मौसम दिन भर तो थोड़ा धूप छांव रहा है, लेकिन बारिश हल्की फुल्की हुई है साइड।
1: अच्छा, नहीं यहाँ जो है वो सुबह भी बरसा है और 8 बजे भी बरसात हुई है, और अभी भी रिमझिम रिमझिम, और इस पर तो गीत याद आता है, रिमझिम घेरे सावन। हाँ क्या बात है,
2: सही बात है। मौसम पे ही गाना सुनाऊंगा।
1: हाँ वो मैं जान रहा था कि आप मौसम को देखकर ही गाना सुनाएंगे, तो क्या मौसम है आशिकाना?
2: नहीं
1: आज मौसम बड़ा
2: जी, इसमें रफी साहब ने गाया है और उसमें मोहम्मद रफी जी ने गाया है
1: जी,
2: और धर्मेंद्र जी हैं। गाना गेस्ट कीजिए कौन सा है।
1: धर्मेंद्र जी हैं और रफी साहब की आवाज है, और गीत मौसम पर है। मौसम पर गीत है, रफी साहब की आवाज है, धर्मेंद्र है।
2: चलिए मैं ही बता देता हूँ
1: जी,
2: ओ आज मौसम
1: बड़ा बेईमान है आने वालों का। हा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। असल में हम ईमानदार आदमी है, तो बेईमानी की तरफ नजर गई नहीं, इसके लिए क्षमा चाहती हूं। जोक सपाट, वाह वाह, गीत अच्छा चुना आपने, आज मौसम बड़ा बेईमान है।
2: तो मैं आज यही बता रहा हूँ कि गोरखपुर में मौसम बेईमान आप लोग तो बड़ा ईमानदार है
1: जी।
2: तो मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बहुत।
1: जी जी शुरू करें।

जुमा बड़ा बेमान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेमान है, बड़ा बेमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है,

क्या हुआ है हुआ कुछ वही है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ

ऐसा कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम बड़ा बेमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, आई तूफान है, आज मौसम आज मौसम बड़ा बेमान है, आज मौसम काली काली घटा डर नहीं है, काली काली घटा डर नहीं है, और हवैया हवा भर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडिया है हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमान हो रहे हैं, सबको क्या क्या गुमान हो रहे हैं, और कली हमसे ये बन रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम बड़ा बेमान है, बड़ा बेमान।

0: क्या बात है दादा, क्या बात है। लगता है कि एकदम आपने मौसम यहाँ का बेईमान है और गोरखपुर के मौसम को आप कल बेईमान बना कर ही मानेंगे।
1: मैंने गोंडा के मौसम के ही बोला हूं।
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी।
1: इसमें कुछ शब्द मेरे से मिस्टेक हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या मतलब, देखिए मतलब शिल्पी ने लिख दिया है बहुत खूब दादा, और इसके बाद तीन बार नहीं चार बार, मतलब क्या नाइस। मुस्तफ़ा सऊदी जी ने आपको बहुत, क्या उस्मान खान ने लिखा है आज मौसम बड़ा बेईमान है, वेरी नाइस सिंगिंग, क्या बात है। विशाल बेदर जी ने लिखा है वाह क्या गाया है दादा, जिस फील से गाया है लगता है गोरखपुर में भी मौसम रंगीला है आज। और तेज नारायण शुक्ल लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग ब्रदर, जी हाँ बहुत अच्छा गीत उन्होंने बताया।
1: भाई हमें तेज नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, कम से कम वो आज हमारा गाना सुने और मुझे फिट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नहीं वो हमेशा आपके गीत सुनते हैं और हमेशा आपकी तारीफ करते हैं।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है
0: ये, और ये अच्छी बात है कि मौसम बेईमान है आप नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: अरे भाई गोरखपुर का बेईमान है नहीं है, आपके गोंडा का बेईमान है, इधर नहीं बरत रहे।
0: ठीक है तो मतलब हम यहाँ से गोरखपुर ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: अरे ट्रांसफर कर दिए सरकार, बहुत अच्छा लगेगा।
0: बस आप रात का इंतजार कीजिए, सुबह तक बारिश हो जाएगी।
1: ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप
0: जी, चरण स्पर्श,
1: खुश रहिए और बहुत तरक्की
0: जी। तो मतलब उनसे भी सुनेंगे हम क्या,
1: ये थोड़ा सा अभी किचन में है।
0: अच्छा
1: आती है तो मैं इसको सुनवाता।
0: ठीक है कहीं थोड़ा सा किचन में नहीं, पूरा किचन में रहे, लेकिन जब आए तो पूरी होकर आए। जी जी जी जी
1: ओके शिवरात्रि
0: जी, चरण स्पर्श
1: रही।
0: जी हाँ भाई, तो भाई श्री निरंकार मिश्र ने भी लिख दिया है बहुत सुंदर, क्या बात है क्या बात है भाई, आज मौसम बड़ा बेईमान है। और वास्तव में आज का मौसम गोंडा का तो है बेईमान, और रेडियो गणेश 89.6 FM कहा जाता है कि ये गोंडा शहर की धड़कन है, और इसका एहसास हमको लखनऊ से हो चुका है, और हमको लगता है भाई भाई आज मौसम पर कुछ गीत और होने वाले हैं। अब देखिए शिल्पी जी क्या गाने वाली हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो
2: नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार,
2: कैसे हो आप
0: जी? थोड़ा सा आप कहीं नेटवर्क में इश्यू आ रहा है क्या?
2: नहीं सर,
0: नेटवर्क में इश्यू आ रहा है क्या? थोड़ा सा आवाज़ आ रही है।
2: अब जा रही है आवाज
0: जी? अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत बहुत नमस्कार आपको
2: सर। नमस्कार
0: जी,
2: कैसे हो आप?
0: बढ़िया हूँ, आपका शुभ नाम?
2: सर मोहिनी तिवारी बोल रहे हैं गोंडा से।
0: जी मोहिनी जी, कैसी हैं आप?
2: हम ठीक है सर, आप अपना बताइए, आप कैसे हो?
0: आशीर्वाद आपका।
2: जी सर अच्छी बात।
0: तो क्या गाने वाली हैं आज आप खास?
2: सर आज मेरे पास दो सॉन्ग है, एक लता जी का एक रफी साहब का, बताइए। सो वही हम ट्यून करें आज की,
0: मतलब जिसमें आप लगता हो कि इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है वो, ये तो आपकी चॉइस होनी चाहिए।
2: सर दोनों है, बट आप जो बताइए, रफी साहब की आवाज में भी एक है और एक लता जी की आवाज में।
0: मुझे लगता है कि आपकी आवाज लता जी की आवाज से हल्की सी मिलती है, तो आप लता जी पर ट्राई कर सकते हैं।
2: जी सर, तो सर शुरू करें?
0: निसंदेह।
2: मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा तेरा ओ सजना, मेरा दिल अब तेरा ओ सजना, कैसा जादू फेरा

0: ना जाने दुनिया सारी और ना मेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, तेरा मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना, मोरनी बन के राहत को मैं बन जाऊं, मेरे पास रोम रोम बरस जाओ, तेरा दिल पे बसेरा ओ सजना, मेरा दिल अब तेरा, कैसा जादू फेरा ओ सजना, मेरा दिल अब तेरा ओ सजना, कैसा जादू फेरा ओ सजना, प्यार का बंधन जन्म जन्म का सांस के संग ही टूटे, सारे रंग फीके पड़ जाते, प्यार का रंग ना छूटे, तन मन घेरा ओ साजना, मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना, मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना। धन्यवाद सर
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्या बात है। और आप अगर ये गीत गाएंगी कंकड़िया मार के जगाया तो आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगेगा। अगले बुधवार को कोशिश कीजिएगा। क्या बात है, बहुत बहुत, बहुत शानदार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मोहिनी जी। जी बहुत अच्छा लगा आपका गीत सुनकर और आपसे बात करके।
2: बहुत सर, हमें भी मतलब थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था सॉन्ग सुनाते वक्त, बट थोड़ा छूट भी गया मुझसे।
1: हाँ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना है और डरने की तो कोई बात नहीं है। देखिए भाई, और मुस्तफ़ा कमल लैन जी कहते हैं भाई नाइस, मुस्तफ़ा जी ने लिख दिया भाई बहुत खूब, बहुत खूब, खूबसूरत गाया। और कमिल कमाल का गाया जी हाँ। देखते हैं कौन है हमारे साथ। और हेलो हेलो
3: हेलो,
1: अरे चरण स्पर्श
3: सर जी कैसे
1: जी, मतलब वर्सेटाइल सिंगर, मतलब आपको प्रणाम।
3: अरे सर थोड़ा होमवर्क मिला था तो हमने कहा कि सर जी की बात को जो है
1: हाँ अमल किया जाए। कुछ तो लोग कहेंगे हा?
3: जी।
1: अरे वाह, क्या मतलब, हम आपके लिए, इसके लिए तो हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
3: अरे सर वादा था, लास्ट टाइम में हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे।
1: हाँ
3: तो इस बार मैंने कहा कि मैं सुना दूं।
1: नहीं बिल्कुल, और हम बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं।
3: तो शुरू कर रहे हैं सर
1: निसंदेह।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, शानदार क्लैपिंग। और देखिए, हम नहीं, अनिल शास्त्री जी कर रहे हैं, शिल्पी क्या तुमने उसको उठाया, बहुत प्यार, बहुत अच्छा। और भाई इसके पश्चात भाई क्या बात है, उसके बाद कुछ तो लोग कहेंगे क्या खूब निया जी ने मैंने लिखा है आपको, क्या गीत सुना था मैंने, और हमको ये पूरी उम्मीद थी, और हमको मतलब ये होमवर्क था, और आपने पहली बार गाया है या इसके पहले भी?
0: नहीं, मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ सर, मैं इसके पहले मैं कभी नहीं गाना गई थी ये। मैं आर के सर जो गाते गाए थे एक बार, तो गाना तो मैं कई बार सुनी हूँ, जब उनके मुंह से सुना था मैंने लास्ट टाइम, उसके बाद आज मैं खुद गई हूँ। और सेकंड स्टैंजा मेरा परफेक्ट नहीं गया, बट हाँ फर्स्ट स्टैंजा थोड़ा ठीक।
1: अरे बहुत जबरदस्त, मतलब एकदम लग रहा था कि हम राजेश खन्ना को सामने देख रहे हैं, बैकग्राउंड से आवाज किशोर कुमार की आ रही है। यही तो खूबी है आपकी, क्या बात है, जो आपको दूसरों से एकदम भिन्न कर देती है। और दादा लिख रहे हैं भाई नाइस, निरंकार मिश्रा ने लिखा है भाई नाइस सिंगिंग। अब देखिए दादा तो हमेशा सच बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलो स्पर्श, जी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जी हाँ, ये रात का वक्त है, देखो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो आपसे भी यही कहेंगे कि भाई देखो बेकार की बातों में कहीं रहना बीत न जाए। जी हाँ, 10:05 हो चुका है, और अब तो एक एक मिनट हमारे लिए कीमती होता जा रहा है। जी हाँ, अभी जब फ़ोन चल रहा था तो फिर कई फ़ोन आए, और फिर कायनात जी भाई कभी आप भी अपने सुरीले कंठ से कुछ सुनाइए, जल्दी जल्दी मैसेज लिखो, मुझे निकलना है। अच्छा ये बात है भाई, तो फिर भाई ये ताबड़तोड़ सिंगिंग, क्या बात है, वाह क्या बात है, इट्स कुमार जी ने आपने लिखा है ताबड़तोड़ सिंगिंग। अब जी हाँ, तो 10:06:14 हो चुके हैं, और समय को व्यर्थ न करते हुए, जी हाँ आपका दूरभाष क्रमांक वही है 63-93, और हमारे साथ फिर कोई चुड़ चुका है, देखते हैं कौन है हमारे साथ।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: सर, मेरा नाम मनीष कुमार श्रीवास्तव है। हेलो सर
1: जी, नमस्कार। हेलो, मैं आरजे मनु बोल रहा हूँ।
2: जी सर, जी सर, जी सर, कैसे हैं आप?
1: जी आशीर्वाद आपका, आप कैसे हैं?
2: अरे सर मैं भी जो है सब ठीक हूँ सर
1: जी।
2: अरे आप तो जो है सब गुरु हैं सर, अब आप जो है सब गुरु हैं तो गुरुओं से जो है सर आशीर्वाद ही लिया जाता है
1: जी।
2: आप हमको मत कहिए कुछ
1: नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हो।
2: जी जी जी, अब आप जो है सर बड़े बड़े भाई के समान हैं सर, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो आज आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार में जुड़ने के लिए।
2: जी सर
1: जी, तो फिर क्या सुनाएंगे आप?
2: सर पहले तो मैं सारे श्रोताओं को जो है मैं अपना मैं परिचय भी दे देता हूँ।
1: जी
2: मेरा नाम मनीष कुमार श्रीवास्तव है।
1: जी।
2: मैं बस ये मैं एक सोशल वर्कर ही हूँ, एक प्राइवेट एनजीओ में मैं काम भी कर करता हूँ। तो बस एज ए सोशल वर्कर, यानी बस ये मानिए कि, और मेरा घर जो सर यही रोडवे बस स्टॉप, रोडवे बस स्टॉप के पास में ही है
1: जी,
2: डाक खाने वाली अंदर गली में।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे सुनने वाले क्या है आज?
2: सर हम एक जो है बस अब फिलहाल हम सारे श्रोताओं को, आपको भी पहली बार तो जो है मैं सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो है सर अब मैं सभी के सामने एक मुकेश जी का जो है एक गीत है
1: जी
2: जी, अब वही जो है मैं छोटा सा बस वो है कि थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहता हूँ
1: जी।
2: अरे सॉरी मुकेश जी का है, सॉरी जी नहीं।

0: मिलता है वो अजय जी का
1: जी।
0: जी सर
1: जी जी
0: हेलो
1: जी मैं सुन रहा हूँ
0: जी जी जी एक मुकेश जी का जो है सर गीत है जीना यहाँ मरना यहाँ।
1: अरे वाह जीना यहाँ मरना यहाँ शायद फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर।
0: जी सर जी सर जी,
1: जी
0: सर।
1: क्या बात है बहुत प्यारा गीत चुना है आपने
0: जी। जीना यहाँ

जीता है जब हमको आवाज दे, हम है यही, हम थे यहाँ अपने।

मेरे गीत जीवन संगीत हर कोई दोहराएगा, जग में हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। हम थे यहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीता

0: क्या बात है भाई, जीना यहाँ मरना यहाँ, क्या बात है। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही दुनिया की सबसे दर्दीली फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत आपने इतना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है
1: सर,
0: ठीक है, अगले बुधवार की प्रतीक्षा पुनः रहेगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजे अमन, रेडियो हॉट स्टार मतलब बिहार से। भाई आपका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। और इट्स कुमार जी हैं, और इसके पश्चात ये देखिए कुछ अभी भाई ये गुरु आ चुके हैं और शिष्य मतलब शिष्या बाकी है। भाई नीना जी आ चुकी हैं और नीना जी के साथ जो इनकी स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि भाई बुधवार को हम आएंगे, और फिर किसी ने कहा हम हूँ आई, तो बिल्कुल आ जाइए भाई, अपना नाम भी लेकर आइए। जी हाँ, कमल लैन हमारे साथ जी हैं। जी हाँ, क्या बात है, मुस्तफ़ा आचलपुर से हैं। ओ माई फेवरेट सॉन्ग जीना यहाँ मरना यहाँ, और रेडियो गणेश के लिए जो दूसरे चैनल के आरजे को भी श्रोता बनाते, देखा ना ये टैगलाइन कैसी है। अरे वाह क्या बात है, एस कुमार जी आपने तो एकदम क्या, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लिखा कीजिए, आप लिखते बहुत अच्छा है, और आपने जो लिखा है वो कभी सुनाइए मतलब अपनी सुरीली सी आवाज़ में, तो और बहुत अच्छा लगेगा। निरंकार मिश्रा जी ने बहुत सारे भाई क्या बात है आभार व्यक्त किया, बहुत खूबसूरत गाना गाया आपने, क्या बात है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और अब देखते हैं कौन है हमारे साथ तो पुनः। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूनम।
2: सर फिर से बताइए जरा मेरा नाम।
0: जी हाँ, मतलब पर्यायवाची है पूनम का, लेकिन वही है।
2: मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि ये नाम मुझे पसंद नहीं है।
0: नहीं मतलब आप पूर्णिमा के ही दिन पैदा हुई होंगी, इसलिए आपका नाम पूर्णिमा रखा गया। और पूर्णिमा
2: को ये नाम बहुत प्रिय है, मेरे दिल के करीब है।
0: हाँ, दिल के करीब है अपना नाम तो, दिल के करीब।
2: मुझे इसकी पर्यायवाची नहीं पसंद है, हकीकत ये है।
0: अच्छा चलिए, तो भाई हम आपको सिर्फ पूर्णिमा जी ही कहेंगे।
2: नहीं सर, जी जी हटा दीजिए, सिर्फ पूर्णिमा ही कहिए तो ज्यादा बेहतर है।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: कैसे हैं आप?
0: बस आशीर्वाद है आपका।
2: तो सर आज ना मैं आपको एक छोटा सा सुनाऊंगी
0: जी,
2: एक भजन क्या कहें, कुछ भी कह सकते हैं इसको, भजन ही कह सकते हैं, जो सुबह गाया जाता है।
0: सुबह गाया जाता है और आप हमको रात में सुनाएंगे।
2: अब क्या करें सर, आप सुबह का प्रोग्राम करते ही नहीं तो हम क्या करें।
0: बिल्कुल कोई बात नहीं, गलती हमारी है, हमने स्वीकार कर लिया।
2: अरे सर नहीं, गलती नहीं, आपकी टाइमिंग ही वही है तो हम क्या करें।
0: वही वही वही वही, चलिए तो फिर कहा जाता है जब से जागो तब से सवेरा, हम इसको सुबह ही मान लेते हैं
2: सर, लेकिन इसको इसमें शाम का भी वर्णन है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है,
2: तो हम सुनाते हैं आपको
0: जी।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, वाह। मतलब मेरे हृदय के बहुत करीब है ये भजन।
0: सर आपको पता है
1: जी, क्या
0: जब मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाती हूँ
1: जी
0: ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैं जब जल भरती हूँ तो मैं यही गाती हूँ।
1: चलिए, मतलब जो आपकी इच्छा होगी, जिस उम्मीद से आप जल चढ़ाती होंगी वो जरूर पूरी होगी।
0: नहीं नहीं मैं उम्मीद नहीं कह सकते, बस ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एक कह सकते हैं
1: जी।
0: और घर वाले सब करते हैं तो हम भी करते हैं।
1: नहीं, बहुत
0: तो अच्छा है, क्योंकि अपने जो है सुबह की शुरुआत इस तरह से करना अच्छा लगता कहीं ना कहीं।
1: नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है
0: जी। तो जो मैं पूरी पंक्ति इसको दोहराती रहती हूँ, जल भर के चढ़ा के फिर आती हूँ तो भी इसको दोहराती रहती हूँ।
1: बहुत अच्छा करती हैं आप, और भगवान ने आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। महादेव से, महादेव से प्रार्थना। हमारा तो स्टूडियो भी दुखरनाथ के पास ही है।
0: हाँ, तो बहुत भीड़ होती है।
1: नहीं नहीं, तो यहाँ से यहाँ की पुकार जल्दी सुन ली जाती है हम लोगों की।
0: नहीं नहीं सर, कहीं की पुकार कहीं भी सुनी जा सकती है, क्योंकि भगवान हर जगह होते हैं।
1: बिल्कुल, हर जगह।
0: और तो मुझे लगता है कि पैसा वेस्ट करना या दिखावा करना एक हिसाब से वेस्ट ही है।
1: नहीं, एक बात पूछा गया था कि जब भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर या मस्जिद की जरूरत क्यों, तो उत्तर मिला था
0: कि हवाएं तो सब जगह चलती
1: है। हाँ, लेकिन हवा सब जगह होती है, लेकिन फिर भी पंखा चाहिए उसे महसूस करने।
0: पंखा चाहिए, सही कह रहे हैं आप।
1: तो हमारी
0: मौका मिलता है तो जाया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है।
1: चलिए, बस अपने घर के सामने वही भोलेनाथ।
0: जी जी सर, तो मेरे घर के सामने ही है।
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या बात है, आपके भजन के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं।
0: जी सर, थैंक यू। नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार। जी हाँ भाई, तो ये पूर्णिमा जी हमारे साथ, और इसके बाद आजियामन जी कहते हैं रेडियो हॉट स्टार से मैं भी आ जाऊँ क्या? बिल्कुल आ जाइए भाई, बहुत खूबसूरत हो तुम। आपने पिछली बार सुनाया था हमको, याद है, और हमने आपसे वादा भी लिया था, और फिर देखते हैं भाई कौन हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं। हेलो,
2: नमस्ते
1: जी। नमस्कार,
2: आरजे अमन फ्रॉम रेडियो हॉट स्टार, आपने याद किया और मैं हाजिर।
1: क्या बात है आरजे अमन जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बस आपकी
2: मनु जी। और सच में अभी किसी ने कहा कि रेडियो का स्थली ऐसा है जो दूसरे स्टेशन के आरजे को भी मतलब लिस्नर बना देता है। बिल्कुल, मैं तो आपका एक लिस्नर बन चुका हूँ, दीवाना बना दिया आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात के आरजे आकांक्षा जी, हाय क्या बात है, उनकी आवाज का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। और बहुत ही अच्छा शो करती हैं वो,
1: बहुत अच्छा शो करती हैं वो
2: जी, बहुत ही अच्छा। मतलब जितनी तारीफ करिए उतनी कम है, मैं तो यही कहूंगा।
1: नहीं, बहुत हमारे मतलब एफएम की शान है वो
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने उनका सुना तो क्या करूं, मतलब मैं तो ये दंग रह गया। वो इतना प्यारा शो करती हैं, मतलब उनके जैसा वो तो यानी वर्ल्ड का बेस्ट लेवल नंबर वन आरजे है, मैं यही कहूंगा उनके लिए।
1: सही बात है, क्या बात है, क्या बात है
2: जी। लेकिन आज तो मेरे मतलब अभी आपके फोन लगाने से पहले मुझे खांसी जबरदस्त आई है, पता नहीं मैं गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा, थोड़ा सा गला साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर आपकी इजाजत होगी तो दो गाने मेरे सामने दिख रहे हैं, एक तो ये भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, और दूसरा छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो कौन सुना दूं बताइए?
1: वो भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने।
2: चलिए तो भरी दुनिया में ही सुनाता हूँ, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना है, है ना? और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों को पसंद आए। और ये फिल्म
1: दो बदन
2: का गाना है
1: जी
2: जी जी, दो बदन का गाना है ये, और जिसे यानी शकील बदायूं ने लिखा है और इसका संगीत दिया है रवि जी ने, है
1: ना? जी बिल्कुल
2: बिल्कुल। और ये गाना सभी दोस्तों को डेडिकेट है, आरजे सोनी जी को डेडिकेट है, जिन्होंने आरजे सोनी जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ लाया। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा चैनल दिया। मैं तहे दिल से उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी, आपने मुझे इतना प्यारा चैनल दिया और इतने प्यारे प्यारे लोग और इतने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलाया, थैंक यू सो मच। और क्या कहते हैं, और आकांक्षा जी को भी मेरा गाना डेडिकेट रहेगा, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और हाँ, स्पेशली वहाँ पे यानी कि चैट बॉक्स में है यानी कि कायनात जी, उनको भी डेडिकेट है, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी को।
1: जी जी,
2: तो सुना दो
1: जी। निसंदेह
2: भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने।

जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है। ऐ है सर क्या बात है, जिन्हें जलने की हसरत है वो पर

आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया सुनाना भी जिन्हें मुश्किल छुपाना भी जिन्हें मुश्किल सुनाना भी जिन्हें मुश्किल छुपाना भी जिन्हें मुश्किल छुपाना भी जिन्हें मुश्किल जरा तू ही बता ए दिल जरा तू ही बता ए दिल वो अफसाना।

आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, है आलम बेकरारी का, समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता।

0: आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया।
1: क्या बात है भाई अमन जी, अगर गला खराब है तो ये हाल है, तो अगर ठीक हो गया तब तो क्या हाल होगा।
0: थैंक यू सो मच एक्चुअली मतलब इस गाने को गाना बहुत ही इसमें यानी कि टान है, है ना?
1: जी,
0: बहुत ज्यादा इसमें खींचना पड़ता है इस गाने के लिए।
1: और बहुत लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, और मैं
0: थैंक यू सो मच
1: से भी है, सुजीत के ने कहा है भाई, पूर्णिमा जी की बहुत तारीफ हुई है, राम कृष्णन मिश्र ने भी लिखा है भाई गुड इवनिंग और बहुत तारीफ की, और क्या बात है भाई, कन्या जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा लगा है, अगर गलाप खराब गला है तो ये हाल है, प्रमुख कुमार जी आ चुके हैं, वाह वाह वाह क्या बात है भाई।
0: थैंक यू सो मच, सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हौसला अफजाई करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये आप सबका प्यार है कि जैसे मतलब मुझ जैसे भी कुछ यानी टूटी फूटी आवाज में मैं गा लेता हूँ।
1: क्या बात है भाई, शिल्पी जी ने भी आपकी तारीफ की है जो खुद बहुत अच्छा गाती है, वाह क्या बात है।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए।
1: जी,
0: और सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, आप बहुत अच्छा शो करते हैं, और आपका जो अंदाज है बोलने का वो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: अरे नहीं, बस आप जैसे लोगों से थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो बोल लेते हैं।
0: नहीं सर, मैं आपसे सीख रहा हूँ, और सबसे ज्यादा तो आकांक्षा जी से सीख रहा हूँ।
1: जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर।
0: जी,
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमन जी, और उम्मीद करते हैं कि अगले बुधवार।
0: और सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर से मतलब नमस्कार करना चाहूंगा, एंड गुड नाइट, शब बखैर, थैंक यू सो मच।
1: जी, शब बखैर, आपको भी, फी अमान अल्लाह। यहाँ कोहिनूर के भी नूर है आप, तुम इतनी जल्दी तारीफ न करते, आप वाकई काल्पनिक नागमणि की उपमा हो, बेहतर शब्द सामंजस्य और बेहतर लय तुक यति गति का समावेश, क्या बात है भाई। और इस प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, यहाँ सुजीत जी मैं आपको बताऊँ कि हमारे रेडियो का नंबर है, आप नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ 6393316429, 6399 आप इस नंबर पर कॉल करें और पार्टिसिपेट करें, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी प्रणाम, हम अच्छे हैं, आपका शुभ।
2: मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नगर कुतवाली के साथ।
1: अरे वाह रविंद्र जी, कैसे हैं आप?
2: अरे आप ठीक है, बस लास्ट टाइम हमारा नंबर मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।
1: अरे नहीं, अब क्या बात है, मतलब आपको कैसे नहीं छोड़ देंगे हम, कैसे नहीं सुनेंगे,
2: बस समय नहीं बर्बाद करेंगे, गाना गाएंगे मोहम्मद रफी के आवाज में।
1: जी
2: मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
3: अब स्टेंजा सुनिए। हेलो,
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर।
2: तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा, अगर मर जाऊं भटकेगी तेरे इंतजार में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, ही कहता हूँ कि हमको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के गाना पूरा हो गया, ये दो स्टेंजा थे इसमें।
1: क्या बात है, लेकिन आज आपने बहुत खूबसूरत गाया भाई। और प्रमुख कुमार जी लिखते हैं, वाह क्या आवाज है, जाते जाते सर आपने तो चार चांद लगा दिया शो में,
2: और हमने 10:30 बजे तक खत्म भी कर दिया।
1: जी जी जी जी जी, बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारी आवाज।
2: समय मिला इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।
1: नहीं नहीं,
2: और आखिरी टाइम फोन उठा लिया आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हम क्यों नहीं फोन उठाएंगे सर, हम तो इसीलिए हैं।
2: ओके धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको।
2: आपको भी
1: जी, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं।
2: अरे बस और का, आप सभी का, गोंडा वासियों का, गोंडा वासियों के बाहर जहाँ जहाँ आवाज जा रही है सबको बहुत बहुत प्रणाम
1: जी
2: मेरी तरफ से, और सभी का शुभ दिन मंगलमय हो
1: जी,
2: और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आगे बढ़े
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ निरंकार मिश्रा लिखते हैं, मनु जी आपका शो बहुत मन को भाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, ये तो आपका बड़प्पन है भाई। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हमारे पास 5 मिनट शेष है, और ये 5 मिनट जो शेष है वो बहुत विशेष है जी। हाँ हमारे साथ आशु मिश्रा जी हैं भाई, कितने महीने हो गए, मतलब इतनी प्यारी आवाज़ आपकी, आपकी बेटी की इतनी प्यारी आवाज़, और नहीं सुना हमने भाई, क्या कुछ अगर हमसे भूल हो गई हो अनजाने में तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं भाई आशु जी हम बिल्कुल लखनऊ। और ये भी बताइए कि लखनऊ का हाल कैसा है जी। और धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, आवाज़ विकास कॉलोनी से, क्या बहुत ही अच्छे श्रोता, बहुत ही जानकार श्रोता। और अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। चरण स्पर्श, मैं जानता था कि ऑल इज वेल इफ फीन्स वेल।
4: थोड़ा हमारे यहाँ एक पार्टी थी, वहाँ मित्र के यहाँ
1: जी,
4: उनसे 4-6 लोग बैठे थे, तो हमने कहा आपका वो लगाया, हमने कहा देखो, तो उसके बाद ऐसे बात बात हुई थोड़ा बहुत, तो हमने कहा हम भी मिला दे।
1: अरे क्या बात है,
4: थोड़ा सा गड़बड़ वड़बड़ होगा तो ध्यान न दीजिएगा।
1: नहीं नहीं, आज जो आपने अभी शिल्पी जी ने बताया हमको कि आपने क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्होंने पहली बार वो आपके मुंह से सुना था और आज वो गीत उन्होंने पूरा गाया, और उन्होंने कहा कि आपसे इंस्पायर्ड होकर के गाया, हमने कहा था कि उनसे कि गाइएगा,
4: वही सुना दे,
1: मतलब वो गीत उन्होंने गा दिया है, मतलब
4: चलिए चलिए,
1: मतलब बहुत अच्छा लगा,
4: जैसा मौका वैसा ही गाना सुनाते।
1: जी जी जी,
4: शुरू करें
1: जी, निसंदेह।
4: लाल
1: हाय

0: चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर हो, चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर होंगे लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा।
1: क्या बात है। और आपको बताएं कि पिछले बुधवार को आप नहीं थे और शिल्पी जी ने कहा था कि हम आर के श्रीवास्तव सर जी को सुनना चाहते हैं।
0: एक्चुअल में हमारा वो सब लाख वाक किसी ने कर दिया। आप यहाँ तो एक से हम तो बहुत इसको बड़ा पसंद करते थे आपके एफएम को
1: जी,
0: लेकिन थोड़ा मन में जब खींच जाता है किसी चीज से कि यार हम कभी किसी को अगर मतलब कुछ कभी कहते नहीं है, ये सब हरकतें जब होती है तो हम ये तो अब आपसे इतना हमारे अच्छे संबंध है कि मैं उसी
1: रिगार्ड में यह समझ लीजिए। नहीं देखिए सर, चैट बॉक्स की अपनी एक गरिमा है और कुछ लोग अगर कह जाता है कि गांव में कहावत है कि वो चीलर के डर से कोई कथरी नहीं फेंकता है, तो मतलब
0: नहीं, ये सब चीजें एक्चुअल में एक चीज और देखिए
1: जी,
0: अब जो भी इसमें है हमको तो पता है सर
1: जी जी,
0: लेकिन उनसे बड़े बड़े हमारे बच्चे
1: जी जी,
0: ठीक है।
1: तो मतलब
0: ये सब चीजें अच्छा आदत है थोड़ा सा, हम भी अवॉइड करते हैं कि चलो लड़के हैं बच्चे हैं कर दिया कुछ, लेकिन अब जब वो लाख हो गया तो हमको ये तो डायरेक्ट आपको एक बार मिलाए थे
1: जी,
0: फिर हमने देखा तुमने जो है वो कर रखा था रिकॉर्ड क्या कहते तो उसको अपने उसमें लिस्ट में एफएम डाल करके रखा था 63 92 93 कौन नंबर
1: जी जी,
0: उसको मिलाया तुमने कहा अच्छा हो सकता आप देख लीजिए हो।
1: अरे
0: ठीक है,
1: बहुत अच्छा लगा भाई। और शिल्पी जी ने भाई आपकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि भाई वेलकम आर के सर जी। और आशु मिश्रा ने लिखा है आर के सर बहुत खूब, शिल्पी जी ने आपको बहुत सारे स्टार्स दे दिए भाई,
0: हमारी बहन तो हमारी तारीफ हमेशा करे।
1: और निरंकार जी लिखते हैं वाह वाह ये लाल रंग बेहतरीन गाया मजा आ गया। और भाई धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं वाह क्या बात है भाई आपने तो पूरी महफिल उतार दी। वास्तव में मतलब आपके हिस्से में मतलब जो आखिरी का समय आता है वो बहुत शानदार होता है।
0: ये सब प्यार है लोगों का और जो लोग मानते हैं वो ऐसा करते हैं और हम तो सुन भी नहीं पाते हैं, तो आज अभी बैठे थे तो भाई याद आया, हमने कहा अच्छा लाओ यार आज तो बुधवार है तो देखा टाइम हो गया, अच्छा चलो आज मनु है तो फोन हमारा उठा ही नहीं, तो हमने सबको डायरेक्ट मिलाया था। चलिए फिर ठीक है,
1: देखिए आपके लिए एक आदेश आया है आपकी बहन का, शिल्पी ने लिखा है आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सर जी।
0: तो मैं मेरा वो लोड नहीं हो पा रहा है,
1: तो
0: जब मैं वो पता नहीं क्या पासवर्ड वर्ड सब टूट गया कैसे हो गया
1: वो आप
0: अच्छा, तो हमारा भतीजा आया है
1: जी,
0: तो वो क्योंकि उसी में है आईटी सेक्टर में, उससे कल दिखाते हैं
1: जी बिल्कुल। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार पुनः आपका वो प्यारा चीज दिखाई पड़ेगा।
0: चलिए ठीक है
1: जी,
0: अरे हम तो बहुत चाहते हैं, जब खाली वाली रहते हैं तो फिर वो कौन जाए करे, वो जब कुछ होता नहीं सर बिना रिएक्शन के मजा नहीं आता है।
1: हाँ।
0: तो थोड़ा बहुत रिएक्ट होना चाहिए ना।
1: बिल्कुल होगा, मतलब हमारे शो में नहीं होगा, बाहर गजल में नहीं होगा तो कहाँ होगा।
0: सबका लगभग शो सुनता था, सब हमारे बच्चे हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और कोई भाई है कोई बहन है कोई बच्चे हैं, और हमारा एक्चुअल में आपको मैं सच बता दूं रियल बात
1: जी,
0: मैं बड़ा प्राउड फील करता था एफएम पे।
1: नहीं करते हैं सर ये
0: आपके, आपके जो डायरेक्टर साहब हैं और वो बड़ी दीदी हैं, जिस दिन एनुअल फंक्शन हुआ था, अब इससे बड़ा रिगार्ड क्या, मैं सिंपल ड्रेस में गया था, कोई मैं बहुत बड़ा हाइप हुआ है मतलब वो नहीं लग रहा था, और उन लोगों ने फ्रंट सीट के अगल बगल मुझे बैठाया। तो देखिए ऐसे जगह पे जहाँ इज्जत मिली होती वहाँ से हटना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो लोग बड़ा रिगार्ड दिए, तो उस वजह से हमने स्वग्राम से एकदम दूसरे से कहा था कि यार हमको तो दूसरी बार इतनी इज्जत मिली है, पहली या तो शादी में मिली थी या कल तुम्हारे फंक्शन में
1: नहीं, और तो फिर तीसरी बार हर बुधवार को आपको

0: सम्मान मिलता है इस चैट बॉक्स में?
1: भूल जाते हैं, देखिए मानू जी, जब कोई चीज में टच में ना रहो
0: जी
1: तो भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है। अब आप जब दिमाग में रहता है तो हम टाइम वाइम निकालते हैं
0: जी, हम आपको याद दिला दिया करेंगे हर बुधवार को।
1: ये ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे हम जब भी आते हैं तो 10 बजे रात में, दिन भर हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है, हम इधर ही उधर देखते हैं, आप कहाँ घर पे मिलते हैं
0: जी जी जी।
1: 10 बजे रात में ही 2-4 रील वगैरह ये बनाए या कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाए, बस ऐसे रहता है। चलिए ठीक है,
0: बिल्कुल। और ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? जी हाँ, अगले बुधवार को देखते हैं कि ये लाल रंग छोड़ दिया कि नहीं, मौसम के अनुसार।
1: क्योंकि आप आने यार हैं, इस वजह से कुछ बात नहीं कर सकते।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चल स्पर्श,
1: ओके, खुश रहिए खुश रहिए।
0: जी हाँ, उस्मान खान ने भी लिख दिया है, भाई भाई वाह वाह क्या बात है जी। और घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, तो शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस शो को सफल बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीना इसी का नाम है। अब तक आपने सुना नेहा के पति सागर की तबीयत कुछ खराब थी, कुछ रिपोर्ट्स आने वाली थी जिसको लेकर नेहा चिंतित थी। तभी उसे रिया अपने घर की तरफ आती दिखी। रिया उसके पति सागर की बहुत पुरानी दोस्त थी और उन दोनों की करीबी से नेहा को कुछ उलझन सी भी होती थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब आगे डोरबेल की आवाज से नेहा की तंद्रा भंग हुई। हाथ में खूब सारे पैकेट लेकर रिया अंदर आई। सब पैकेट्स टेबल पर रखकर सीधे सागर को देखने बेडरूम में गई। कुछ आहट पाकर सागर ने आंखें खोली। कैसे हो, रिया ने पूछा। ठीक हूँ, सागर मुस्कुरा दिया। कुछ नाश्ता लेती हूँ, आई हूँ, चलो सब खाते हैं, रिया बोली। नेहा ने कहा, तुम खा लो, मेरा मन नहीं है। रिया ने नेहा को स्नेह पूर्वक अधिकार के साथ आंखें दिखाई। चुपचाप खा लो, अभी तुम्हारा राजकुमार भी स्कूल से आने वाला होगा, फिर उसकी सेवा में लग जाओगी। चलो अब शांति से बैठकर कुछ खा लो। नेहा अब मना नहीं कर पाई। वो सागर के लिए फल काट कर लाई और अपने दोनों के लिए चाय। सागर ने दो टुकड़े ही खाए थे कि फिर उसके पेट में तेज दर्द उठा, वो पसीना पसीना हो गया। नेहा फिर घबरा गई। रिया ने कहा, रहने दो सागर, तुम कुछ मत खाओ, अब रिपोर्ट्स आ ही जाएंगी, पता चलेगा कि क्या परेशानी है, लो थोड़ा पानी पियो। रिया ने सागर के मुंह में दो चम्मच पानी डाला। नेहा के हाथ पांव फूल रहे थे। रिया ने कहा, अब तुम लोगों का डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो रहा है, मैं यहीं रुकती हूँ, यश स्कूल से आएगा तो मैं उसे देख लूंगी। नेहा ने उसकी तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा तो रिया हंस पड़ी। ज्यादा मत सोचो, तैयार हो जाओ, कभी मेरी तबीयत खराब होगी ना तो इतनी सेवा करवाऊंगी कि याद रखोगे। दर्द में भी हंसी आ गई थी सागर को, बोला, तुम हमेशा बकवास ही करना। रिया ने सागर को घूरा तो नेहा दोनों को देखती रह गई। अक्सर दोनों की खुली दोस्ती समझने की नेहा कोशिश ही करती रह जाती थी। यश स्कूल से आ गया तो नेहा उसके साथ व्यस्त हो गई। रिया आराम से सागर के पास बैठकर बातें कर रही थी। अब तक यश भी रिया से काफी घुल मिल चुका था। यश को रिया के पास छोड़ सागर और नेहा अस्पताल चले गए। नेहा रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के रूम से बाहर अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रही थी। सागर निढाल बैठा हुआ था। नेहा चिंता मग्न थी, उसकी शादी को 8 साल ही तो हुए थे। सागर के पेट में काफी समय से बहुत तेज दर्द की शिकायत थी। वो कोई पेनकिलर खा लेता था, दर्द ठीक हो जाता था, पर इस बार नेहा की जिद पर वो अपना चेकअप करवाने आया था।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीना इसी का नाम है। अब तक आपने सुना नेहा के पति सागर को काफी दिनों से पेट में दर्द की शिकायत थी। नेहा के बहुत कहने पर वो डॉक्टर के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन उसकी स्थिति चिंताजनक थी। शरीर दिन पर दिन गिरता जा रहा था और दर्द बढ़ता जा रहा था। अब तो कुछ भी खाने में तकलीफ हो रही थी। सागर की दोस्त थी रिया। नेहा को उन दोनों की दोस्ती समझ नहीं आती थी, पर वो कुछ कह नहीं पाती थी। और आज उसी रिया के सहारे वो अपने बच्चे और अपने घर को छोड़कर सागर को लेकर अस्पताल आई थी। अब आगे बहुत सारे टेस्ट हुए थे। अपना नंबर आने पर नेहा डॉक्टर सतीश के हाथ में रिपोर्ट देते हुए मन ही मन बहुत घबरा रही थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग उठी थीं। वो सागर की गिरती सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद थी। डॉक्टर की गंभीरता देखकर तो सागर भी असहज हो उठा। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब, सागर ने पूछा। नहीं मिस्टर सागर, कुछ ठीक नहीं है। आपको आंतों का कैंसर है। नहीं डॉक्टर, नेहा लगभग चीख ही पड़ी। ये कैसे हो सकता है? सागर तो जैसे पत्थर का हो गया था। ज्यादा चिंता ना करें, आप एडमिट हो जाइए, इलाज शुरू करते हैं। कीमोथेरेपी होगी, आजकल हर बीमारी का इलाज है। आप लोग देर ना करें, इलाज शुरू करते हैं। लगातार बरसती आंखों से सागर को एडमिट करवाकर नेहा फिर डॉक्टर के पास गई। पूछने लगी, डॉक्टर सागर ठीक तो हो जाएंगे ना? कोशिश तो पूरी की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके पास मुश्किल से 6 महीने ही हैं। कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है, डॉक्टर ने कहा। अपने आप को संभालती रोती सिसकती नेहा ने रिया को सब बताया तो उसे भी तेज झटका लगा। फिर तुरंत अपने आप पर काबू करते हुए कहा, तुम वहीं रहो, मैं रात को भी यहीं घर पर रहूंगी। कल यश को स्कूल भेज अस्पताल आ जाऊंगी, फिर तुम फ्रेश होने घर आ जाना। किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। नेहा को समझा कर तसल्ली देकर फोन रख कर रिया भी फूट फूट कर रो पड़ी। ये क्या हो गया, उसका दोस्त इतनी बड़ी बीमारी के चपेट में आ गया, अब क्या होगा? नेहा कैसे अकेले सब करेगी? इन दोनों का तो कोई यहां है भी नहीं। अब उसे ही इनका सहारा बनना होगा। अगले दिन यश को स्कूल भेज, सबका खाना बना, मेड से घर की साफ सफाई करवा कर रिया अस्पताल पहुंच गई। वो सामान्य ढंग से सागर और नेहा से बातें करती रही। सागर तो अब मानसिक रूप से भी निढाल हो चुका था। उसने नेहा को जबरदस्ती घर भेज दिया। उसके वापस आने तक रिया सागर से हमेशा की तरह हल्की फुल्की बातें करती रही। एक दो बार सागर को हंसा भी दिया। फिर सागर भी थोड़ा सहज होकर बातें करता रहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीना इसी का नाम है। अब तक आपने सुना रिया के पति सागर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। वो दोनों बिल्कुल हताश थे और इस समय उनका एकमात्र सहारा बनी थी सागर की दोस्त रिया। उसने उनके घर को और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी। अब आगे नेहा वापस आई तो तीनों अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करते रहे। अब यही नियम बन गया, रात को रिया ही यश के पास रहती। वो अपना काफी सामान नेहा के घर ही उठा लाई थी। यश को स्कूल भेजकर वो भी अस्पताल चली आती। फिर यश के आने के समय नेहा घर आ जाती, उसके साथ कुछ समय बिताकर रात को फिर सागर के पास चली जाती। एक हफ्ता सागर अस्पताल में एडमिट रहा। कीमो का पहला सेशन सागर के लिए काफी कष्टप्रद रहा। सागर की पीड़ा देखकर नेहा तड़प जाती, आंखें हर पल भीगी रहती। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा अब ये घर जा सकते हैं, इलाज तो चलता रहेगा, इन्हें हर हफ्ते कीमोथेरेपी के लिए आना है। बहुत सारे निर्देशों के साथ तीनों घर पर लौट आए। रिया ने ही सागर के ऑफिस फोन करके सबको जानकारी दे दी। सबको सुनकर बहुत धक्का लगा। फिर सागर से मिलने जान पहचान का कोई ना कोई आता रहता था। वैसे तो मुंबई में हर व्यक्ति व्यस्त ही रहता है, पर जिन पड़ोसियों से आते जाते जान पहचान हो गई थी उन्हें रिया ने सागर की बीमारी का हल्का सा संकेत दे दिया था। रिया को महसूस हुआ था कि सागर को कभी भी तबीयत खराब होने पर समय असमय अस्पताल लेकर भागना पड़ सकता है, सो कम से कम कोई पड़ोसी तो ऐसा हो जिस पर नेहा भरोसा कर सके। कीमोथेरेपी के हर सेशन में रिया ही नेहा और सागर को अस्पताल लेकर जाती। नेहा को ड्राइविंग नहीं आती थी, रिया को जैसे हर चीज की जानकारी थी। कीमो के सेशन हो रहे थे पर सागर की हालत में कोई सुधार नहीं दिखता था। उसके दर्द से नेहा कांप जाती थी। कभी चुपचाप बैठी रिया के बारे में सोचती तो पलकें आंसुओं से भीग जाती। ये कैसी दोस्ती है जिसने उन लोगों के लिए अपना हर सुख हर आराम भुला दिया है। उसे अब समझ आया था कि दोस्ती तो एक ऐसा सच्चा रिश्ता है जो किसी मांग पर आधारित नहीं है, एक आंतरिक अनुभूति है, स्वार्थ से परे है। कई हफ्ते बीत रहे थे पर सागर की हालत में कोई सुधार नहीं था। अब तो नेहा को जैसे हर पल अनिष्ट की आशंका बनी रहती। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सागर सोया तो उठा ही नहीं। नेहा चीत्कार कर उठी, उसकी चीख सुनकर पड़ोसी भी आ गए। नेहा और यश को अपनी बाहों में भरकर रिया भी फूट फूट कर रो पड़ी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीना, इसी का नाम है। अब तक आपने सुना सागर कैंसर की लड़ाई हार गया और इस दुनिया से उसने विदा ले ली। नेहा और यश अकेले रह गए। इस पूरे इलाज के दौरान उन लोगों का साथ दिया सागर की दोस्त रिया ने। उसने सागर से अपनी दोस्ती के वास्ते अपना तन मन धन सब कुछ इस परिवार के ऊपर न्यौछावर कर दिया। अब आगे अंतिम संस्कार के बाद यश के सिर पर हाथ रखते हुए सागर के भैया रवि ने कहा, नेहा मेरे साथ चलोगी? नहीं भैया, नेहा बोली। वहीं बैठी रिया ने कहा, भैया आप चिंता ना करें, मैं यही हूं यश और नेहा के साथ। पर तुम भी कब तक देखोगी? रवि बोले, हमेशा भैया, इसमें परेशानी क्या है? रिया का जवाब था, फिर भी रिया कल तुम्हें अपने भी तो काम होंगे। रवि बोले, नहीं भैया, नेहा और यश से बढ़कर मुझे कोई काम नहीं होगा। मेरे दोस्त के अपने मेरे अपने हैं अब। रिया ने दृढ़ता से कहा, रिया ये भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है, कल तुम्हारी शादी होगी, परिवार होगा। रवि ने उसे समझाते हुए कहा, वो जब होगा तब देखा जाएगा भैया, फिलहाल तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। भैया आप चिंता ना करें, मैं हूं इनके साथ। रवि इस प्रेम मित्रता और इंसानियत की मूरत को देखता रह गया। उसकी आंखें रिया के प्रति सम्मान से भर उठीं। एक हफ्ते बाद रवि चला गया। नेहा बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। कभी रिया के गले लगकर तो कभी यश को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती रहती। रिया ने अपनी छुट्टियां और बढ़ा ली थीं। उसने नेहा और यश की पूरी देखभाल की। उसकी कोशिशों से नेहा सामान्य होने लगी। नेहा सामान्य हुई तो रिया ने ऑफिस जाना शुरू किया। वो अपना सारा सामान नेहा के ही घर पे ले आई थी। सागर की सारी जमा पूंजी, बीमे की रकम, सब जानकारी नेहा को दी। हर पल उसे यश के लिए जीने का हौसला बंधाती रहती। 4-5 महीने और बीत गए। नेहा को अब यश के भविष्य की सुध आई। उसने रिया से कहा, रिया क्या मुझे नौकरी मिल सकती है कहीं? क्यों नेहा, मैं हूं ना, सब कर लूंगी, रिया बोली। कब तक? रिया प्लीज मेरी नौकरी ढूंढने में मदद करो, नेहा बोली। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो देखती हूं, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, रिया बोली। रिया ने हर तरफ कोशिश करते हुए घर से थोड़ी ही दूर स्थित एक अच्छे स्कूल में नेहा के लिए टीचिंग की जॉब ढूंढ ली। मुस्कुराते हुए रिया से बोली, ये स्कूल घर के पास भी है, यश का एडमिशन भी यहीं करवा लेंगे, दोनों माँ बेटा साथ आना जाना, खुश? नेहा ने रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। रिया कुदरत ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही भेजा था, तुम्हारा एहसान मैं, कहते कहते नेहा का स्वर भर्रा गया। चलो तुम्हें मेरी कुछ कद्र तो है, एक नालायक से दोस्ती की थी वो तो छोड़कर ही चला गया, कहकर मुस्कुराने की कोशिश करते करते रिया का भी गला रूंध गया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ीं।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो कानों से होकर दिल तक नहीं, सीधे यादों तक पहुंच जाती हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुना नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। हर अंतरे में बीता हुआ कल चुपचाप मुस्कुरा उठता है।
2: कभी किसी शाम की तन्हाई में रेडियो की हल्की सी आवाज, कभी बारिश की खिड़की के पास चलती हुई एक पुरानी सी धुन, और अचानक जिंदगी कुछ पल के लिए फिर वही बन जाती है जो कभी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: फिर से लेकर के आए हैं रात के सफर में भूले बिसरे गीत, और भूले बिसरे गीतों में आज जिस हम कलाकार को लेकर के आए हैं, जिस संगीतकार को लेकर के आए हैं, उनका नाम है शारदा। शारदा जी ने कई ऐसे संगीतकारों के साथ में काम किया, लेकिन उनकी धुनों को, उनकी संगीत को हम आज भी बड़े ही चाव से और अपने दिलों में उनकी आवाज को बसा लेने के कारण आज भी सुनते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को हम दोनों लोग, आरजे ख्वाहिश एंड आरजे
1: गुमसुम।
2: तो दोनों लोग मिलकर के आज फिर से एक नए सफर की ओर चलते हैं, एक प्यारे से नगमे के साथ।

0: शारदा जी, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1937 को तमिलनाडु के एक पारंपरिक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उन्होंने अपने दादाजी से संस्कृत और वैदिक संस्कृति की शिक्षा ली, जो कि उनके संगीत में हमेशा नजर आती रही।
1: कहा जाता है कि संगीत की ट्रेनिंग यानी संगीत सीखने के साथ साथ उन्हें महसूस किया जाता है। एक दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि उन्होंने बचपन में कभी भी शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक की कोई औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं ली थी। वे केवल स्कूल और घरेलू कार्यक्रमों में ही गाया करती थी। तो यहीं से शुरू होता है उनके इस अपने संगीत का सफर, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हमें प्रारंभिक शिक्षा अपने घर की पाठशाला से मिलती है, तो वो शिक्षा हमारे जहन में, हमारे दिलों में इस तरीके से बैठ जाती है कि हमने किसी बड़े संगीत विद्यालय से सीखा हो। आइए एक प्यारा सा नगमा सुनते हैं और फिर आगे के लिए हम पढ़ेंगे।

0: ஏன் மிடுதிரா?
1: ஆ!

0: बदकम्मा बदकम्मा
1: यंकन्ना यंकन्ना
2: बदकम्मा।

कैप्टन, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं जल्दी माँ बेटी को आजाद करा लूंगा। वैसे तो मैं भी तैयार हूँ, कुछ माल भरना है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरा जहाज पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करेगा। थैंक यू कैप्टन।

0: जिस दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले जी का पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर राज था, उस दौर में शारदा जी ने अपनी खास पहचान बनाई और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते।
1: फिल्म फेयर अवार्ड, उन्होंने फिल्म जहान प्यार मिले के मशहूर के बैक के गाने बात जरा है आपस की के लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड भी जीता। फिल्म सूरज के गाने तितली उड़ी के लिए उन्होंने बेस्ट प्लेबैक सिंगर का स्पेशल अवार्ड भी जीता था। ऐसे ही उन्होंने कई फिल्मों को अपनी जिंदगी में उतारा और साथ ही साथ उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। तो आइए सुनते एक प्यारा सा नगमा उन्हीं की एक फिल्म का।

शारदा जी ने वैजंती माला, साधना, सायरा बानो, हेमा मालिनी, मुमताज और रेखा जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। प्रसिद्ध फिल्में सूरज, गुमनाम और साथ ही साथ में ऐसी कई फिल्में थीं जैसे सपनों का सौदागर, जहान प्यार मिले, पहचान, कल आज और कल, ऐसी गाने जो कि आज भी हम बहुत ही शौक से सुनते हैं। तितली उड़ी उड़ जो चली, जो की फिल्म सूरज से थी, जाने चमन शोला बदन, ये आज भी सॉन्ग जब हम किसी पुराने दौर में जाते हैं और कहीं शादी विवाह के माहौल में रहते हैं तो इस गाने को जरूर सुनते हैं। ले जा ले जा ले जा मेरा दिल, इन सारे गीतों की आज भी हम सभी के दिलों में एक अहम जगह है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

कहते हैं कि हर गाने के पीछे, हर एक फिल्म के पीछे कुछ न कुछ ऐसे राज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे गाने हैं जिनके पीछे की कहानी आज भी बहुत मशहूर हुई है। सबसे बड़ा ब्रेक राज कपूर द्वारा तेहरान में एक पार्टी में गाने गाते हुए वे सुनने के बाद मिला। उन्होंने फिल्म सूरज का गाना तितली उड़ी उड़क जो चली गाया, जो इतना सुपरहिट हुआ कि उस समय के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड केवल एक ही महिला या पुरुष दोनों के लिए हुआ करता था। उस साल शारदा जी के इस गाने को मोहम्मद रफी के गाने के साथ टाई किया गया था। इस लोकप्रियता ने फिल्म फेयर अवार्ड को महिला और पुरुष प्लेबैक सिंगर कैटेगरी को अलग अलग करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये जो कहानी थी, एक बहुत ही बेहतरीन गाने के पीछे की कहानी थी। आइए सुनते हैं।

शारदा जी केवल सिंगर नहीं थी बल्कि वह भारत की पहली महिला पॉप एल्बम रिलीज करने वाली पहली सिंगर बनी। 1971 में उन्होंने अपने पहले एल्बम को रिलीज किया। इसके बाद उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में माँ बहन और बीवी, गरीबी हटाओ और मैला आंचल जैसी फिल्मों में खुद संगीत भी तैयार किया। तो आइए चलिए सुनते हैं शारदा जी के कुछ बेहद प्यारे नगमों को।

0: यादों के झरोखों से कुछ धुंधली तस्वीर आई है, पुराने सुरों की महक फिर दिल में समाई है, भूले बिसरे गीतों की बात ही निराली है, इनमें पुरानी यादों की एक प्यारी सी कहानी है।
1: वो पुराने दिन, वो पुराने गाने, याद आते हैं वो अनमोल जमाने, इन गानों में छुपी हैं वो यादें, जो भुलाए नहीं भूलते वो पुराने दीवाने। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे एक नए संगीतकार, एक नए गायक के साथ। मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
0: और मैं हूँ आरजे गुमशुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीत में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।